सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोस्तों, आज है दिन मंगलवार। शक संबत 1948 ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026 सुबह के 5:57 हो चुके हैं और उपस्थित है हम अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और इस सफर में हमसे जुड़ने के लिए हम आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करते हैं।

समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एलपीएमएस का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधि

0: औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती किसानी। आज इस कार्यक्रम में गर्मा सब्जियों की खेती के विषय में जानकारी दे रही है अनिता तिरके।
2: झारखंड प्रदेश में गर्मा में खासकर लतरदार सब्जियों में लौकी, खीरा, नेनुआ, करेला, तरबूज, झींगी, कोहड़ा, परवल, सेम, टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, भिंडी, लोबिया इत्यादि की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। लतरदार सब्जियों की किस्मों में लौकी में आरका बहार, पूसा समर प्रोलोफिक लॉन्ग, पूसा राउंड, पूसा मेघदूत, इसी तरह खीरा की उन्नत प्रभेद में स्वर्ण पूर्णा, स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल, करेला की उन्नत किस्मों में आर्का हरित लंबा, प्रिया पूसा हाइब्रिड 1 है। नेनुआ की उन्नत किस्मों में स्वर्ण प्रभा, पूसा चिकनी सतपुतिया, सेम की उन्नत किस्मों में स्वर्ण उत्कृष्ट, परवल में स्वर्ण अलौकिक, स्वर्ण रेखा और स्वर्ण सुरुचि, इसी तरह झिंगी के लिए स्वर्ण मंजरी, स्वर्ण उपहार, तरबूज के लिए आर्का मानिक, सुगर बेबी और आर्का ज्योति, कोहड़ा के लिए HAPK10, टमाटर के लिए स्वर्ण संपदा, स्वर्ण विजया, स्वर्ण समृद्धि और स्वर्ण लालिमा, बैगन के लिए स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति, स्वर्ण अजय, इसी तरह भिंडी के लिए आर्का अनामिका, आर्का अभय और लोबिया के लिए स्वर्ण मुकुल अच्छी किस्में हैं। एक बार फिर से किसान भाई सुन ले, गर्मा सब्जियों की जो किसान भाई खेती करना चाहते हैं उन्नत प्रभेद में लौकी के लिए आर्का बहार, पूसा समर प्रोलोफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलोफिक राउंड, पूसा मेघदूत, खीरा के लिए स्वर्ण पूर्णा, स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल, करेला के लिए आर्का हरित लंबा हरा, प्रिया पूसा हाइब्रिड 1, नेनुआ के लिए स्वर्ण प्रभा, पूसा चिकनी सतपुतिया, सेम के लिए स्वर्ण उत्कृष्ट, परवल के लिए स्वर्ण अलौकिक, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण सुरुचि, झिंगी के लिए स्वर्ण भंडा मंजरी, स्वर्ण उपहार, तरबूज के लिए आर्का मानिक, सुगर बेबी और आर्का

0: ज्योति, टमाटर के लिए स्वर्ण संपदा, स्वर्ण विजया, स्वर्ण समृद्धि, स्वर्ण लालिमा, बैगन के लिए स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण अजय। इसी तरह भिंडी के लिए आर का अनामिका और आर का अभय है। लोबिया के लिए स्वर्ण मुकुल, ये सभी किस्में अच्छी मानी गई है। इन सब्जियों को जैसे टमाटर, बैगन, फूलगोभी इत्यादि को बीज का उपचार करके लगाना चाहिए। बीज का उपचार आप बेविस्टिन कैप्टन थीरम या कार्बेंडाजीम किसी भी दवा का 2 ग्राम 1 किलो बीज की दर से उपचारित करना है। अगर आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो टमाटर, बैगन, फूलगोभी का बीज उपचार कर लेना है। बीज उपचार करने के लिए आपको बेविस्टिन कैप्टन थीरम या कार्बेंडाजीम किसी भी एक दवा का आप उपयोग कर सकते हैं। दवा की मात्रा होगी 2 ग्राम 1 किलो बीज के लिए। नर्सरी की तैयारी कर लतादार सब्जियों को पॉलीथीन बैग या खेत की तैयारी कर सीधी खेतों में भी लगा सकते हैं। भिंडी, लोबिया की सीधी तैयार खेत में खेती लगाते हैं। बीजों की जो मात्रा होगी टमाटर और बैगन के लिए 150 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, फूल गोभी के लिए 350 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, उसी तरह लौकी और कोहड़ा के लिए 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर, करेला और नेनुआ झींगी के लिए 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर, खीरा तरबूज के लिए 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसान भाई जिन्होंने खेत की तैयारी कर ली है उन्हें उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना है। सब्जियों में अधिक वृद्धि हो और फलन अच्छी हो इसके लिए लतरदार सब्जियों में नेत्रजन 60 केजी, फास्फोरस और पोटास 40-40 केजी की दर से देना है। खेतों में सड़ी हुई गोबर की खाद भी 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खासकर गर्मी के मौसम में जरूर दें। गर्मी की जो सब्जी है उसे ये भी ध्यान देना है कि आपका खेत जो है वो सूखा ना रहे। उचित अंतराल पर आपको सिंचाई करनी है, खास करके फूल और फल बनते समय यह ध्यान देना है कि खेत में नमी आवश्यक रहे। फसल में खरपतवार नियंत्रण भी आवश्यक होता है। फसलों में हमेशा हल्की गुड़ाई करनी चाहिए जिससे जड़ों में वायु का संचार अच्छी तरह से होता रहे। 4 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पर अगर आप निगाही गुड़ाई करते हैं तो पौधों की जड़ों को नुकसान होता है। फूल आने की अवस्था में निगाही गुड़ाई का काम कम से कम करें या नहीं करें क्योंकि फूल और जो फल है दोनों झड़ने लगते हैं।
1: गर्मा सब्जियों की खेती के विषय में आप जानकारी ले रहे थे। कार्यक्रम खेती किसानी के अंतर्गत अनीता तिर्की की इस लघु वार्ता के साथ ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन है दिनेश कुमार लाल का।

आज का चिंतन विषय है बिरसा मुंडा असाधारण व्यक्तित्व। बिरसा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक गौरवपूर्ण इतिहास माना गया है। जनजातियों के खोए अधिकारों को वापस दिलाने में बिरसा आंदोलन का महत्व सर्वमान्य रहा है। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को ओलिहातू में हुआ था। बाल्यावस्था में बिरसा ईसाई धर्म प्रचारक एवं आनंद पंडा नाम के ब्राह्मण के संपर्क में आए। आसपास के बच्चे आनंद पंडा से शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। ये ब्राह्मण गुरु अपने शिष्यों को रामायण महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। इसी समय एक जर्मन पादरी के संपर्क में आकर बिरसा ने निम्न प्राथमिक शिक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की। 1886 में बिरसा चाईबासा चले गए। चाईबासा से उन्होंने उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा पास की। कुछ समय के पश्चात बिरसा वैष्णव साधु के संपर्क में आए। उनके प्रभाव से बिरसा शाकाहारी बन गए। शुद्धता एवं धर्म परायणता पर जोर देने लगे। इस प्रकार बिरसा के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में तीन तथ्यों ने

0: उनके व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग दिया। पहला प्रभाव ईसाई धर्म का था। बिरसा कालांतर में वैष्णव धर्म के संपर्क में आए, इस कारण वे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित विचारों को उन्होंने अपनाया। सामाजिक सुधार, मांस मदिरा का विरोध आदि उन्होंने इन्हीं दिनों किया। राजनैतिक दृष्टि से बिरसा सरदार आंदोलन से भी प्रभावित हुए। यह आंदोलन जमीन के लिए किया गया था, जिसे मूल की लड़ाई भी कहा जाता है। पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए भी सरदार आंदोलन हुआ था। बिरसा तत्कालीन जनजातीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति संवेदनशील थे, समाज में व्याप्त गरीबी से चिंतित थे। बिरसा एक सुधारक के रूप में नजर आने लगे। तत्कालीन परिस्थितियों का तथा विभिन्न धर्मावलंबियों के संपर्क में आने की घटना बिरसा के लिए प्रेरणादायी घटना है। बिरसा ने धरती आबा का स्वरूप धारण किया। समाज एवं धर्म के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए बिरसा ने कई महत्वपूर्ण विचार रखे। अनेक देवी देवताओं की उपासना के स्थान पर केवल सिंह बोंगा पूरे ब्रह्मांड का निर्माता की उपासना का आग्रह किया। मद्यपान का विरोध किया। हिंसा का परित्याग करने का आग्रह किया। वे सरना संस्कृति के हिमायती थे, क्योंकि ये जनजातीय संस्कृति का अभिन्न अंग था। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण बिरसा की लोकप्रियता बढ़ती गई और बिरसा भगवान के रूप में माने जाने लगे। उन्होंने जनजातीय समाज को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति पाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। शोषण मुक्त जनजाति समाज की स्थापना को प्रमुखता दी। अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया। बिरसा एक क्रांतिकारी, धर्म गुरु और जनजातीय समाज के ऐसे वीर नायक थे, जिन्होंने 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में महान आंदोलन उल गुलान को अंजाम दिया और भारत की आज़ादी के इतिहास में अमिट हस्ताक्षर बन गए, जिन्होंने आज ही के दिन यानी 9 जून को अंतिम सांसें ली। उनके स्मृति को शत शत नमन।
1: ये था आज का चिंतन। संकलन एवं वाचन था दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देशभक्ति गीत के साथ।

अब आपको सुनवाते हैं कुछ भक्ति रचनाएं। दोस्तों, ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति का नाम है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं बल्कि अपने कर्मों में शुचिता और मन में करुणा लाना है।

मंदिर में तो पत्थर है, जो मन में है वो भगवान है, और सच्ची भक्ति वो है जिसमें खुद से बड़ा इंसान है।

दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी आत्मा को सुकून देने के लिए बस एक ही पल काफी है, और वो पल अगर सच्ची प्रार्थना हो तो वो बहुत ज्यादा सुकून देती है। याद रखिए, आपकी श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

0: इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम आराधना यही संपन्न होता है। आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से ये संगीतमय पाठ।
1: एपिसोड नंबर 134 134।

अयोध्यापुरी में श्रीराम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावे बजने लगे। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग फड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी। ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

0: श्री रामचरितमानस से संगीत पर पाठ यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। आइए अब आपको आज मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में बता दें। इस कार्यक्रम विवरण के उपरांत क्रमशः संस्कृत और हिंदी समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा हम लेकर हाजिर होंगे 7:15 में। आज आप जानकारी लेंगे बदलती जीवन शैली में योग के महत्व के विषय में। वार्ताकार है स्वाति मुक्तिरथ और भेंट करता है संजीव कुमार लाल। सुबह सुरेली 7:15 से और कार्यक्रम खुला आकाश का वक्त रहेगा 7:45। आज इस कार्यक्रम में वार्ता का विषय होगा वर्तमान समय में बिरसा मुंडा के विचारों की प्रासंगिकता और वार्ताकार होंगे अनिल विजेंद्र कुलो। दोस्तों लोकगीतों का पिटारा लेकर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम लोक रंग में। आज आप सुनेंगे उराव गीत, कलाकार होंगे झिरका भगत एवं साथी। 9 से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन और 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का आयोजन होगा। कलाकार होंगे चिर सत्य ठाकुर। खेलों की दुनिया से रूबरू कराता हमारा कार्यक्रम क्रीड़ा जगत का समय रहेगा 10:00। आज परिचर्चा का विषय होगा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से। प्रस्तुति एवं संयोजन होगा प्रभु शरण का। जोहार रांची 10:30 पर और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद का आप आनंद ले सकेंगे 11:30 से। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम का समय तो आपको पता ही है दोस्तों दोपहर के 12:00 से। आज चर्चा का विषय होगा महासागरों का बढ़ता तापमान और मौसम, साथ ही जानकारी लेंगे महासागर के जलीय जंतुओं का अद्भुत संसार विषय पर। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 12:30 से क्रमशः आप फिल्म संगीत हिंदी अंग्रेजी और प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। 1:20 से उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी प्रस्तुत किया जाएगा। आज कलाकार होंगे शोभा गुट्टू। दोपहर के 2:00 से क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी समाचार। 2:30 पर जय भारती। 2:55 पर प्रादेशिक समाचार। 3:00 से प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 3:30 से रांची मेलोडीज और 4:00 से आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 4:02 से कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। 4:35 पर सांझ सरगम और 5:00 से समय रहेगा प्रादेशिक मुख्य समाचार। हमारे युवा श्रोताओं को समर्पित कार्यक्रम युववाणी लेकर हम हाजिर होंगे 5:30 पर। फिनेंशियल लिटरेसी के साथ वक्त की आदत डाले युवा विषय पर चर्चा होगी। प्रस्तुतकर्ता होंगे गौरव कुमार पांडे और 5:30 से कार्यक्रम श्रमिक लोक में धरती आबा की अमर शहादत, कामकाजी भाई बहनों के लिए शिक्षा में अनिवार्यता के विषय में आप जानकारी लेंगे। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की और 6:00 प्रादेशिक समाचार के पश्चात 6:02 से समय होगा किसान भाइयों के पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी का। आज चर्चा का विषय होगा मोटे अनाज की उपयोगिता। प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की होगी और हमारी दुनिया प्रस्तुत किया जाएगा 6:32 से। चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की होगी। शाम के 7:00 प्रादेशिक समाचार के उपरांत जिले में आजकल का प्रसारण किया जाएगा और 7:11 पर कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा, जिसे आज सुनेंगे खड़िया भाषा में। और आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी बच्चे के अच्छे संस्कार के विषय पर। प्रस्तुत करता होंगे प्रदीप कुमार और 7:45 से आप सुनेंगे अंग्रेजी वार्ता द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। वार्ताकार होंगे आर्यन भारद्वाज। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार की। 8:00 वक्त रहेगा फिल्म संगीत का और 8:10 से आप सुन सकेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। 9:30 से क्रमशः मनी टॉप मंथन गूंजे झारखंड। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे जल संरक्षण पर आधारित लोकगीत वाचन स्वर संध्या नीलिमा टोपनो का होगा एवं प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की और शास्त्रीय संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 10:30 पर। और क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे रात के 11:00 से। ये थे आज हमारी सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपसे कुछ ही देर में क्रमशः संस्कृत और हिंदी समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मन्त्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 39 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ बीएसएफ इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुम, उपनिरीक्षकम मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुम च मृत्योपरांतम वीरचक्रम प्रदत्तम। आंध्रप्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महती अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चन्द्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते 2,00,000 रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः एलपीएमएस इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एलपीएमएस इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-2000 वर्षपर्यन्तं व्यापार सौकर्यं, सम्पर्कं, राष्ट्रिय सुरक्षां, विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारामनः पश्चिमबंगस्य विकास यात्रां त्वरितं कर्तुं उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबंगस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्ये विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्ति विषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना, प्रधानमन्त्री जनधन योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थकेयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मन्त्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 28,000-2,000 वर्षस्य आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किये। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज भेंटवार्ता का विषय है बदलती जीवन शैली में योग का महत्व। भेंटवार्ताकार है स्वामी मुक्तिरथ और भेंट करता है संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों नमस्कार। मित्रों, आजकल की आधुनिक जीवन शैली में यत्र तत्र सर्वत्र तनाव व्याप्त है। हमारे पास समय नहीं है और काम की व्यस्तता के कारण हम बहुत कुछ भूल जाते हैं कि हमें अपने शरीर पर भी ध्यान देनी है, मन मस्तिष्क को भी शांति चाहिए और कुछ समय अपने लिए भी निकालने की जरूरत है। ऐसे में योग बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। आज की बदलती जीवन शैली में योग का कितना महत्व है और कितना समय है हम योग करें कि हम निरोगी रहें, हमारा मन शांत हो, चित्त शांत हो और हम प्रसन्न रहें, कैसे योग को अपने जिंदगी में आत्मसात करें, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं स्वामी मुक्तिरथ। तो स्वामी जी स्वागत है। स्वामी जी, बदलते परिवेश में योग कितना कारगर है?
3: आज के परिवेश को यदि देखा जाए तो आज से 30 वर्ष पहले और आधुनिक समय को दोनों का एक मिलान किया जाए तो हम देखते हैं कि 30 वर्ष पहले जो डायबिटीज को ही यदि हम लेते हैं तो डायबिटीज उस समय इस कदर से बढ़ा नहीं था। कई गांव में हम लोग खोजते थे तो एक आध मरीज डायबिटीज के मिलते थे। आज हर घर में हमें एक मरीज मिलने लग गया है। तो इसका मतलब यह है कि आज के परिवेश में हम अपने लाइफ स्टाइल को इस प्रकार से बना लिए हैं जो कि रोगों को आमंत्रित ही करते रहता है। तो हमें सबसे पहले तो अपने जीवन शैली में सुधार लाने की ज़रूरत है। और योग के बारे में यदि कहा जाए तो योग जन्म लेते ही मनुष्य के साथ साथ आता है, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं वह बच्चा, उसे कोई यह नहीं सिखाता है कि आपको दूध किस प्रकार से पीना है। तो भगवान ने नेचुरली व्यक्ति के साथ योग का समावेश करके इस दुनिया में भेजा है। लेकिन चूंकि हम सजग नहीं हैं, अपने शरीर के प्रति हम काम करते रहते हैं दिन भर, हम अनाप शनाप प्रकार के भोजन करते रहते हैं, हमारे लाइफ स्टाइल का कुछ ठिकाना नहीं रहता है, कब सोना है कब जागना है उसका कोई नियम नहीं है। और जब हम नियम को तोड़ते हैं तो फिर परेशानियां ढेरों आती है। और वहाँ योग को यदि हम करके अपने जीवन में उतारें तो उन परेशानियों से हम दूर हो सकते हैं, उन परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं।
2: स्वामी जी, कौन कौन से ऐसे योग रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया जाए ताकि हम खुश रहें, और कितना समय इसके लिए दिया जाए?
3: योग से आज भी करोड़ों व्यक्ति बहुत दूर हैं, और जो योग कर रहे हैं वह भी वास्तविक में योग को कर नहीं रहे हैं। तो पहले तो हमें यह जानना होगा कि योग को किस प्रकार से करना चाहिए। योग वह चीज है जो हमारे मन का शोधन कर दे, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक विचार शैली को परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर दे, जो हमें अनुशासित कर दे, वह योग है। योग वह नहीं है जहां हम शरीर को खूब पसीना बहा दें, शरीर से बहुत ज़्यादा हम व्यायाम करवा लें, वह योग नहीं है। तो पहले तो यह भी हम अपने अंदर में लेने की ज़रूरत है कि योग क्या चीज़ है। दूसरी बात है कि योग को कितना देर करना चाहिए। मिनिमम योग को एक घंटा तो करना ही करना चाहिए। यदि आपके पास डेढ़ घंटे का समय है तो वेरी गुड, नहीं तो कम से कम एक घंटा योग आपको करना चाहिए। जिस योग में कुछ आसन के अभ्यास हैं, कुछ प्राणायाम के अभ्यास हैं, कुछ शिथिलीकरण के अभ्यास हैं, जो आपके बॉडी और माइंड दोनों को शिथिल करता है, रिलैक्स करता है। तो इस प्रकार से आसन, प्राणायाम और शिथिलीकरण के अभ्यास को नियमित करना चाहिए। नियमितता बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम भोजन पचाने के लिए बहुत प्रकार के हम पानी पीते हैं या बहुत सारी चीज़ों को उस प्रकार से खाते हैं जो हमारे भोजन को पचाता है, और उसी प्रकार से शरीर और मन की शुद्धिकरण के लिए योग को आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन के जरिए इसका शोधन होना चाहिए।
2: आज लोग समय की कमी का बहाना बनाते हैं, बहुत सारे काम हमें आज निपटाना है, सोने का समय निर्धारित नहीं है और बहुत देर तक लोग सोए रहते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि कितना समय हम योग को दें, हमारे पास समय नहीं है, तो कौन कौन से योग क्रिया किया जाए और कैसे किया जाए?
3: लेकिन जिस शरीर से आप मेहनत करवा रहे हैं उस शरीर के लिए सबसे पहले आप सोचिए, क्योंकि वह शरीर यदि आपका स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप बहुत लंबे समय तक वर्क नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप काम नहीं कर पाएंगे, काम में आपकी रुचि भी धीरे धीरे घटती चली जाएगी और आप फिर आगे जाकर के थोड़ा सुस्त पड़ेंगे। तो पहले ही यह क्यों ना कर लिया जाए कि हम अपने जीवन शैली में ही योग का समावेश कर लें। अब यदि किसी व्यक्ति के पास सवेरे में एक घंटे से डेढ़ घंटे का समय हो तो क्या करना चाहिए, उसके लिए योग के अलग कैप्सूल हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास मात्र आधा घंटा ही समय है उसके लिए योग के फिर शॉर्ट कैप्सूल हैं। यदि उतना भी समय नहीं है किसी व्यक्ति के पास में तो फिर वो अपने जीवन शैली के बीच बीच में, अपने कार्यों के बीच में भी योग को कर सकते हैं। जैसे हम लोग बतलाते हैं कि भोजन को कर लेने के उपरांत कम से कम 5 मिनट वज्रासन करना चाहिए। खाना के बाद यदि हम 5 मिनट वज्रासन को कर लेते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, उनकी पाचन प्रणाली बहुत अच्छी रहेगी, उनका भोजन बहुत अच्छे से पचेगा और उनके भोजन से जो स्टार्च बनना चाहिए, जो ग्लूकोज बनना चाहिए, वो अच्छा बनेगा और उनके शरीर में वह अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठ गए और दोनों हाथों को घुटने के ऊपर सामने में रख लेते हैं, आँखों को बंद कर लेते हैं और थोड़ा देर नाभि पर ध्यान लगाते हैं, तो आप सोचें कि 5 मिनट यदि वज्रासन में हम बैठ जाएं तो इससे क्या अंतर होगा। एक तो पाचन बहुत अच्छा होगा, दूसरा उनको स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से सवेरे जगने के तुरंत बाद यदि 2 ग्लास पानी पी करके खड़े होकर के एक आसन है जिसका नाम है तारासन। अब आज कॉन्स्टिपेशन के ढेर सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको कब्ज हो रही है, कब्ज पर यदि आप ध्यान नहीं दिए तो बाद में वो पाइल्स की बीमारी हो जाती है। तो ये पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन से बचाव के लिए बहुत सरल आसन है तारासन। सवेरे जगे 2 ग्लास पानी पी करके आप खड़े हो जाइए फर्श पे, दोनों हाथ को सिर पे रख लीजिए, हाथ की उंगलियां इंटरलॉक हो माथे के ऊपर, फिर श्वास भरते हुए दोनों हथेली को आकाश की ओर तानते पूरे शरीर में खिंचाव लाइए तो तारासन हो गया। फिर श्वास छोड़ते हुए सिर पर हाथों को लाइए। इस प्रकार से यदि हम 10 बार करते हैं तारासन को तो वह पानी का जो प्रेशर है वह नीचे जाएगा और पानी के प्रेशर नीचे जाने से उनकी

0: कब्ज की बीमारी दूर होगी, उनका पेट तुरंत साफ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सवेरे जगने के बाद तारासन को कर सकते हैं। रात को सोते वक्त में जैसे एक शवासन रात में हम हर दिन कर सकते हैं। सोने के लिए गए बिस्तर पे ही आप थोड़ा पैरों को 1.5 फीट अलग कर दीजिए, चित्त लेट जाइए और पैर 1.5 फीट अलग कर दीजिए। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रख लीजिए, सिर सीधा रहे और आँखों को बंद कर लीजिए। अब करना कुछ नहीं है, थोड़ी देर के लिए चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 7 मिनट हो या 10 मिनट हो, अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि शरीर एक मुर्दे के समान है, केवल आप विचार लाइए, कई बार अपने मन में विचार लाइए कि आपका शरीर एक शव के समान है, शवासन नाम भी है। तो जब आप इस प्रकार से अपने शरीर को जमीन पर छोड़ देंगे तो 1 मिनट में शरीर आपका जमीन को पकड़ लेगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, वो शिथिल होगा। फिर क्या करना है, कुछ आसपास के साउंड को केवल सुनना है। साउंड को सुनने के बाद फिर आप अपने नासिका में आ जाइए और वहाँ अपने श्वास के साउंड को सुनने का प्रयास कीजिए। जैसे ही आप श्वास के साउंड को सुनना प्रारंभ करेंगे तुरंत नींद आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप अनिद्रा के रोग को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन अनिद्रा हो या ना हो, यदि इस तरह से हम सोने की विधि को अपनाते हैं तो प्रातःकाल कोई आलस्य नहीं रहेगा, कोई तंद्रा नहीं रहेगी, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप प्रातःकाल बहुत प्रफुल्लित रहेंगे। आज आप देखिए बहुत कम लोग हैं जो प्रातः उठते ही मुस्कुराते हैं, बच्चे ही केवल मुस्कुराते हैं, उसके बाद ऊपर वाले लोग तो कोई मुस्कुराते ही नहीं हैं। तो प्रातःकाल की मुस्कुराहट वो दिन भर आपको ऊर्जा देती है, आपको खुश रखेगा। तो ये कैसे संभव है, जब आप रात को बहुत अच्छे से सोते हैं, आपकी नींद बहुत अच्छी होती है, आप बहुत प्रफुल्लित होकर के सोते हैं, आप बहुत रिलैक्स होकर के सोते हैं, तो कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से योग का समावेश मैं समझता हूँ कि अपने जीवन शैली में, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं तो उनको यदि किन्हीं का सीटिंग जॉब ज़्यादा है तो उसी तारासन को जो मॉर्निंग में किए उसी को हम फिर बीच में कर सकते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी कभी नहीं आएगी ज़िंदगी में।
1: आने वाले पीढ़ी को आप क्या कहेंगे संक्षेप में,
0: कि योग को एक व्यवस्थित तरीके से आप अपनाएं, वैसे योग को जो आपके शरीर को लचीला भी बनावे और मांसपेशियों को रिलैक्स भी करे। दूसरा, योग का अभ्यास जो आपके मन को स्थिर भी करे और मन को ऊर्जावान भी बनावे। तीसरा अभ्यास जो सोल के लिए, आपकी आत्मा के लिए है, क्योंकि उसके बगैर हम तनाव मुक्त नहीं रह सकते हैं, उसके लिए मेडिटेशन है, मेडिटेशन करना चाहिए। और हजारों टेक्निक हैं मेडिटेशन के, जैसे कि प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो क्रिया अनुलोम विलोम की क्रिया कहलाती है लेकिन उसका नाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम के करने से मस्तिष्क ऊर्जावान भी होता है और स्थिर भी होता है। भ्रामरी प्राणायाम में हम कान को बंद करके लंबी श्वास लेते हैं और गुनगुनाते हैं एक भौंरे की तरह, वो गुनगुनाहट मस्तिष्क के सारे तनाव को ख़त्म कर देता है। वो गुनगुनाहट यदि 10 से 12 बार करें तो मस्तिष्क के अंदर जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन है उसका सेक्रेशन बढ़ जाता है, जो आपको बहुत पीस बनाता है, बहुत शांति देता है। अनिद्रा के रोगियों के ऊपर देखा गया है, या हॉस्पिटल में जिस मरीज का ऑपरेशन होता है उसके पहले उसको करा के देखा गया है कि उससे फियरनेस भी दूर होता है। तो ये जो दो प्राणायाम है, नाड़ी शोधन और भ्रामरी, इन प्राणायाम से हम मस्तिष्क को स्वस्थ बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं हम अपने आप को।
1: तो मित्रों, योग को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, समय निकालिए और जब आप योग करेंगे तो आप खुश रहेंगे और जब आप खुश रहेंगे तो परिवार भी खुश रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी मुक्त रथ साहब, आज आप इस कार्यक्रम में। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।
2: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा संपन्न होता है। भेंट वार्ता करते स्वामी मुक्त रथ और भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। अब से कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम के साथ।

ये आकाशवाणी का राजी केंद्र है और हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम रसरंजन के साथ। स्वीकार करें अपनी रेडियो सखी मौनिता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खिड़की खोलिए और सुबह की ताजगी को महसूस कीजिए और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ हो जाइए तैयार, क्योंकि आज आपकी सुबह होने वाली है बहुत ही खास।

शरीर की एक प्राकृतिक घड़ी होती है और सुबह उठते ही फोन की तेज रोशनी, जिसे हम ब्लू लाइट कहते हैं, हमारे दिमाग को परेशान करती है, और जबकि रेडियो पर सुना हुआ संगीत हमारे दिमाग की तरंगों को सर्कैडियन रिदम के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है, और यह आपको दिन भर के लिए प्राकृतिक रूप से शांत और अलर्ट भी।

दोस्तों, आज आपकी सुबह ना केवल सुरीली है बल्कि सेहतमंद भी है। जानते हैं क्या? क्योंकि आज आप फोन में स्क्रीन के बजाय रेडियो सुन रहे हैं और विज्ञान कहता है कि सुबह सुबह रेडियो सुनना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य और हमारे मन के काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो चलिए आप ये प्यारा सा गीत सुनिए

बिल्कुल दोस्तों, दिल के चैन के लिए हमें दिन की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव नोट पे करनी चाहिए। नई सुबह, नया दिन और नई उम्मीदें। सुबह की पहली किरण के साथ अपने दुखों को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वो कल था और जो आने वाला है वो आपका सुनहरा कल है। तो आज की सुबह को बनाते हैं और भी सुरीली इस प्यारे से गीत के साथ।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का कार्यक्रम सुबह सुरीले में। दोस्तों आपने भी कभी ये चीज़ ज़रूर अनुभव की होगी कि जब भी कोई हम बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा गाना सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उस गाने के साथ हमारी यादें जुड़ी होती है और चाहे अनचाहे एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पे आ ही जाती है।

दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ी हमें बार बार ये इशारा कर रही है कि हम कार्यक्रम सुबह सुरीले यहीं समाप्त करें, अतः आप अपनी रेडियो हम सफ़र मोनिता को आज्ञा दीजिए। चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे कि ज़िंदगी बदलती रहती है और हर पल कुछ नया होता है और हर मुश्किल का हल भी होता है। हमेशा पॉजिटिव रहे। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम खुला आकाश। वार्ताकार है अनिल वीरेंद्र कुल्लू।
1: आज हम भारत के एक ऐसे महान जननायक, समाज सुधारक और आदिवासी चेतना के प्रतीक व्यक्तित्व के विचारों पर चर्चा करेंगे, जिनकी स्मृति आज भी जनमानस में उतनी ही जीवंत है जितनी एक सदी पूर्व थी। वह व्यक्तित्व है धरती आबा बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातू गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। उनका जीवन केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष की कथा नहीं है, बल्कि सामाजिक जागरण, सांस्कृतिक स्वाभिमान, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और समुदाय आधारित जीवन दर्शन का भी प्रेरक उदाहरण है। मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका जीवन समाप्त हो गया, किंतु उनके विचार आज भी भारतीय लोकतंत्र, आदिवासी अधिकारों और पर्यावरणीय न्याय के विमर्श में प्रासंगिक बने हुए हैं। आज जब हम आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक न्याय जैसे प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं, तब बिरसा मुंडा के चिंतन को समझना और भी आवश्यक हो जाता है। बिरसा मुंडा के विचारों को समझने के लिए उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है जिसमें उनका उदय हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में छोटानागपुर क्षेत्र का आदिवासी समाज गहरे सामाजिक और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। मुंडा समाज की पारंपरिक खुदकट्टी व्यवस्था, सामुदायिक भूमि स्वामित्व

0: और साझा उत्तरदायित्व पर आधारित थी। यह केवल भूमि प्रबंधन की प्रणाली नहीं थी, बल्कि सामाजिक संगठन और सामुदायिक जीवन का आधार भी था। ब्रिटिश शासन की भूमि और वन नीतियों ने इस व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। भूमि पर बाहरी नियंत्रण बढ़ा, लगान की व्यवस्था कठोर हुई, महाजनी शोषण का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक जीवन व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा से वंचित होने लगा। यही परिस्थितियां आगे चलकर व्यापक असंतोष का कारण बनी। इसी पृष्ठभूमि में बिरसा मुंडा एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने अपने समाज को केवल संघर्ष का मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि एक वैकल्पिक जीवन दर्शन भी प्रदान की। बिरसा मुंडा के चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण आधार था स्वाभिमान और स्वशासन। उनका प्रसिद्ध उद्घोष था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, अर्थात हमारा देश हमारा शासन। इस नारे को केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे स्थानीय समुदाय की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, पारंपरिक अधिकारों की रक्षा और आत्मनिर्णय की भावना निहित थी। बिरसा मुंडा का विश्वास था कि कोई भी समाज तभी सशक्त बन सकता है जब वह अपनी क्षमता, अपने ज्ञान और अपनी सामुदायिक शक्ति पर विश्वास करे। वे आत्मनिर्भरता को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानते थे। आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को आगे बढ़ा रहा है, तब बिरसा मुंडा के विचार हमें यह स्मरण कराते हैं कि आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि स्थानीय संसाधनों, स्थानीय ज्ञान और सामुदायिक सहभागिता को सम्मान देना भी है। बिरसा मुंडा के विचारों का दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है जल, जंगल और जमीन के प्रति उनका दृष्टिकोण। आदिवासी जीवन दर्शन में प्रकृति केवल संसाधन नहीं होती, वह जीवन की सहचरी होती है। जंगल भोजन देता है, जल जीवन देता है, भूमि अस्तित्व प्रदान करती है। बिरसा मुंडा इसी जीवन दृष्टि के प्रतिनिधि थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि जब आदिवासी समुदायों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से अलग किया जाता है, तब केवल उनकी अर्थव्यवस्था ही नहीं, उनकी संस्कृति और पहचान भी संकट में पड़ जाती है। इसलिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण तथा उन पर समुदायों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा पर बल दिया। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के क्षरण और पर्यावरणीय संकटों से जूझ रहा है। ऐसे समय में बिरसा मुंडा का प्रकृति केंद्रित चिंतन हमें विकास के ऐसे मॉडल पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है जिसमें पर्यावरण और मानव जीवन के बीच संतुलन बना रहे। बिरसा मुंडा केवल राजनीतिक संघर्ष के नेता नहीं थे, वे एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने समाज में फैली अनेक कुरीतियों और अंधविश्वासों को आलोचित करते हुए नैतिक और अनुशासित जीवन जीने पर बल दिया। उन्होंने लोगों से मद्यपान, सामाजिक विभाजन और उन व्यवहारों से दूर रहने का आह्वान किया जो सामुदायिक एकता को कमजोर करते थे। उनका विश्वास था कि किसी भी समाज के वास्तविक शक्ति उसके नैतिक मूल्यों और सामाजिक अनुशासन में निहित होती है। बिरसा मुंडा ने धार्मिक चेतना को भी सामाजिक जागरण से जोड़ा। उनके नेतृत्व में एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन विकसित हुआ, जिसे आगे चलकर वीरशाइत परंपरा के रूप में जाना गया। इस आंदोलन का उद्देश्य केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान, सामाजिक सुधार और सामुदायिक संगठन को मजबूत करना भी था। उनकी दृष्टि में सामाजिक जागरण और राजनीतिक चेतना एक दूसरे के पूरक थे। वे जानते थे कि समाज के भीतर परिवर्तन लाए बिना स्थायी मुक्ति संभव नहीं है। यदि हम बिरसा मुंडा के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की चर्चा करें तो वह है उल गुलान। उल गुलान का अर्थ है महाविद्रोह या महान आंदोलन। 1899 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला यह आंदोलन औपनिवेशिक शासन, शोषणकारी भूमि व्यवस्था और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध व्यापक जन प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। यह आंदोलन केवल राजनीतिक विद्रोह नहीं था, इसमें सांस्कृतिक अस्मिता, सामुदायिक अधिकार और सामाजिक न्याय की आकांक्षाएं भी शामिल थीं। बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित किया, उनमें आत्मविश्वास जगाया और यह विश्वास पैदा किया कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना उनका अधिकार है। ब्रिटिश शासन ने इस आंदोलन को कठोरता से दबाने का प्रयास किया। अंततः बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची कारागार में उनका निधन हो गया। यद्यपि उनका जीवन अल्पकालीन था, परंतु उनके विचार और संघर्ष की चेतना समाज में जीवित रही। अब यह प्रश्न है कि 21वीं सदी में बिरसा मुंडा के विचारों की प्रासंगिकता क्या है। वास्तव में आज का भारत अनेक ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा है जिनका संबंध विकास, पर्यावरण, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक विविधता से है। इन सभी प्रश्नों पर बिरसा मुंडा का चिंतन हमें नई दृष्टि प्रदान करता है। पहली बात, वे हमें बताते हैं कि विकास केवल आर्थिक वृद्धि का नाम नहीं है। विकास तब सार्थक होता है जब उसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी हो और उनकी गरिमा सुरक्षित रहे। दूसरी बात, उनका जीवन पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा को मजबूत करता है। आज जब प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पर्यावरणीय असंतुलन पर चिंताएं बढ़ रही हैं, तब उनका प्रकृति सम्मत दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। तीसरी बात, उन्होंने सांस्कृतिक अस्मिता और पहचान के महत्व को रेखांकित किया। वैश्वीकरण के इस दौर में स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक विविधताओं का संरक्षण एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। बिरसा मुंडा हमें सिखाते हैं कि आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। चौथी बात, उनका जीवन सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सहभागिता का संदेश देता है। उन्होंने समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को संगठित कर यह दिखाया कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ केवल शासन व्यवस्था नहीं बल्कि लोगों की सक्रिय भागीदारी भी है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि बिरसा मुंडा का योगदान केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, वे राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वाभिमान के बिना स्वतंत्रता अधूरी है, न्याय के बिना विकास अधूरा है और प्रकृति के बिना मानव सभ्यता अधूरी है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि समाज में परिवर्तन केवल विरोध से नहीं बल्कि जागरूकता, संगठन और नैतिक शक्ति से भी संभव हो सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बिरसा मुंडा को केवल एक ऐतिहासिक नायक के रूप में स्मरण न करें बल्कि उनके विचारों को समकालीन जीवन में समझने और अपनाने का प्रयास करें। जब हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, जब हम सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हैं, जब हम सामाजिक न्याय और समानता की बात करते हैं, तब हम कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अंत में धरती आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आइए हम उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जो न्यायपूर्ण, समतामूलक, पर्यावरण सम्मत और मानवीय मूल्यों से समृद्ध हो।
1: कार्यक्रम खुला आकाश यहीं संपन्न होता है। वार्ताकार थे अनिल वीरेंद्र कुल्लू।

0: भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा

0: मजबूत करना है।
1: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांतिवार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के डाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिनभर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी न करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
4: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management System will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. It added that the platform aligns with the goal of strengthening trade facilitation, connectivity, national security, and the vision of Viksit Bharat by 2047. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. The system will also provide end-to-end digital workflows for cargo and passenger processing, including slot booking, payments, tracking and single window clearances, while improving coordination among government agencies and private operators. On the occasion, the Home Minister will also inaugurate newly developed stakeholder accommodation facilities at Dauki in Meghalaya and Srimantpur Land Port in Tripura, strengthening infrastructure support for border management and personnel. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
3: The 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting will begin today at Indore in Madhya Pradesh. The BRICS Agriculture Working Group meeting will also be held simultaneously under India's BRICS presidency this year. Details from our correspondent.
5: Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part. These include Brazil, China, Russia and South Africa. The conference runs till June 13. It begins with the meeting of the Agriculture Working Group. Key topics include food security, farm innovation, climate-friendly farming, agriculture trade and empowering small farmers. On June 12, a special dialogue among agriculture ministers will be held. It will focus on food security through small farmers, women and youth. On June 13, the main ministerial meeting of BRICS nations will take place. a joint document on agriculture cooperation and innovation will be prepared. Foreign delegates will also get a taste of Indore's rich culture and heritage. They will visit historic sites like Rajwada, Chhappan Dukan, Sarafa and Mandu. Abhinav Goyal, Akashwani, Bhopal.
3: Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy and Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu visited the Vishakhapatnam steel plant accident site last night. Mr. Kumaraswamy expressed condolences to the families of the deceased workers and announced an ex gratia of 25 lakh rupees for next of kin of the deceased and 10 lakh rupees for those injured. In addition, affected families will be allowed to continue residing in steel plant quarters, their children will receive free education, and one member of each family will be provided permanent employment. Mr. Kumaraswamy said Prime Minister Narendra Modi has also announced financial assistance of 2 lakh rupees to the families of the deceased and 50,000 rupees to the injured through the Prime Minister's National Relief Fund. To determine the cause of the accident, the Union Steel Ministry has constituted a special committee comprising experts from other steel plants. 8 people were killed in the fire accident at the Vishakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited yesterday evening. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards health services.
6: In the past 12 years, the government has significantly strengthened India's health system, which is now more accessible, affordable and quality-driven. In 2018, Prime Minister Narendra Modi launched the world's largest health insurance program, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Under the scheme, free health insurance up to 5 lakh rupees per family per year is being provided to socio-economically deprived families. Under the scheme, more than 44 crore Ayushman cards have been created and treatment worth over 1,80,000 crore rupees have been provided. In a landmark expansion of the scheme in October 2024, the government launched Ayushman Bharat Vayabandhana, extending health insurance coverage to all senior citizens over 70 years. Talking to Akashwani News, Rohit Singh of Delhi said, with this card, he can now avail treatment at private hospitals as well.
7: My name is Rohit Singh. I will get great benefit from the Ayushman card. I will be able to get treatment in private hospital as well for myself and my family. With this, I will get 5 lakh rupees and my family will stay completely healthy and will able to get good treatment.
6: The government has also established 1,86,000 Ayushman Arogya Mandirs to provide primary health care at every neighborhood. The Pradhan Mantri Bharatiya Jan Oshadhi Pariyojana also providing quality assured generic medicines at significantly lower prices than market prices. Talking to Akashwani News, Dilip Kumar, a resident of Bihar, said that the medicines at Jan Aushadhi Kendras are available at very low prices.
8: If the medicines were not from the Jan Aushadhi Kendra, there would have been a lot of trouble in my life. Because here, medicines are very cheap. A 100 rupee medicine is available for just 10 rupees. I'm getting immense relief. The medicine is working well too, and my money is not being wasted either.
6: The government has expanded medical education to meet rising demand for health professionals. The number of AIIMS, which was only 8 in 2014, has now gone up to 23, while the number of medical colleges increased from 387 to 818. The Ministry of Ayush, formed in November 2014, established traditional medicine as an active part of India's health system. A total 942 Ayush institutions have been opened till 2025, with Anand Kumar, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
3: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app.

0: Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1 lakh H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: Akashwani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी समारोह का करेंगे शुभारंभ। झारखंड में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन। झारखंड हाईकोर्ट ने महिला कैदी यौन शोषण मामले में लिया स्वतः संज्ञान। राज्य सरकार से तलब की पीड़िता की मेडिकल और जुडिशियल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट। महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज। राजधानी रांची समेत राज्य भर में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन। मौसम केंद्र रांची ने आज राजधानी रांची, बोकारो, खूंटी और कोल्हान क्षेत्र में वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की जताई आशंका, जारी किया येलो अलर्ट। और कल से शुरू हो रही झारखंड टी20 लीग की तैयारी पूरी। छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स ने लॉन्च की अपनी टीम और चमचमाती ट्रॉफी। और अब समाचार विस्तार से। देशभर में सुरक्षित गर्भावस्था सुनिश्चित करने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। वे 75 रूपए का स्मारक सिक्का और 5 रूपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इधर झारखंड के सभी जिला अस्पतालों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां महिलाओं को मुफ्त जांच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श मिल रहा है। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने डीजीपी और आईजी जेल के शपथ पत्र पर असंतोष जताते हुए राज्य सरकार से पीड़िता की मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट और जुडिशियल कमिश्नर से जांच रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। झारखंड में दोनों राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो के वैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा ने पर्चा दाखिल किया है। वहीं एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवाणी के मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इस बीच झामुमो नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है।
2: जिस तरीके से महागठबंधन के तमाम सदस्यों की उपस्थिति रही, एकजुट रहा गठबंधन, ये तमाम चीजें बहुत हद तक स्पष्ट करती हैं। और अगर आप तीसरे प्रत्याशी के नॉमिनेशन को देखें तो आपको दिखेगा कि उसमें माननीय विधायकों की उपस्थिति कितनी कम थी। गठबंधन के वोटर्स साथ में थे, ये एक मजबूती को दर्शाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने आश्वस्त हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा।
1: इधर भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवाणी का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि वे झारखंड के विकास के लिए अच्छा काम करेंगे।
3: पार्टी ने जो सोचा है, ऐसे व्यक्तित्व को लाए हैं जो राज्य के विकास में कुछ सहयोगी बनेंगे। सारा एनडीए एकजुट होकर हम लोग मतदान करेंगे। अच्छे कैंडिडेट हैं, 2 बार यहाँ राज्यसभा के सदस्य रह गए, 3री बार आ रहे हैं। झारखंड की धरती को अच्छे से समझ रहे हैं और अच्छा कुछ करने का उनका मन में विचार है, तो शीर्ष नेताओं ने जो निर्णय लिया निश्चित तौर पर अच्छा निर्णय है।
1: आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर आदिवासियों से धोखेबाजी और माफिया राज चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल भेजा जा रहा है। सरकार के खिलाफ आजसू 22 जून को धनबाद में स्थापना दिवस से बड़ा आंदोलन शुरू करेगी।
4: धनबाद में पुलिसिया कार्रवाई जिस रूप से माफिया राज और जो तंत्र फेल है वहाँ पर, इसी संदर्भ में केंद्र बनाते हुए जागरूक जनता का अपील के ऊपर पार्टी के बलिदान दिवस को हम लोग धनबाद में मनाने का निर्णय लिए हैं। 22 जून को पार्टी मार्च करेगी, वहाँ पर सरकार के और सरकार के निगरानी में हो रहे लूट खरोच के विरोध में एक चेतावनी के रूप में हम धनबाद कूच करेंगे।
1: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़गाई जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए कोर्ट द्वारा सीएम की डिस्चार्ज याचिका खारिज होना स्वागत योग्य है। श्री मरांडी ने साफ किया कि जमानत मिलना दोष मुक्ति का प्रमाण नहीं है। श्री सोरेन को न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज राज्य भर में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि कुछ देर बाद रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल और बिरसा चौक पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य नेता उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे।
5: आज झारखंड समेत पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। आज के दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सिर्फ राजधानी रांची ही नहीं बल्कि भगवान बिरसा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू समेत राज्य के तमाम आदिवासी बहुल इलाकों में विशेष ग्राम सभाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज यहां मौजूद हर व्यक्ति, हर युवा एक ही संकल्प दोहरा रहा है, जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प, जो भगवान बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा सपना था। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में बेड की किल्लत जल्द दूर होगी। नेत्र विभाग के 2 वार्ड स्थायी रूप से मिलने से अगले 3 महीनों में 70 नए बेड जुड़ेंगे। इससे मरीजों को फर्श पर इलाज कराने से मुक्ति मिलेगी। साथ ही 1.5 करोड़ के नए उपकरण और वेंटिलेटर भी लगाए जा रहे हैं। राजधानी रांची के यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ रांची ट्रैफिक पुलिस ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने 1 जून से 8 जून तक विशेष वाहन जांच अभियान चलाया है जिसके तहत रिकॉर्ड 3,775 चालान काटे गए हैं। और अब मौसम का हाल। मॉनसून से पहले राजधानी को जलजमाव से मुक्त कराने के लिए रांची नगर निगम ने छोटे बड़े नालों की सफाई शुरू कर दी है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर है। नालों की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन मैपिंग और जियो टैगिंग की मदद ली जा रही है। राज्य में गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। मौसम केंद्र ने आज रांची, बोकारो, खूंटी और कोल्हान सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल से शुरू हो रहे झारखंड T20 लीग को लेकर रांची में जर्सी लॉन्च और मैनेजमेंट घोषणाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स ने भव्य कार्यक्रमों में अपनी टीमें, जर्सी और ट्रॉफियां लॉन्च की। दोनों टीमों ने खिताब जीतने और राज्य की युवा प्रतिभाओं को निखारने का दावा किया है।
6: हमने अपना टीम का नाम कोई एक शहर पे नहीं रख के छोटा नागपुर नाम दिया, जिससे छोटा नागपुर से जुड़े जितने भी जिले हैं उनको ये टीम अपनी टीम की तरह लगे और वो इस दौड़ में अछूते ना रह जाए। फिर टीम बनाने की जब बात आई तो हमने एक बैलेंस टीम बनाया, हमने बड़े नाम भी लिए और नया टैलेंट भी लिया जो जूनियर प्लेयर्स है जिनको अभी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
1: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड में राज्यसभा की दोनों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव महागठबंधन में सेंध लगाने उतरे नाथवाणी। प्रभात खबर ने लिखा है कल बालू घाटों पर लग जाएगी रोक, 444 में से केवल 14 घाट ही हो पाए चालू, पूरे मॉनसून फिर झेलनी होगी बालू की किल्लत। हिंदुस्तान के शब्द हैं, गिरिडीह में पिता ने 3 बेटियों को काट डाला। दैनिक जागरण लिखता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज, चलेगा मुकदमा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी समारोह का करेंगे शुभारंभ। झारखंड में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन। झारखंड हाईकोर्ट ने महिला कैदी यौन शोषण मामले में लिया स्वतः संज्ञान। राज्य सरकार से तलब की पीड़िता की मेडिकल और जुडिशियल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट। महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज। राजधानी रांची समेत राज्य भर में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन। मौसम केंद्र रांची ने आज राजधानी रांची, बोकारो, खूंटी और कुल्हान क्षेत्र में वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की जताई आशंका, जारी किया येलो अलर्ट। और कल से शुरू हो रही झारखंड T20 लीग की तैयारी पूरी, छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स ने लॉन्च की अपनी टीम और चमचमाती ट्रॉफी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर सतह एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मैं आपकी रेडियो सखी मोनिता पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी श्रोताओं का।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे उड़ाव गीत। कलाकार है झिगरा भगत एवं साथी।

इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग यही संपन्न होता है। कलाकार थे झिरका भगत एवं साथे। अगला कार्यक्रम रसरंजन लेकर हम हाजिर होंगे बस कुछ ही देर में।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम हाजिर हैं सुपर हिट गीतों का खजाना लेकर कार्यक्रम रसरंजन में। स्वीकार करें अपनी रेडियो साथी मोनिता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्त आप आए तो बहारों से लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू।

दोस्तों, जब बात दिल की होती है तो जज्बातों की गहराई दिल की धड़कन में जो नाम है तुम्हारा वो हर पल कहता है कि बस तुम्हें पुकारे। महसूस तो कर मेरी इस खामोशी को, ये दिल कहता है कि बस तू ही एक साथ।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का कार्यक्रम रस रंजन से। दोस्तों एक इस कार्यक्रम में बात हो रही थी दिल पे, तो दिल की हकीकत ये भी है कि ये दिल भी कितना नादान है, उसी को ढूंढता है।

जो इससे अनजान है। कितना भी समझा लूं इस पागल को, इसे आज भी उसकी ही मुस्कान की पहचान है। दिल की गल्लां भी कितनी अजीब है ना।

जब भी मिलती है तेरी यादों की नमी, तब महसूस होती है दिल को तेरी कमी। खुशियाँ तो बहुत है इस जहाँ में, पर तेरे बिना दिल को नहीं मिलती कोई खुशी।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन। दोस्तों, आज बातें हो रही हैं दिल की, जज्बातों की, तो दिल की दीवारों पर यादों का पहरा है, तन्हाई में भी लगता है कि तू साथ हमारे है।

सच में दिल कहाँ मानता है, बहुत ही ज़िद्दी होता है हमारा दिल, और बहुत ही छोटा सा भी और प्यारा सा होता है। दिल पे बस यकीन करके तो देखिए।

दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ी टिक टिक करते हुए हमें ये संकेत दे रही है कि हम कार्यक्रम रसरंजन यहीं समाप्त करें, अतः आप अपनी रेडियो सखी मौनिता को आज्ञा दीजिए। चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे कि मंजिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के साथ। आज आप सुनेंगे सितार पर राग ललित में आलाप और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत है। दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध है। गायक कलाकार है चिर सुंदर ठाकुर और तबले पर संगत कर रहे हैं संदीप चटर्जी। पहले ये संकेत।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का आयोजन यही संपन्न होता है। गायक कलाकार थे चिरसुंदर ठाकुर और तबले पर संगत कर रहे थे संदीप चैटर्जी।

0: अगला कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे बस कुछ ही देर में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है खेलों की दुनिया से रूबरू कराता हमारा कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। आज परिचर्चा का विषय होगा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से। रिपोर्ट संकलन प्रस्तुति स्वर अमित अखौरी का और प्रस्तुति और संयोजन प्रभु शरण के। पहले ये संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्रीड़ा जगत। क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज चर्चा में हम सबसे पहले बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। 48 टीमें 39 दिन तक 104 मैच खेलेंगी। 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। कितनी टीमें हैं, कौन टीमें मजबूत हैं, इस पे चर्चा होगी। इसके अलावा आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए T20 टीम भारतीय टीम की घोषणा हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर्सनैलिटी में हम बात करेंगे आर प्रज्ञा नंदा की, और इसके अलावा फ्रेंच ओपन जीतने वाली रूस की नई खिलाड़ी एंड्रीवा की। खास खास में और भी कुछ बातें होंगी और खेल खबरें तो होंगी। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। फुटबॉल प्रशंसकों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू होगा। कुल 39 दिनों तक चलने वाले खेल की दुनिया के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट का फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 104 मैच खेले जाएंगे। इस बार दोस्तों सभी की नजरें फुटबॉल जगत के दो महानायकों लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर टिकी है। ये दोनों दिग्गज अपना रिकॉर्ड 6th वर्ल्ड कप खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे, जहां डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के कप्तान मेसी खिताब को बरकरार रख इतिहास रचना चाहेंगे। वहीं पुर्तगाल के खिलाड़ी रोनाल्डो अपने देश को पहली बार विश्व विजेता बनाने के इरादे से उतरेंगे। खिताब की रेस में अन्य स्टार खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो 2024 की यूरो चैंपियन स्पेन अपने वंडर बॉय लामिने यमाल के दम पर ट्रॉफी जीतने का सपना देख रही हैं। वहीं पिछली बार फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले किलियन एम्बापे की फ्रांस, हैरी केन की इंग्लैंड, विनीसियस जूनियर की ब्राजील और 4 बार की चैंपियन जर्मनी को भी कम नहीं आंका जा सकता। इस बार केप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान के रूप में 4 टीमें वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रही हैं। दूसरी ओर कई देश लंबे अंतराल के बाद मेगा टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हैं। इराक 40 साल बाद इस टूर्नामेंट में लौट रहा है, जबकि स्कॉटलैंड 28 साल बाद अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा। अब कुछ खास बातें दोस्तों, कौन सी टीमें मजबूत हैं, किन का दावा मजबूत है, इस पर थोड़ी चर्चा। वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में पहली बार 3 देश एक साथ मेजबानी कर रहे हैं। मैक्सिको पहला देश है जहां तीसरी बार वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। वहां 1970 और 1986 में भी वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन हुआ था। अमेरिका को दूसरी बार मेजबानी मिली है। यहां 1994 में वर्ल्ड कप हो चुका है, जबकि कनाडा पहली बार मेजबान है। इस बार वर्ल्ड कप में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इसलिए फॉर्मेट में कुछ बदलाव किए गए हैं। सभी टीमों को 4-4 के 12 ग्रुपों में बांटा गया है। एक ग्रुप की टीमें आपस में एक एक मैच खेलेगी। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमों के साथ साथ तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 बेस्ट टीमें नॉकआउट में पहुंचेंगी। इसके बाद 32 टीमों के बीच नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मैच होंगे। सेरेमनी की अगर हम बात करें तो तीनों मेजबान देशों में अलग अलग उद्घाटन समारोह हो रहे हैं। मैक्सिको में जे बॉल्बिन एलेजान

एलेजांड्रो फर्नांडिस जैसे कलाकार प्रस्तुति देंगे। कनाडा में नोरा फतेही के अलावा माइकल बबले, एलेसिया कारा जैसे सितारे जलवा बिखेरेंगे। अमेरिका में केटी पेरी, फ्यूचर लिसा जैसे ग्लोबल स्टार्स परफॉर्म करेंगे। फाइनल के हाफ टाइम शो को लेकर भी काफ़ी उत्साह है दर्शकों में। कोल्ड प्ले के दिग्गज क्रिस मार्टिन द्वारा तैयार किए गए शो में शकीरा, मैडोना और बीटीएस समा बांधेंगे। ये जो महा आयोजन हो रहा है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे इस बार 32 के बजाय 48 टीमें खेल रही हैं। तीन देश मिलकर मेजबानी कर रहे हैं। 8 मैच जीतने होंगे खिताब के लिए सात की जगह पे। राउंड ऑफ 32 पहली बार होगा। मैचों के बीच खिलाड़ियों के इंटरव्यू होंगे। कॉर्नर किक में VAR का दखल होगा। फाइनल में भव्य हाफ शो का आयोजन होगा। 110 करोड़ तक पहुंची है टिकट की कीमत। सबसे महंगा टिकट 110 करोड़ रुपए का है, जबकि सबसे सस्ता टिकट 6000 का है। फाइनल के स्टैंडर्ड टिकट की कीमत करीब 22 करोड़ रुपया बताई जा रही है। गर्मी का भी असर होगा, जहां आयोजन हो रहा है वहां गर्मी का भी असर होगा। फुटबॉल के पारंपरिक रूप से 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं, जिन्हें 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक अलग करता है, लेकिन वर्ल्ड कप में मैच 4 क्वार्टर में बटा हुआ नजर आएगा। वेसन गर्मी की वजह से हर मैच में दोनों हाफ के बीच अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक दिया जाएगा, और यह ब्रेक पहले हाफ में लगभग 22वें मिनट में और दूसरे हाफ में 67वें मिनट के आसपास होगा। यह 3-3 मिनट का ब्रेक लेना अनिवार्य होगा। मैनेजर इस ब्रेक का इस्तेमाल खिलाड़ियों को फिर से संगठित करने, डिफेंसिव रणनीति में बदलाव करने और मोमेंटम बदलने के लिए कर सकते हैं। इस दौरान खिलाड़ियों को टच लाइन के पार जाने की अनुमति नहीं होगी। कोच मैदान पर ही टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेंगे। इस नए हाइड्रेशन नियम का टूर्नामेंट के कुल समय पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वर्ल्ड कप में कुल 104 मैच खेले जा रहे हैं। हर मैच में 3-3 मिनट के दो अनिवार्य ब्रेक होंगे और पूरे टूर्नामेंट में कुल 624 अतिरिक्त मिनट जुड़ेंगे। यह समय 10.4 घंटे के बराबर होगा, यानी अतिरिक्त समय में लगभग 7 पूरे फुटबॉल मैच खेले जा सकते हैं। ब्रॉडकास्टर को इस अनिवार्य रुकावट के दौरान मैदान पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दे दी गई है। विज्ञापन तभी शुरू हो सकेंगे जब रेफरी के सीटी बजाने के 20 सेकंड बीत चुके होंगे। वहीं खेल शुरू होने के कम 30 सेकंड के पहले ब्रॉडकास्टर को मैदान का लाइव एक्शन दिखाना होगा। 20 साल बाद भी वर्ल्ड कप में ये 4 सितारे जो हैं वो दिखाई देंगे। टूर्नामेंट में 1248 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से 4 ऐसे हैं जो 20 साल पहले जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। साल 2006 में हुए वर्ल्ड कप में 736 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उनमें से सिर्फ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैक्सिको के गोइलेमो ओचोवा और क्रोएशिया के लुका मॉड्रिच इस बार भी नजर आएंगे। 48 टीमों को 12 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए में मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और चेक रिपब्लिक की टीमें हैं। ग्रुप बी में कनाडा, बोस्निया हर्जेगोविना, कतर, स्विट्जरलैंड की टीमें हैं। ब्राजील, मोरक्को, हेती और स्कॉटलैंड की टीमें ग्रुप सी में हैं। अमेरिका, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की की टीम ग्रुप डी में हैं। ग्रुप ई में जर्मनी, कुराकाओ, आइवरी कोस्ट, इक्वाडोर है। ग्रुप एफ में नीदरलैंड, जापान, स्वीडन और ट्यूनिशिया की टीमें हैं। ग्रुप जी में बेल्जियम, मिस्र, ईरान और न्यूजीलैंड की टीम है। ग्रुप एच में स्पेन, केप वर्डे, सऊदी अरब और उरुग्वे की टीम है। ग्रुप आई में फ्रांस, सेनेगल, इराक और नॉर्वे की टीम है। इराक की टीम 40 साल बाद वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है। ग्रुप जे में अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया और जॉर्डन की टीम है। ग्रुप के में पुर्तगाल, कांगो, उज्बेकिस्तान और कोलंबिया की टीम है। ग्रुप एल में इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना और पनामा की टीमें हैं। वर्ल्ड कप के 104 मुकाबले 3 देशों के 16 स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसमें अमेरिका के 11, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में आयोजन होगा। ओपनिंग मुकाबला मैक्सिको सिटी के स्टेडियम में होगा, जबकि फाइनल न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में
खेला जाएगा। कनाडा के बैंकवर से अमेरिका मियामी के बीच करीब 4,500 किलोमीटर की दूरी इसे भौगोलिक रूप से सबसे फैला हुआ वर्ल्ड कप

बनाती है। इसके उलट 2022 का कतर वर्ल्ड कप सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्मेट था, जहां दो स्टेडियम के बीच सबसे ज्यादा दूरी 55 किलोमीटर की थी। इससे पहले 1994 में अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड कप दूसरा सबसे ज्यादा फैला हुआ वर्ल्ड कप माना जाता था, जहां पूर्वी और पश्चिमी तट के शहरों के बीच 4000 किलोमीटर का फासला था। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला फुटबॉल का यह महाकुंभ 11 जून को शुरू होगा। 19 जुलाई को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा, फाइनल मैच खेला जाएगा। अब देखना है कि कौन सी टीमें किस तरह का प्रदर्शन करती हैं। हमने आपको बताया दोस्तों कि फुटबॉल की रोशनी में जगमग होंगे 3 देशों के 16 शहर, यानी अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के 16 स्टेडियमों में फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 45 से 94,000 तक दर्शक क्षमता होगी। सभी में नेचुरल घास, मैक्सिको में ओपनिंग मुकाबला और अमेरिका में फाइनल खेला जाएगा। कुछ स्टेडियम की हम चर्चा कर लें, जैसे मेटलाइफ स्टेडियम, ये 2 फीफा फाइनल का मेजबान रह चुका है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में इस स्टेडियम की क्षमता 82,500 है और इस मैदान पर पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था और अब फिर एक बार 19 जुलाई को यहां फाइनल खेला जाएगा। और आम तौर पर यहां सिंथेटिक टर्फ होती है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के लिए इसे विशेष तकनीक से प्राकृतिक घास में बदला गया है। विसी प्लेस, 2010 में विंटर ओलंपिक का आयोजन यहां हो चुका है। ये कनाडा के वैंकूवर में है। 54,000 दर्शक इसमें दुनिया की सबसे बड़ी केबल सपोर्टेड रिएक्टेबल रूप में ये बना हुआ है ये स्टेडियम। यहां साल 2015 के महिला फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला जा चुका है और साल 2010 में विंटर ओलंपिक की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी यहीं हुई थी। मर्सिडीज बेंच स्टेडियम, यह अटलांटा में है। 71,000 दर्शकों की क्षमता है। इसकी घूमने वाली छत रोमन पैथियान से प्रेरित है। जब इसकी 8 विशाल पंखुड़ियाँ खुलती हैं और बंद होती हैं तो यह कैमरे के शटर जैसा दिखाई देता है। यहाँ टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल होगा। यहाँ खाने पीने की चीज़ों की कीमतें सामान्य बाजार जैसी होती हैं। AT&T स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इसमें समा सकता है। ये डलास अमेरिका में है। 94,000 दर्शकों की क्षमता है और इस लिहाज से यह टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसके भीतर 2.7 मिलियन स्क्वायर मीटर की जगह इतनी विशाल है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अपने बेस सहित इसकी बंद छत के अंदर समा सकता है। एरोज़हेड यहाँ शोर का गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है। कंसास सिटी में है। क्षमता 76,000 दर्शक है। स्टेडियम के नाम दुनिया के सबसे शोरगुल वाले आउटडोर स्टेडियम का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है नाम। 2014 में यहाँ 142.2 डेसिबल शोर रिकॉर्ड किया गया था, जो जेट विमान के टेक ऑफ की आवाज़ के बराबर माना जाता है। यह अमेरिका में सबसे पुराना स्टेडियम है। इसे 1972 में बनाया गया था। सिएटल में एक स्टेडियम है जो घोड़े की नाल के जैसा है। वाशिंगटन स्टेट के इस स्टेडियम का आकार एक हॉर्सू यानी घोड़े की नाल के जैसा है। यहाँ की बनावट ऐसी है कि दर्शकों का शोर मैदान पर गूंजता है, जो विरोधी टीम पर दबाव बनाता है। और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि दर्शकों की आवाज वापस मैदान में गूंजती रहती है। सैन फ्रांसिस्को में एक स्टेडियम है, लेवाइस स्टेडियम। ये ग्रीन स्टेडियम का इसको दर्जा मिला हुआ है। 71,000 दर्शकों की क्षमता है। सिलिकॉन वैली के केंद्र में स्थित होने के कारण यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल और ग्रीन स्टेडियम के तर्ज पर इसे डिजाइन किया गया है। यह अमेरिका का पहला बड़ा खेल स्टेडियम है, जिसने निर्माण के दौरान ही गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया। तो बहुत तरह से तैयारी की गई है। एक कुछ स्टेडियम है जहां इसके पहले भी आयोजन हो चुका है। और दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा के दूसरे पार्ट में हम बातचीत करने जा रहे हैं आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए T20 भारतीय टीम की घोषणा की गई है। T20 क्रिकेट टीम में नए युग की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का नया कप्तान

बनाया गया है। वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्य कुमार को उनके गिरते फॉर्म और भविष्य की योजना के कारण टीम से ड्रॉप कर दिया गया। भारतीय टीम 2 T20 के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी और इसके बाद 1 से 11 जुलाई के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। आयरलैंड के साथ भारत का मुकाबला 26 और 28 जून को होगा। इन दौरों के लिए घोषित टीम में बिहार के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। सूर्यवंशी देश के क्रिकेट इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीम में तिलक वर्मा को नया उपकप्तान बनाया गया है। तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को पहली बार मौका मिला है। बुमराह और हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। हालांकि बुमराह सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों में वापसी करेंगे। चोट के बाद हर्षित राणा की टीम में वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई है और आईपीएल में बतौर कप्तान 56% मैच इन्होंने जीते हैं। धोनी और रोहित शर्मा के क्लब में शुमार हो चुके हैं। 2024 में कोलकाता को इन्होंने चैंपियन बनाया था। 2025 में पंजाब को फाइनल में पहुंचाया। अब सूर्या की अगर हम बात करें तो आईपीएल 19 में 21 के औसत से 13 मैचों में इन्होंने मात्र 270 रन बनाए। अगले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए थोड़ा एज फैक्टर भी है और 2025 में 168 का स्ट्राइक रेट था जो लुढ़क कर 148 पहुंच गया। वैभव की अगर हम बात करें तो अकेले दम पर ही इन्होंने राजस्थान को प्लेऑफ में पहुंचाया और यही वजह है कि इन्हें इतना बड़ा अवार्ड मिला। आईपीएल में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए इन्होंने। ऑरेंज कैप मिला। 2028 के T20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक के लिए ये तैयारी कर रहे हैं और ये सेलेक्टर्स के नज़र में वर्ल्ड कप के लिए ये उपयुक्त माने जा रहे हैं। अब बुमराह की बात करें तो लगातार 9 टेस्ट खेलने हैं जो WTC फाइनल के लिए अहम है, इसलिए इनको आराम दिया गया है। सेलेक्टर आगरकर ने कहा कि T20 क्रिकेट बहुत होती है, उन्हें कभी भी वापस ला सकते हैं। हार्दिक पांड्या की बात करें तो वनडे क्रिकेट के लिए पूरी तरह से तैयार और फिट रखना है उनको। चयनकर्ता नीतीश रेड्डी जैसे युवाओं को मौका दे रहे हैं। ऑलराउंडर के विकल्प के रूप में शिवम दुबे को भी मौका मिला है। वाशिंगटन रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर को आजमाने के लिए उन्हें आराम दिया गया और टेस्ट वनडे और आईपीएल के लंबे सीजन को देखते हुए उनका वर्कलोड मैनेज किया गया और कुलदीप को रखा गया। T20 टीम में श्रेयस और संजू ही 30 के ऊपर हैं। टीम की औसत उम्र 26 से 27 साल के बीच है। इसका मतलब है कि युवा खिलाड़ियों को आजमाने की कोशिश की गई है, युवा टीम बनाई गई है। अब देखना है कि आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे में भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है। और दोस्तों अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पर्सनालिटी में आज हम 2 खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे, एक आर प्रज्ञा नंदा की और दूसरा फ्रेंच ओपन जीतने वाली खिलाड़ी एंड्रीवा की। पर्सनालिटी में दोस्तों आज सबसे पहले हम बात करेंगे 20 साल के खिलाड़ी आर प्रज्ञा नंदा की जिन्होंने जीता है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट और ऐसा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। भारतीय चेस के युवा सितारे आर प्रज्ञा नंदा ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। उन्होंने प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतकर न सिर्फ इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया बल्कि वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। इस जीत की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने दुनिया के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार और 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन मैग्नस कार्लसन को उन्हीं के घरेलू टूर्नामेंट में हराया। उन्होंने एक ही क्लासिकल टूर्नामेंट में उन्हें 2 बार मात देने का कारनामा भी कर दिखाया। 20 साल के प्रज्ञा नंदा की यह उपलब्धि कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2008 के बाद से किसी भी खिलाड़ी ने कार्लसन को एक ही क्लासिकल चेस टूर्नामेंट में 2 बार नहीं हराया था। उनसे केवल 4 खिलाड़ी वेसेलिन टोपालो, विश्वनाथन आनंद, एंड्री बोलोकिटिन और डेनियल स्टेल वेगन इन्होंने ही उपलब्धि हासिल की थी। इतना ही नहीं 2007 में मारेलिया लिनारेस टूर्नामेंट में विश्वनाथन आनंद के बाद
प्रागी ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई ऐसा क्लासिकल टूर्नामेंट जीता जिसमें खुद नंबर एक खिलाड़ी कार्लसन खेल रहे हों। 10 राउंड के टूर्नामेंट में टॉप खिलाड़ी वेस्ले से 5.5 अंक पीछे थे प्रागी। 10 राउंड के टूर्नामेंट में छठे राउंड तक प्रागी अंक तालिका में सबसे नीचे थे। वे टूर्नामेंट लीडर वेस्ले सो से 5.5 अंक पीछे थे और लगातार 2 क्लासिकल गेम हार चुके थे। हालात इतने चुनौतीपूर्ण थे, गेम थ्योरी विशेषज्ञ डॉक्टर मेहमत मास सेवन ने भविष्यवाणी भी कर दी कि प्रागी के जीतने की संभावना मात्र 0.7% है, लेकिन अंतिम 4 राउंड में उन्होंने अलीरेजा फिरोजा, कार्लसन, गोकेश और विंसेंट केमार के खिलाफ जीत दर्ज की और अंतिम दिन वेस्ले को पछाड़कर खिताब अपने नाम कर लिया। अगर हम टर्निंग पॉइंट की चर्चा करें तो प्रागी और उनके रणनीतिक सहायक वैभव सूरी ने छठे राउंड के बाद हार नहीं मानी। सूरी के अनुसार कार्लसन के खिलाफ दूसरी जीत ने टर्निंग पॉइंट का काम किया। सूरी ने कहा, आपको मैग्नस के साथ खेलने का मौका ही जल्दी नहीं मिलता, उन्हें 2 बार हराना तो दूर की बात है। उस जीत ने प्रागी के लिए एक बड़ी प्रेरणा का काम किया। जीत का सीक्रेट क्या रहा? तो लगातार 4 जीत का असली सीक्रेट था रणनीति में बदलाव और आराम। शुरुआती गेम में प्रागी समय की कमी में फंस रहे थे, इसे सुधारने के लिए उन्होंने अपनी चालों की गति बढ़ाई, उन्होंने अपनी नींद पूरी की और सुबह देर से उठना शुरू किया ताकि गेम से पहले कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कम से कम समय बिताएं। इसका फायदा यह हुआ कि जब खेलने उतरे तो पूरी तरह से ऊर्जा भरी हुई थी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रागी के लिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंच ओपन विजेता एंड्रीवा की। दोस्तों, कुछ जीतें सिर्फ ट्रॉफी नहीं दिलाती हैं बल्कि यह साबित करती है कि वर्षों से की जा रही भविष्यवाणियां सही थी। फ्रेंच ओपन 2026 का महिला सिंगल्स फाइनल मीरा एंड्रीवा के लिए ऐसा ही एक पल लेकर आया जिस खिलाड़ी को किशोर उम्र से ही महिला टेनिस का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा था, उसने आखिरकार पेरिस की लाल मिट्टी पर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर उस भरोसे को हकीकत में बदल दिया। रूस की 19 साल की एंड्रीवा ने शनिवार को फाइनल में पोलैंड की माजा चौवालिस्का को 6-3, 6-2 से हराकर रोला गैरो का खिताब अपने नाम कर लिया। मैच केवल 82 मिनट चला लेकिन इस जीत के मायने कहीं बड़े थे। वे 1992 में मोनिका सेलेस के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई, साथ ही वह इस सदी की तीसरी सबसे युवा ग्रैंड स्लैम विजेता भी हैं। उनसे कम उम्र में केवल मारिया शारापोवा ने 17 साल में ये खिताब जीता था। एमा राडुकानू ने 18 साल में ये खिताब जीता था। फाइनल की शुरुआत आसान नहीं थी। तेज हवाओं और ग्रैंड स्लैम फाइनल के दबाव के बीच शुरुआती गेमों में दोनों खिलाड़ी लय तलाशती हुई नजर आईं। पहले 5 गेम तक मुकाबला बराबरी का रहा लेकिन इसके बाद एंड्रीवा ने जिस तरह खेल का स्तर बदला उसने मैच की दिशा ही बदल दी। उन्होंने लगातार 9 गेम जीतकर चौलिंस्का की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। 25 विनर्स और बेस लाइन से लगातार दबाव में उन्होंने पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा। मीरा एंड्रीवा कहती हैं कि मैं खुद को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुश्किल समय में भी मैंने खुद पर भरोसा जताया, हर दिन बेहतर खिलाड़ी और बेहतर इंसान बनने की कोशिश की और इन 2 हफ्तों में मैं कितनी नर्वस थी और किन मानसिक चुनौतियों से गुजरी यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों रांची बरियातू की बेटियों के, जिन्होंने जापान में अपने राज्य का परचम लहराया और भारत को अंडर-18 एशिया कप में कांस्य पदक दिलाया। जापान के काका मिगाहारा में आयोजित अंडर-18 महिला हॉकी एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। कोरिया के खिलाफ तीसरे स्थान के मुकाबले में भारत ने 3-0 से जीत दर्ज की और इस सफलता के केंद्र में झारखंड की 3 बेटियां रही जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य का नाम रोशन किया। इसमें रांची की सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स बरियातू की गोलकीपर खिली, डिफेंडर सुमन सांगा और नीलम टोपनो शामिल हैं और इनके अलावा एकलव्य
रांची की श्रुति तथा सिमडेगा आवासीय बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की पुष्पा मांझी और संदीपा भी भारतीय टीम का

0: चुका है। इस संस्थान से 60 से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आज भी यहाँ छात्राओं के लिए निक्की और ब्यूटी जैसी खिलाड़ी प्रेरणा देख रही हैं। बरियातू आवासीय बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की खिली, सुगन और नीलम का चयन पहले भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आयोजित अंडर 18 टेस्ट सीरीज के लिए हुआ था। वहाँ के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें एशिया कप टीम में जगह मिली। कोच करुणा पूर्ति कहती हैं कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। स्कूल के प्राचार्य दीपक कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों की इस सफलता से पूरे स्कूल में उत्साह का माहौल है। वहीं पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 में भारतीय हॉकी टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक और अनुशासित खेल दिखाने वाली टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज कर एशिया का ताज हासिल किया। टीम में झारखंड खूंटी के आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोय भी शामिल रहे। आशीष फाइनल में हैट्रिक जमा कर भारत की जीत के नायक बने। तो ये हमारे स्टेट के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ की बेटियों ने भारत का नाम बढ़ाया, अपने राज्य का नाम रोशन किया। और दोस्तों, इसी के साथ अब हमारा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण, और इसी के साथ अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। रिपोर्ट संकलन प्रस्तुत स्वर अमित अखौरी का था और प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण का था। ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम जोहार रांची।

0: सफर कठिन है सही, मगर आगे बढ़ना जिंदगी है। कांटों से भरी राहों में फूलों सा खिलना जिंदगी है। हार जीत की फिक्र छोड़कर कोशिश करना जिंदगी है। गमों के गहरे साए में भी मुस्कुराहटें ढूंढ लेना जिंदगी है। इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जोहार रांची में। मैं हूं रचना
1: और मैं हूं मोनिता।
0: स्वीकार करें हमारा नमस्कार जोहार। और मोनिता कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत

0: अच्छी हूँ। आप कैसे हो रचना?
1: बिल्कुल, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लेकिन अभी क्या है ना कि बहुत गर्मी है, तो थोड़ी इस गर्मी से लोग सारे परेशान हैं। लेकिन इस परेशानी को हम बढ़ने नहीं देंगे। कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: सच में मोनिता बहुत ही खूबसूरत गाना था, और अगर आप सच में किसी की मुस्कुराहट की वजह बनती है तो इससे बड़ी बात और ज़िंदगी में क्या हो सकती है।
1: वो है ना इंग्लिश में एक सेइंग कि व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड, मतलब कि जो भी आप बांटते हैं वही आपके पास बढ़ता है, चाहे वो धन हो या फिर अन्न, सम्मान हो या अपमान, नफरत हो या मोहब्बत।
0: इसीलिए सोच समझकर बांटिए, क्योंकि वही लौटकर आपके पास आएगा। इसलिए तो कहते हैं ना कि प्यार
1: बांटते
0: बांटते चलो।
1: चलो।

0: जी हाँ, प्यार बांटते चलो, और इसी तरह से हमारा सफ़र भी अब आगे बढ़ते रहेगा प्यार के साथ साथ ही। लेकिन अब मोनिता, बात करते हैं मौसम की। तो
1: जी
0: मौसम की क्या बात करें, मौसम तो हर समय बदल रहा है, कभी खुश
1: कभी
0: कभी
1: धूप कभी
0: कुछ
1: छांव।
0: कभी लगता है कि अभी बारिश होगी और बारिश होती नहीं है, और कभी इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है अचानक से।
1: कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस फटाफट कपड़े उतार लो कि बारिश ना आने वाली है, और फिर तुरंत इतनी धूप हो जाती है कि समझ ही नहीं
0: बस तो
1: आता
0: मौसम ऐसा है ना कि तुमको ऊपर नीचे भगाता रहता है। और अभी भी मौसम के ऐसी हालात हैं कि बोल रहा है कि 13 जिलों में से 11 से 13 जून तक बारिश का अलर्ट अभी बताया जा रहा है। और रांची में भी, यानी कल जो है, वो आंशिक बादल छाए हुए थे और उमस भी काफ़ी थी, जिससे कि लोगों को दिक्कत हुई। और इस दौरान रांची का कल जो तापमान था, अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि 24 घंटे पहले की तुलना में 2.6 डिग्री अधिक था।
1: और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है, और कई हिस्सों में बारिश की भी संभावना है। तो अगर
0: जैसे
1: आप घर से बाहर जा रहे हैं तो छतरी ज़रूर लेके जाएं, तो
0: हाँ,
1: धूप से भी
0: बचते हैं
1: बचाएगी
0: बारिश
1: और
0: से भी।
1: बारिश से
0: और
1: भी
0: ये
1: आपको
0: वैसे भी
1: बचाएगी।
0: हमारी आदत में शामिल होना चाहिए कि हम कभी भी बाहर निकले, चाहे मौसम कैसा भी हो, एक पानी की बोतल और छतरी ज़रूर
1: जरूर
0: हम
1: साथ में
0: लेके
1: रखें,
0: चले।
1: और अगर बारिश हो तो ध्यान रखें कि मतलब बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ना खड़े हो, क्योंकि अक्सर ये न्यूज़ आती है कि वहाँ वज्रपात होती है और कभी कोई अनहोनी भी हो जाती है, तो थोड़े अवॉइड करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसी तरह से 11 से 13 जून तक रांची समेत खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इस दौरान ये बताया गया कि 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं,
1: तो
0: जैसे
1: तुम ये
0: कि
1: कहना चाहती हो रचना कि मौसम बहुत प्यारा प्यारा हो सकता है।
0: हाँ, हो सकता है हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम तो अपने रंग बदल ही रहा है। हो सकता है थोड़े दिनों में बारिश हो तो थोड़ी राहत हमें गर्मी से मिले, गर्मी से राहत मिलती रहेगी, लेकिन तब तक हम एंजॉय करते हैं खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: वनिता, चलो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और समय एक ऐसा पहिया है जो कभी नहीं रुकता। समय के हर सेकंड में कुछ न कुछ बदलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे समय खुद एक जगह नहीं रुकता। समय का ये पहिया देश और दुनिया में घट रही घटनाओं को इतिहास के पन्नों में दर्ज करता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं आज के इतिहास की, तो इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं आज के इतिहास के बारे में।
2: आज ही के दिन यानी 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। और अगर हम बात करें 1999 में, तो कुली ऑडिनो माउंट एवरेस्ट पर दक्षिण तथा उत्तर दोनों छोर से चढ़ाई करने वाले विश्व की पहली महिला
1: बनी थी। और 1980 में 9 जून के ही दिन अंतरिक्ष यान सौपूज T2 पृथ्वी पर लौटा था। और 9 जून 1959 को अमेरिका ने USS जॉर्ज वाशिंगटन सबमरीन को लॉन्च किया था। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस ये दुनिया की पहली सबमरीन थी।
2: और 1975 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदन की कार्रवाई का रेडियो पर लाइव प्रसारण शुरू किया गया था। 1934 में आज के ही दिन मिक्की माउस के बाद डिज्नी का दूसरा सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक पहली बार दर्शकों के सामने आए थे।
1: और 2006 में 9 जून के ही दिन म्यूनिख में विश्व कप फुटबॉल की रंगारंग शुरुआत हुई थी।
2: और 9 जून 2008 को केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन ने चंडीगढ़ को तंबाकू मुक्त घोषित किया। और 2008 में ही अमेरिका की एक ऊर्जा कंपनी ने पवन ऊर्जा के टरबाइन निर्मित करने वाली कंपनी
1: सुजलान एनर्जी
2: लिमिटेड के 160 मेगावाट्स खरीदने का ऑर्डर रद्द किया।
1: और 9 जून 2008 को ही फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने 9वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी आईफा पुरस्कार समारोह में फिल्म चक दे इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। तो चलो सुनते हैं उसी फिल्म का एक गीत।

0: रचना, हम अपने श्रोताओं को आज इतिहास के बारे में बता रहे थे, तो आज है 9 जून और हर दिन अपने साथ कुछ खास और नया जरूर लेकर आता है।
1: बिल्कुल।
0: तो अपने श्रोताओं को हम बता दें कि आज किन सुप्रसिद्ध हस्तियों का जन्मदिवस है। तो अगर हम 1933 की बात करें तो आज के दिन सुप्रसिद्ध भारतीय कवि,
1: संस्मरणकार,
0: कहानीकार, उपन्यासकार तथा समीक्षक अजीत शंकर चौधरी का जन्म हुआ था।
1: और बसंत देसाई का जन्म भी आज ही के दिन 9 जून 1912 में हुआ था। वे भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार थे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी का जन्म भी आज ही के दिन यानी 9 जून 1949 को हुआ था।
0: और हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज के दिन ही भारतीय अभिनेत्री अमीषा पटेल का जन्म दिवस है, जिनका जन्म 1975 में हुआ था और उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है से वो सुपरस्टार, पहली फिल्म से सुपरस्टार बन गई थी।
1: और भारतीय अभिनेत्री सोनम कपूर का जन्म भी आज ही के दिन 9 जून 1985 को हुआ था। वह अभिनेत्री के रूप में एक अपने करियर को शुरू करने से पहले उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ एक सहायक के रूप में काम किया था,
0: मतलब एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने
1: शुरुआत की थी।
0: और उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से अपने करियर की शुरुआत भी की थी, जो भी एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी, उसके गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे।
1: हाँ, तो चलो क्यों ना सोनम कपूर के जन्मदिन के अवसर पर सुन लेते हैं सांवरिया फिल्म का ही ये खूबसूरत सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: और आज मुनीता महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का निधन आज ही के दिन यानी 9 जून 1900 को हुआ था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी जो कि अब झारखंड है में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। और उन्हें आदिवासियों का भगवान भी कहते हैं और धरती आबा के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। बिरसा मुंडा की उम्र भले ही छोटी थी लेकिन कम उम्र में ही वे आदिवासियों के भगवान बन गए थे। और 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी बगावत की और ये महाजन कर्ज के बदले आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। बिरसा मुंडा के निधन तक चला ये विद्रोह उलगुलान नाम से जाना जाता है।
1: और हम अपने श्रोताओं को ये भी जरूर बताना चाहेंगे कि बिरसा की शहादत के केवल 3 वर्ष के बाद 1903 में ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी ब्रैटली बॉट ने छोटा नागपुर अ लिटिल नॉन प्रोविंस ऑफ द एम्पायर में धरती आबा की कहानी को स्थान दिया। और इसके बाद 1912 में प्रसिद्ध मानव विज्ञानी एस सी रॉय ने द मुंडाज एंड देयर कंट्री में मुंडाओं के इतिहास, सामाजिक संरचना, भूमि व्यवस्था, धर्म आंदोलन और बिरसा के नेतृत्व में हुए उलगुलान का विस्तृत उल्लेख किया था। और इस पुस्तक को मुंडा संस्कृति का एक प्रकार का विश्वकोश माना जाता है। रचना
0: और आज भगवान बिरसा मुंडा की शहादत का 126वां वर्ष है। आज उनके शहादत दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: நாட்டினால் சுயம் இனி கட்டுப்படை. பாரதிய சேனா.
1: और इतिहास की बात हम कर रहे हैं जिनका आज के दिन निधन हुआ था, तो 1931 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध शहीद स्वतंत्रता सेनानी हरिकिशन सरहदी का निधन हुआ था।
2: राज खोसला जो एक हिंदी फिल्मों के शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक थे, वे भी 9 जून 1991 में हम सबको छोड़कर चले गए थे। और 1995 में आज के दिन ही हिंदी फिल्म निर्देशक सत्येन बोस का निधन हुआ था।
1: और 2011 में प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु हुई थी। और प्रसिद्ध गीतकार और शायर असद भोपाली भी आज ही के दिन यानी 9 जून 1990 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। और उनके द्वारा मैंने प्यार किया फिल्म में लिखे गए गीत को फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो चलो सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत।

0: देखो मोनिता, बहुत ही खूबसूरत सा गीत मैंने सुना है, तुम्हें भी अपने अपने श्रोताओं को भी। और इस खूबसूरत गीत के बाद हम अब ले चलेंगे अपने श्रोताओं को एक बहुत ही खूबसूरत जगह में।
1: तभी से मैं सोच रही थी कि रचना कहीं घुमाने लेके क्यों नहीं जा रही है हमारे श्रोताओं को, जबकि अभी वेकेशंस का टाइम भी चल रहा है।
0: इसीलिए तो बता रही हूँ ना कि आज हम जाएंगे मुन्नार की सैर करने।
1: अरे वाह।
0: और मुन्नार यानी कि केरलम में मुथिरापुझा, नल्लाथनी और कुंडला नदियों का संगम स्थल मुन्नार अंग्रेजों के ज़माने में गर्मियों का विश्राम स्थल हुआ करता था। तो इसीलिए अभी गर्मी की वेकेशंस भी चल रही हैं तो लोग जाना भी चाहते होंगे, तो हम मुन्नार की बात करेंगे। कोची हवाई अड्डे से लगभग 130 किलोमीटर दूर मुन्नार पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। घुमावदार सड़कें, पहाड़ी पर हरी लहरों की तरह चाय बागान और नारियल के पेड़ों के साथ चारों तरफ फैली हरियाली में पता ही नहीं चलता कि सफर कब खत्म हो गया।
1: और मुन्नू का अर्थ 3 है, जो कि आरू का अर्थ नदी, समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर ऊपर मुथिरापुच्छा, नल्लाथनी और कुंडला नदियों का संगम स्थल मुन्नार अंग्रेजों के जमाने में भी गर्मी का विश्राम स्थल था। और इंग्लैंड भेजने के लिए चाय, कॉफी व गर्म मसालों का संग्रह का ये क्षेत्र भी था। और यहाँ पर 2700 मीटर ऊंची आनामुड़ी चोटी ट्रैकिंग के लिए अच्छी जगह है, और साथ ही साथ माठ पेटी में सुंदर झील किनारे बैठकर आसपास के पहाड़ियों और हरियालों का नजारा भी बहुत खूबसूरती से आप
0: देखो।
1: ले
0: तुम
1: सकते
0: जब बोल रही
1: हैं।
0: हो ना सब, तो मुझे लग रहा है कि सच में वहाँ जाऊँ, क्योंकि मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक है। अच्छा है, लगता है कि पहाड़ों पे जाना, ट्रैक करना, तो और जिनको ट्रैकिंग का शौक है वो इस जगह पर जा सकते हैं। और हरियाली जिनको पसंद है तो ये तो उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और साथ ही साथ वहाँ पे हम पद्मनाभ स्वामी का दर्शन भी कर सकते हैं।
1: और मुन्नार में पता है, मुन्नार में ना एक विकसित संग्रहालय में चाय की विकास यात्रा समझ सकते हैं। और ये चाय उसी पौधे से बनती है जिससे काली या हरी चाय तैयार होती है, परंतु इसे तैयार करने का तरीका कुछ अलग ही है। जैसे सफ़ेद चाय के लिए पौधे की सबसे नई पत्तियों को तोड़ा जाता है, और हरी पत्तियों से चाय तैयार करने की प्रक्रिया देखने के बाद स्वाद का आनंद और खरीदारी करते हुए यात्रा
0: को
1: अलग
0: आगे।
1: ही आनंद है।
0: बिल्कुल, देखो तुम तो घुमा रही थी और साथ साथ अभी चाय की खरीदारी भी करवाने लगी,
1: चाय भी पिला दी
0: क्योंकि हमारे यहाँ चाय के बिना तो सुबह होती ही
1: होती
0: नहीं है।
1: नहीं है,
0: कहीं जाते हैं तो हमको चाय चाहिए चाहिए होती है, चाय सुबह है, कहीं भी रहें हम चाय पीते हैं।
1: और घर में हमारे कोई मेहमान भी आते हैं तो हम पूछते हैं चाय बनाएं, और इसी बहाने हम भी एक कप चाय उनके साथ पी लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो वहाँ जाइएगा तो आप चाय का आनंद ले सकते हैं और चाय खरीद भी सकते हैं अगर आप चाय के शौकीन हैं।
1: सबसे
0: तो
1: बड़ी बात है कि फ्रेश टी आपको वहाँ पे मिलेंगे,
0: तो कितनी अच्छी बात है ना कि आप साथ साथ वहाँ चाय खरीदेंगे भी और घूम भी सकते हैं चाय बागान भी।
1: तो आप चाय के हरियाली के साथ एक हरियाला सा प्यारा सा गीत भी सुना दीजिए हमारे लिसनर्स को।
0: बिल्कुल।

0: ये हरियाली और हरियाली पे मुड़ते हुए खूबसूरत से रास्तों पे जाते हुए हमने काफी चाय पी ली, बहुत सारे पकौड़े खा लिए हैं, नमकीन बिस्किट्स भी खा लिए साथ में, है ना
1: इतना कुछ
0: रचना?
1: खाओगी तो
0: मैं
1: फिर सेहत का क्या होगा?
0: समझ रही हूँ तुम्हारा इशारा, अभी हमने श्रोताओं को ये बताने का है कि सेहत का ख्याल कैसे रखें।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है सेहत का ख्याल रखना भाई आजकल। तो आज क्या हम बातचीत करेंगे मोनिता?
0: आज हम बात करेंगे कि हमारे खान पान से और हमारे रहन सहन से हमारे हृदय यानी दिल पे क्या असर पड़ता है। तो
1: इसीलिए बोल रही थी भी खाने पीने से कि पकोड़े खाएंगे, चाय पी ली है।
0: तो हृदय रोग एक गंभीर स्थिति है और जिसके लिए हमेशा डॉक्टर से परामर्श करता रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि हृदय रोग के लक्षण की अगर हम बात करें तो ये हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, जैसे कि सीने में दर्द, भारीपन, सांस लेने में कठिनाई या जल्दी थकान महसूस करना, घबराहट होना।

0: पैरों, टखनों या पेट में सूजन होना, अचानक बहुत अधिक पसीना आना और हृदय स्वास्थ्य के लिए ये लक्षण हो सकते हैं। देखो आजकल जो है ना, अचानक से ये बहुत कुछ हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमको ये बीमारी है, क्योंकि ये लक्षण हम समझ ही नहीं पाते हैं।
1: मेरे ना एक जान पहचान के भैया थे, तो वो अक्सर खाना खाते तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता था, तो बाद में पता चला कि उन्हें हार्ट में प्रॉब्लम है और उनका फिर ऑपरेशन

0: भी बाहर नहीं जाते हैं, ऊपर से इतनी
1: जंक
0: सारी जंक
1: फूड्स,
0: फूड्स खाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं तो असर होना ही है, तो वो हमारे सेहत पे पड़ता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और हृदय से स्वस्थ रखने के लिए हमारे जीवन शैली में कुछ कुछ छोटे छोटे बदलाव करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे
0: जैसे कि
1: कि
0: हाँ, खान पान में सुधार, यानी जैसे आप नमक कम खाएं, और क्योंकि देखो नमक कम खाना ये सभी के लिए ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसको हृदय की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर हो वही नमक कम खाएं, बल्कि आप सामान्य तरीके से एक नमक खाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा
1: और
0: है।
1: कच्चा नमक जो साथ में अक्सर आदत
0: खाते
1: होती है ना
0: हैं
1: साथ में लेने की, वो बहुत हानिकारक होता है। कच्चा नमक अवॉइड करना
0: हाँ, किसी
1: चाहिए,
0: को आदत होती है कि खाने में नमक सही भी रहेगा तभी भी वो नमक
1: थोड़ा सा
0: लेके खाते
1: नमक
0: हैं।
1: दो मिर्ची के साथ सलाद के साथ वो नमक लेते ही लेते हैं
0: और वो
1: तो
0: जो ऊपरी नमक है वही हमारे सेहत पे ज्यादा असर
1: बहुत
0: डालता
1: बहुत
0: है।
1: बहुत हानिकारक होता है। और ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट जैसे कि तली भुनी चीज़ें, इन सबसे तो बचना हमें चाहिए ही।
0: बिल्कुल। और आजकल वैसे भी हम सब लोग बहुत सारे जो हैं लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो अपना ख्याल तो रखते ही हैं, फिर भी आप तली भुनी चीज़ें कम से कम खाएं।
1: और अक्सर ना खाने से पहले कोशिश करें कि एक बिग पोर्शन ऑफ आप ताजे फल,
0: फल,
1: सब्जियां,
0: सैलेड।
1: अनाज, सैलेड जरूर खाएं। इससे आपको फाइबर मिलेगा जो हमारे सेहत के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है।
0: और इसके अलावा भी आपको कम से कम रोज़ाना 30 से 30 मिनट तक आप वॉक करें, योग करें, या कोई भी हल्का फुल्का व्यायाम करें जो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, उसकी आदत डालें।
1: और धूम्रपान और शराब का सेवन पूरी तरह बंद कर दे, क्योंकि ये हृदय के लिए और हृदय की धमनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है।
0: और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि तनाव जो है वो हमें, टेंशन जो आजकल बहुत सारे लोग लेते हैं, क्योंकि कुछ भी बात होता है, बिजनेस है, नौकरी है, हर चीज़ में टेंशन है, तो टेंशन तो हमारे शरीर को ख़राब करता ही है, उससे बचना चाहिए।
1: पता है एक रिसर्च में ये पाया गया ना कि जब भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में आ चुके हो ना, तो आप कुछ नहीं करें, बस आराम से चुपचाप बैठें और कुछ देर के लिए स्माइल करें। इससे भी ना बहुत असर पड़ता है हमारे मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे। सिर्फ एक स्माइल हमारे जीवन में कितना कुछ बदल सकती है।
0: और समय समय पर हमें अपनी जांच करती रहनी चाहिए, चाहे बीपी है, शुगर है, अगर है तो वो आप नियमित अपने अनुसार अपने घर पे भी जांच करें, तो उससे आप जान सकते हैं कि आपका खतरा तो नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से
1: सलाह
0: परामर्श
1: लें।
0: लेना
1: और यदि
0: पड़ेगा।
1: आपको सीने में तेज दर्द, बाएं हाथ या जबड़े में दर्द या बेहोशी जैसा महसूस हो रहा है, तो बिना किसी देरी के फटाफट तुरंत अस्पताल जाएं और अपना जांच जरूर करवाएं।
0: देखो मोनिता, बातों बातों में हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमें पता ही नहीं चला कि हमारे कार्यक्रम का वक्त जो है ख़त्म हो चला है। तो हम अब यही कहेंगे कि अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें, और गर्मी भी बहुत बढ़ रही है इस मौसम में, भी अपना ख्याल आप ज़रूर रखें। और चलते चलते यही कहेंगे कि इस गर्मी में अपना ख्याल रखें, पानी अधिक से अधिक पिए, बाहर निकल रहे हैं तो छतरी और पानी की बोतल ज़रूर अपने साथ रखें। और अभी वैसे भी बताया जा रहा है कि मौसम बदलने वाला है, तेज़ हवा चलने वाली है, जैसा कि हमने बताया था पहले भी, तो इस समय में अपने घरों से ना निकलें या घरों के अंदर रहें, किसी सुरक्षित जगह पर रहें अगर आप बाहर जा रहे हैं और फंस गए हैं तो। इसी के साथ ही अब अपनी दोस्त रचना
1: और मोनिता को
0: दीजिए विदा। नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: जोहार।
1: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: DSNR。
1: इस संदेश के बाद आप सबका स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में, और सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अभिमान फिल्म का ये गीत, आवाज़ है किशोर कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है ST बर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जेतेक बिरक, मीका बिरक, सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, अकरम आसमा, उल्लाह आसमा, बेलदार। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गोलमाल और इस गीत को सुनना चाहे गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, अनुप्रिया, मंटू, मोनू, सोनू, बजरंग, बड़ा बाम्बू सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, देवेन, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये गीत।

0: अगली फरमाइश करता है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, ये सब सुनना चाहते हैं घरौंदा फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है रूना लैला और भूपिंदर ने, गुलजार के बोल हैं, जयदेव का संगीत है।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी,
2: दो दीवाने शहर में।

कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है घर। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। सुनना चाहते हैं कोल सिटी बरकाखाना से अफसाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, मोहम्मद अफसाल इब्राहिमी। इस गीत को सुनना चाहे ग्राम बड़बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवा रहे हैं रात और दिन फिल्म से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है और सुनना चाहते हैं राजा बाजार बिहारा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से ओमानंद केसरी, धनानंद केसरी और विनोद केसरी।

इस गीत के साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, 12 बजे हैं और वक्त है महिलाओं के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में सभी बहनों का स्वागत अभिनंदन। मैं जमीन का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ एक और प्यारी सखी हैं लता।
1: तो बहनों स्वीकार कीजिए अपनी सखी लता का भी प्यार भरा नमस्कार। और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगी, कुशल होंगी, मंगल होंगी और मौसम का ख्याल भी चल ही रही होगी।
0: हाँ, है ना, रख रही होंगी बिल्कुल। जरूरी भी है लता। आज हम पीछे अगर मुड़ करके देखते हैं ना, तो लगता है कि उस समय का मौसम फिर से आ जाए, वो गर्मी हाँ। का मौसम, वो शाम में बारिश का होना, रात होते होते मौसम का ठंड हो जाना, और फिर सर्दी भी, दिलकश सर्दी, जो कि सर्दी में हम देखते थे ना कि बहुत कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती थी, और बरसात का मौसम भी इस तरह तबाही का भरा नहीं होता था।
1: हाँ देखो, आज जिस तरह से मौसम में बदलाव हुए हैं, मतलब कि गर्मी इतनी कि बर्दाश्त नहीं हो रही, बारिश भी तबाही के साथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। क्यों?
0: जिम्मेदारी तो हमें लेनी ही होगी लता। हाँ। बहनों, हमारी धरती पर जो बोझ पड़ रहा है ना, जिसकी वजह से हम महासागरों का भी तापमान बढ़ गया है, महासागरों का तापमान का बढ़ना मामूली प्रक्रिया नहीं है बहनों। जिस तरह से महासागर हमारी पृथ्वी के 70% से भी अधिक भाग को कवर करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन का स्रोत भी है, जो मानवता पृथ्वी पर हर जीव जो जीवन यापन का एक हम कहें ना कि आधार है। हाँ। तो बहनों, हम यही कह सकते हैं कि ये जो तापमान का बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बहनों, पता है बहनों, महासागर पृथ्वी की लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यह पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का घर है और दुनिया भर के 1 अरब से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। कितनी बड़ी बात है। और इसके अलावा महासागर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत भी है।
0: पता है लता, इन सभी बातों के अलावा महासागर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही खास है। और बहनों, इन तमाम बातों के बावजूद हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा वातावरण जिस तरह से होना चाहिए और जिस तरह से बदल रहा है, कारण प्रदूषण, और जिसकी वजह से महासागरों का तापमान भी बढ़ रहा है, जिसका असर हम मौसम के रूप में देख रहे हैं कि मौसम किस तरह से तबाही के साथ आ रही है।
1: बिल्कुल, हम सभी को इसकी देखभाल करने की बहुत जरूरत है। इस दिवस का उद्देश्य, जो अभी हम महासागर दिवस मना रहे हैं, तो जनता को महासागर पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में भी सूचित करना चाहिए, इसके बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी में अपनी तरफ से भी पहल करनी चाहिए।
0: पहल तो बहुत ज़रूरी है लता, क्योंकि हम शुरुआत अपने घरों से करें, अपने आसपास के जगहों से करें, अपने नदी नालों से करें। तो हम यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे, तभी हम महासागर का जिस तरह से इसके तापमान में बदलाव आ रहा है, और मौसम बदल रहे हैं, महासागर का जिस तरह से तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। बहनों, सभी का यही प्रयास होना चाहिए कि किसी काम को करें, लेकिन ध्यान रहे कि पर्यावरण जो भी हमारे लिए जो भी ज़रूरी है, इसका भी खास ख्याल रहे, इन्हें भी बचा सकते हैं। तभी हम महासागरों का जो तापमान बढ़ रहा है ना, जिसकी वजह से हम मौसम को देख रहे कि ये रौद्र रूप ले रहे हैं, इससे बच सकते हैं। और अब हमें जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लता। हमें यहाँ पे जागरूकता यही नहीं है कि हम बोल करके चले जाएं, आप इस पर ध्यान दें, हमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और एक और बात की भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं जमीन बहुत भी हमारी बातें, अब समय है कि हम अपनी बहनों को मनोरंजन की दुनिया में ले चले, और उसका भी ख्याल हमें रखना है। हाँ। तो आओ बहनों के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: तो मैडम एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में जहां हमें लेकर चलेंगी हम सबकी प्यारी सखी महजबी।
2: बहनों आज हम बातचीत के तहत सशक्त महिला सशक्त समाज के बारे में जानकारी देंगे कि भेंट वार्ता, इस पर हमारी आज की मेहमान है पूजा प्रसाद और इनसे बातचीत कर रही है हमारी रेडियो सखी लता।
3: किसी भी समाज की प्रगति और समृद्धि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के विकास में अपना योगदान देती हैं। सशक्त महिला सशक्त समाज विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं और आज की हमारी खास मेहमान है इस विषय के लिए, जो हाल में ही दिल्ली में आयोजित मिसेस इंडिया ईस्ट जोन 2026 का खिताब जीत करके आई हैं, महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। पूजा जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद लता जी। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों और जो भी मुझे सुन रही हैं सबको मैं नमस्कार कहना चाहूंगी। जो हार मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।
3: जी पूजा जी, आप आज हमारी बहनों से रूबरू हैं और आपने हमारा गौरव जो है हमारे राज्य का प्रदान किया है, तो सबसे पहले तो जो आज का विषय है सशक्त महिला सशक्त समाज, इस पर हम तमाम महिलाएं खुलकर बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, यह क्यों जरूरी है?
4: लता जी मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की शिक्षा, समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं ले सके। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि महिलाओं को सशक्त होने से परिवार, समाज और देश के समग्र विकास होता है। सशक्त महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में योगदान देकर समानता, न्याय और प्रगति को बढ़ावा देती हैं। इसलिए ये महिला, मैं कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण बहुत ही अनिवार्य है।
3: बहुत खूब मैम, एक सशक्त महिला समाज के विकास में किस प्रकार योगदान देती है?
4: लता जी जैसा कि हम जानते हैं पीढ़ियों से चला आ रहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज 2026 में भी हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। आज़ादी के इतने साल बीत गए पर आज भी महिलाओं की स्थिति जो है वो हमारे देश में गंभीर ही है। पर मैं कहना चाहूंगी कि एक सशक्त महिला जो होती है वो समाज के विकास में कई महत्वपूर्ण तरीके से योगदान देती है। वो अपने परिवार को शिक्षित बनाती हैं जिससे समाज का भविष्य बेहतर बनता है, आर्थिक विकास में योगदान देती हैं जिससे वो अर्थव्यवस्था अपने परिवार की और देश की मजबूत करती हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाती हैं, सशक्त महिला की जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं और सामाजिक कुरीतियां जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा और लैंगिक भेदभाव जो हमारे समाज की बहुत ही कठोर समस्या है उनके खिलाफ आवाज उठाती हैं।
3: बिल्कुल,
4: एक शिक्षित महिला और एक सशक्त महिला ना केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती हैं बल्कि पूरे समाज की प्रगति और विकास की आधारशिला बनती हैं।
3: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, और केवल महिलाएं शिक्षित होती हैं तो केवल अपने ही परिवार नहीं बल्कि वो समाज की जो है वो पूरे समाज के लिए मिसाल बन जाती है। मैम आपसे अगले सवाल में जानना चाहेंगे कि आज के समय में महिलाओं के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं?
4: जी मुझे लगता है कि आज के समय में महिलाओं के सामने अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम आए दिन अपने अखबारों में और आसपास में ये देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो जितनी पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो उनको हर तरह से असुरक्षित महसूस कराता है हमारा समाज। अगर पढ़ जाए तो वो कहते हैं कि अरे बहुत पढ़ी लिखी है, ये हमारे संस्कारों को भूल करके आगे बढ़ रही हैं। और अगर नहीं पढ़ी हो तो उन्हें हर तरह से दबाया जाता है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए क्या चुनौतियां हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चुनौती तो घर से ही आती है। बचपन से एक लड़की को ये सिखाया जाता है कि आपके क्या अधिकार है क्या नहीं है, उसी समय एक भेदभाव शुरू हो जाती है जो लड़के और लड़कियों के बीच में होना शुरू हो जाता है और हमें उसी तरह से बड़ा किया जाता है। और इस मानसिकता की वजह से हम महिलाएं शायद बहुत पीछे रह जाती हैं। वेतन में असमानता मिलता है, कार्य और परिवार के बीच में संतुलन बनाने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से महिलाओं के ऊपर होती है। सामाजिक रूढ़ियां जैसे पारंपरिक सोच और रूढ़िवादी मान्यताएं जो होती है वो महिलाओं की स्वतंत्रता को कुछ हद तक छीनती हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घरेलू हिंसा हो या दहेज उत्पीड़न का मामला हो, आप देख सकते हैं हर दिन कहीं ना कहीं महिलाएं किसी न किसी रूप में उत्पीड़न का शिकार है। शिक्षा और रोजगार में भी असमानता होती है। कई जगह पे आप देखेंगे कि लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल रही है, लड़कों को भेजा जा रहा है स्कूल, लड़कियों को नहीं भेजा जा रहा है। और रोजगार में भी लड़कियों को या औरतों को ये बोल के नहीं दिया जाता है रोजगार कि आप इसके काबिल नहीं है, क्योंकि काबिल तो परिवार शुरू से ही बनाना शुरू कर देता है। पर ये समाज की मानसिकता है कि आज भी हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे औरतों को कम आंका जाता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो आज भी महिलाएं जिनसे गुजर रही हैं और जिसको मुझे लगता है हम सबको मिलके इस सारी कुरीतियों को दूर करना चाहिए।
5: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जवाब मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारी बहनों को दी। मैम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या लगता है?
4: ग्रामीण क्षेत्र में होता क्या है ना लता जी, लड़कियों को खास करके बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़ाई का जो स्तर है आप देखते हैं हर जगह स्कूल है, बच्चों को स्कूल भेजा भी जा रहा है, पर क्या होता है कि घर के कामों में बच्चियों को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। बच्चियां जो रहती है वो घर के काम करती है उसके बाद वो स्कूल जाती है, क्योंकि समाज का ये सोच है कि बच्ची पढ़ के करेगी भी क्या, वो तो बाद में उसकी शादी हो जाएगी, उसको शादी के लायक बना देना है बस। पहले तो वो भी नहीं होता था कि शादी के पहले पढ़ाना जरूरी है। तो हम गांव में ग्रामीण क्षेत्र में ये कर सकते हैं कि शिक्षा का स्तर बेहतर करना चाहिए हमें। अगर एक शिक्षित महिला रहेगी तो वो बहुत सारे शिक्षित लोगों को वहाँ गाँव में बना सकती है और इससे पूरा विकास हो सकता है। दूसरा चीज है कि हम जो महिलाएं शिक्षित नहीं है और पढ़ने में बाधा आई जिनके जिंदगी में, उन्हें हम कुछ कौशल सिखा सकते हैं जैसे कढ़ाई बुनाई इस तरह की चीजें, या खेत में काम करना भी महिलाएं करती हैं, पर उसके बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं ताकि जिस जिस भी रूप में जहाँ पे भी वो काम कर रही हैं उसमें वो बेहतरीन करके दिखाए।
5: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है मैम आपका। मैम, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए समाज की क्या जिम्मेदारी है?
4: मैम, ये कहना चाहूंगी कि हम अगर ये सोचे कि सिर्फ महिलाएं सशक्त हैं हो जाए और समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा तो हमारा सोच कुछ हद तक गलत है। क्योंकि अगर समाज है तो महिलाओं के साथ साथ समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो एक किसी भी महिला के आसपास की महिला हो या गांव की महिला हो, उन सबको इस तरह का माहौल दे कि वो अपने आप को प्रगति के राह पे चला सके, वैसा मौका दे, उस अधिकार को उनको बताया जाए। बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में जिन्हें अधिकार पता ही नहीं है उनके, तो उन अधिकारों के बारे में जब पता ही नहीं है तो वो उस प्रगति के रास्ते में चलेंगी कैसे। तो मेरा सोच ये है कि आप अगर अपने आसपास किसी भी महिला को, चाहे वो एक महिला ही क्यों ना हो, अगर आप उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं, उनको थोड़ा सा सहयोग करें और उन्हें जानकारी दें, उन्हें शिक्षित करें, और इस तरह से अगर आप अपना दायित्व समाज के प्रति निभाते हैं तो शायद एक समाज, हमारे देश का समाज जो पिछड़ा है वो बहुत प्रगति करेगा और अपना छाप जो है पूरे विश्व में छोड़ जाएगा।
5: जी बिल्कुल, मैम, क्या केवल महिलाओं का सशक्त होना पर्याप्त है या समाज की सोच में भी बदलाव की जरूरत है?
4: लता जी, मुझे लगता है केवल महिलाओं का सशक्त होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की सोच में बदलाव भी उतनी ही आवश्यक है। यदि महिलाओं का शिक्षा, रोजगार और अधिकार मिल जाए, लेकिन समाज में भेदभाव, रूढ़िवादी सोच और असमानता बनी रहे, तो सशक्तिकरण का उद्देश्य पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। समाज को महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और स्वतंत्रता देने की मानसिकता अपनानी होगी। जब महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और उनकी क्षमताओं पर विश्वास किया जाएगा, तभी वास्तविकता में महिला सशक्तिकरण संभव होगा। महिला सशक्तिकरण और समाज की सकारात्मक सोच दोनों मिलकर ही एक समान, सुरक्षित और विकसित समाज का निर्माण कर सकते हैं।
5: ये तो है बिल्कुल, बहुत खूब। मैम, आप एक सशक्त महिला हैं, बहुत सारी उपलब्धियां आपने हासिल की, अपने मुकाम तक पहुंची। आप अपने बारे में हमारी बहनों को बताएं।
4: लता जी, मैं भी एक बहुत ही आम महिला हूँ, बहुत ही मध्यम परिवार से आती हूँ, और बचपन से एक ही चीज सीखी है कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसको बहुत दिल से करना है। पर मेरे पिताजी जो थे, उन्होंने हम सारे बहनों को ये सिखाया कि आप बेटियां हैं, पर मैं आपको बेटों से भी बढ़कर पाल रहा हूँ। आप अपने विचार से और आप अपने निर्णय लेने के लिए शुरू से आजाद हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारी मानसिकता ऐसी बनी कि जो भी हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं नौकरी करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम अपने डिसीजन खुद लेते थे, अपने निर्णय पे आगे बढ़ते थे। कभी कभी फेलियर भी होता है कि हाँ, हम आगे बढ़े और उसमें कामयाबी नहीं मिली,
5: बिल्कुल,
4: पर एक सीख मिली हर बार कि हाँ, ये करना चाहिए, ये करना सही नहीं रहा। और इस तरह से आज मैं एक सरकारी नौकरी करने के अलावा, मैं अपने, आपको कह सकती हूँ कि पैशन जो था ब्यूटी पेजेंट पे जाने का, उसको मैंने पूरा किया। और ना सिर्फ पूरा किया, उसमें भी मैंने दिल लगाया, बहुत मेहनत की, और आज मैं कह सकती हूँ कि झारखंड का नाम मैंने रोशन किया। मैं झारखंड की पहली महिला बनी जो मिसेज इंडिया ईस्ट जोन 2026 का खिताब लेकर के आई हूँ। और इस बात पे मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि ये खिताब मुझे मिला। इससे मेरे परिवार, मेरे राज्य का नाम रोशन हुआ। और मैं हर महिला से कहना चाहूंगी कि अगर आपने सपने देखे हैं, आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, आपके बच्चे हैं, जो भी स्थिति में आप हैं, अगर आपने कभी भी सपना देखा है, तो आप आगे बढ़िए और अपने सपने पे भी काम कीजिए। जीवन का मतलब सिर्फ काटना नहीं होता, जीवन का मतलब अपने सपनों को जीना भी होता है। तो आगे बढ़िए, और अगर आप हिम्मत करेंगी तो बहुत सारा कमाल हो चुका है इस दुनिया में, आप भी कमाल करके दिखा सकती हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब मैम, बहुत ही खूबसूरत जवाब। और आपने चलते चलते हमारी बहनों को आपने ये संदेश भी दिया कि कमाल होते रहे हैं और ये कमाल हम महिलाएं भी दिखा सकती।
4: जी बिल्कुल बिल्कुल।
5: मैम पूजा प्रसाद मैम, आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, आपने हमारी बहनों से इतनी अच्छी बातें साझा की, अपने अनुभव साझा किए और हमारी कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। मैं
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी ये बातचीत, सशक्त महिला सशक्त समाज। हमारी आज की मेहमान थी पूजा प्रसाद, और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी रेडियो सखी लता। लता
1: तो महजुबी, आज हमने महासागर की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की, और अब देखो ना कैसे मौसम भी करवटें बदल रहा है।
2: बहुत ही सुहाना मौसम है।
1: हाँ, तो क्यों ना अब थोड़ा मौसम का भी आनंद ले लिया जाए।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
6: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, let's start the fun.

0: बहनों फिर से स्वागत है गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। हम आपको आज जानकारी के तहत देंगे कि महासागर के जलीय जंतुओं का अद्भुत संसार। महासागर हमारे ग्रह का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो विशाल और रहस्यमयी जलीय जंतु से भरा हुआ है और उनका घर भी है। यहाँ की दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही अनोखी भी है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: रहस्यमयी दुनिया में नीली वेल, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है, और इसी महासागर में पाई जाती है एक और जीव जो सूक्ष्म से लेकर विशालकाय और सभी एक चक्र से जुड़े हुए हैं।
1: हाँ, और बहनों जितना महासागर पर रिसर्च किया जाता है उतनी ही अद्भुत बातों को जानने का मौका मिलता है। और यही है कि जब हम एक सपने के तहत जब हम एक ध्यान करते हैं कि महासागरों के अंदर में क्या होता है, ये छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियाँ कितना खूबसूरत लगता है।
0: और बात बता दूं कि मरियाना ट्रेंच जैसे गहरे अंधेरे इलाके में रहने वाली एंगल फिश, जिसे हम जीवी कहते हैं, वो अपने शरीर से खुद रोशनी पैदा करती है।
1: क्या बात है?
0: उस अंधेरे गहराई में कुदरत ने उसे खुद इसकी रोशनी दी है, जिसकी वजह से वो अंदर के जो दुनिया को वो देखती है, खाती है, पीती है, जीवन जीती है।
1: और सबसे अजीब बात यह है कि आज भी इतनी तरक्की के बावजूद 80% से अधिक हिस्सा हमसे अछूता है, जिसे खोजा नहीं जा सकता। मैंने इतने कम समय में हम सब महासागर की दुनिया की पूरी जानकारी तो नहीं दे सकते, लेकिन यह जरूर है कि इसके बारे में हम आगे जरूर बातें करेंगे, क्योंकि घड़ी की सुइयों ने हमें इशारा किया है कि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते आपको बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की थी। तो अपने सखी लता और
0: महजबीन को दे इजाजत।
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं फना फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं शान और कैलाश खेर की। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है और जतिन ललित ने संगीत से सजाया है।

0: इस समय आप सुन रहे फिल्म संगीत कार्यक्रम में एक लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
2: दम्भ का स्तंभ खंभम दम त्रिशूल गाड़ के प्रलयंकारी गति से बिन न खेल।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

सेना। संदेश के बाद फिर से स्वागत है आप सबका फिल्म संगीत में। अगला गीत आइए अब सुनवाते हैं आपको शफकत अमानत अली, शंकर महादेवन और कोलारिसो मोंटेरियो की आवाजों में। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजा है शंकर एहसान लॉय ने।

आइए अब सुनते हैं लगान फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक, वसुंधरा दास की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है AR रहमान ने।

अब आइए सुनते हैं अरमान फिल्म का ये गीत। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है, शंकर एहसान लोई ने संगीत दिया है और आवाज़ें हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi says the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of Nation First, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, the country has gained a new identity today on the global stage, from infrastructure to the digital revolution. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The core aim of the scheme is to reduce maternal and neonatal mortality by facilitating early detection and prompt management of high-risk pregnancies. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. India also slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation by labeling militant outfits operating inside its own territory as Fitna al-Hindustan. Speaking at a United Nations Security Council session, India's permanent representative to the United Nations, Ambassador P. Harish, said that Islamabad was merely attempting to deflect blame onto New Delhi.
3: Blaming neighbors for its own failures is an old Pakistani habit. Coming up with official notifications directing Pakistan's government agencies to start referring to groups inside its own borders as Fitna al-Hindustan is nothing but officially sponsored misinformation and disinformation dressed in religious terminology. This is an outcome of an organized factory of hate coming from the deep state of Pakistan, which aims to keep their citizens in a state of permanent hostility with India in order to perpetuate their stay in power and control of national resources and detract them from core political and economic problems. India stands steadfast in rejecting terrorism in all its forms and manifestations.
2: New Delhi condemned Islamabad's cross-border military operations, holding Pakistan accountable for significant civilian casualties resulting from its aerial assaults in Afghanistan. The Enforcement Directorate is conducting search operations at six premises across Punjab, Uttar Pradesh and Delhi NCR in connection with a money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited. The case is linked to Aam Aadmi Party leader and Punjab Minister Sanjeev Arora. According to the probe agency, it uncovered a large-scale money laundering operation allegedly carried out through entities linked to Mr. Arora. Prime Minister Narendra Modi today paid tribute to freedom fighter Bhagwan Birsa Munda on his Martyrdom Day. In a social media post, Mr. Modi said Birsa Munda fought against foreign rule with indomitable courage to protect water, forests and land. Mr. Modi said the saga of his supreme sacrifice for the motherland will continue to inspire a spirit of patriotism in every generation of the country. In the Philippines, the death toll has climbed to 37 after the 7.8 magnitude offshore earthquake that hit the southern part yesterday. More than 500 people were injured while 4 people were missing. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has said agencies were coordinating the disaster response. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in afternoon trade today. The Sensex advanced 215 points to 73,739, while the Nifty added 80 points to 23,203 when reports last came in. In men's cricket, India A were 210 for 3 in 42.4 overs against Sri Lanka A in the opening match of the Tri-Nation A series at Sri Lanka when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज जमशेदपुर दौरा। बिष्टुपुर के चैम्बर भवन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आयोजित सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। जल जंगल जमीन के संघर्ष को बताया देश का प्रेरणा स्रोत। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में किया जाएगा विकसित। लैंड सर्वे पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त। भूमि सर्वेक्षण में देरी पर अदालत ने राज्य सरकार को 25 जून तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी झारखंड की 6 बेटियों का रांची एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगे। वे शाम 5:30 बजे बिष्टुपुर के चैम्बर भवन में 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहेंगे। झारखंड समेत पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित राज्य

0: के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने रांची के कोकर समाधि स्थल पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। उन्होंने जनजातीय समाज को संगठित कर अपनी सांस्कृतिक विरासत और अधिकारों की रक्षा का पाठ पढ़ाया। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन से ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। अमित शाह ने उन्हें आदिवासी गौरव और देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि जल, जंगल, जमीन और धर्मांतरण के खिलाफ उनका संघर्ष हमेशा प्रेरित करता रहेगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नामांकन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने दावा किया कि कांग्रेस के सभी 16 विधायक पूरी तरह एकजुट हैं और इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे।
2: एक अवसर हमें मिला था क्योंकि झारखंड दागदार रहा है, कलंक हमारे पे रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है और इस अवसर को पुनः उन्होंने नाथवानी के माध्यम से वो दागदार बनाने का फिर प्रयास किया है। ये दुखद स्थिति है, इससे ज्यादा शर्मनाक बातें नहीं होती। राजनीतिक संस्कार की बातें, उन्होंने उस मर्यादा का उल्लंघन किया है।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के आज 10 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाना और त्वरित प्रबंधन करके मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। इस कार्यक्रम ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य सरकार ग्रामीण चिकित्सा को मजबूत करने के लिए सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित करेगी। एनएचएम निदेशक शशि प्रकाश झा के अनुसार पहले चरण में 20 केंद्रों को मॉडल यूनिट बनाकर वहां दवाओं, डॉक्टरों और उपकरणों की उपलब्धता को 80% तक बढ़ाया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में भूमि सर्वेक्षण कार्य में देरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश M.S. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को 25 जून तक शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि सभी जिलों में लैंड सर्वे कब तक पूरा होगा। अदालत ने 2025 में आधुनिक तकनीक से 6 महीने में काम पूरा करने के निर्देश के बावजूद प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के मसनोडी के प्राकृतिक आम अपनी खास मिठास के कारण देश विदेश में लोकप्रिय हो रहे हैं। यहां बिना किसी केमिकल के पेड़ पर पके शुद्ध आमों की भारी डिमांड है। इन स्वादिष्ट आमों को खरीदने के लिए रांची, पटना और दिल्ली सहित 7 समंदर पार अमेरिका तक से ऑर्डर मिल रहे हैं।
4: यहाँ खासियत इसका स्वाद है, मालदा है, हर जगह होता है, लेकिन यहाँ का मालदा का टेस्ट कुछ अलग है, जिसके चलते इस सब जगह फेमस है। पटना, दिल्ली, रांची, बम्बई सब तो है, लेकिन पिछले साल 3 पेटी आम अमेरिका भी गया। शुरू में 5 साल तक सेवा बहुत है, उसके बाद समय पर बीच में पानी दे दिए कभी, और दवा छिड़कते हैं जब आम का मंजर उंजर निकलने का समय होता है ना। इस बार आम थोड़ा कम है, अगले साल उम्मीद है ज्यादा होगी।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 144 अंक बढ़कर 73,668 पर, जबकि निफ्टी 60 अंक बढ़कर 23,183 पर कारोबार कर रहा था। जापान अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर झारखंड की 6 खिलाड़ी आज रांची लौटी। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों और पारंपरिक मांदर की थाप के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने हेतु प्रेरित करेगा।
5: हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जापान गए, वहाँ खेले, अपना अच्छा से प्रदर्शन किए। जितने स्टाफ मैन थे सारे लोग का हम पर सपोर्ट था। हम वहाँ पे अच्छे खेले, बट हमारा तो लक्ष्य था गोल्ड लेकर आना, बट सेमीफाइनल में थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसकी वजह से हमने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में चतरा के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। देश भर के 900 खिलाड़ियों के बीच चतरा के रिहान अख्तर, मोहम्मद तबीश ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया, वहीं मोहम्मद रहमतुल्ला और मोहम्मद शादाब ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज जमशेदपुर दौरा। बिष्टुपुर के चैम्बर भवन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आयोजित सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। जल, जंगल, जमीन के संघर्ष को बताया देश का प्रेरणा स्रोत। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में किया जाएगा विकसित। लैंड सर्वे पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त। भूमि सर्वेक्षण में देरी पर अदालत ने राज्य सरकार को 25 जून तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी झारखंड की 6 बेटियों का रांची एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीरे में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं शोभा गुरटू। इनसे आज आप सुनेंगे दादरा, बोल हैं अंधेरिया है रात।

उपशास्त्रीय संगीत में आइए अब सुनते हैं मंच खमाज में ठुमरी। कलाकार हैं शोभा गुटू और बोल हैं अब कैसे धीर धरूं।

अभी आप सुन रहे थे अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत, कलाकार थी शोभा गोटू। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं चंद गजलें। पहली गजल सुनते हैं गुलाम अली की गाई हुई। इस गजल को लिखा है निदा फाजली ने और संगीत है गुलाम अली का।

अगली गज़ल आइए अब सुनते हैं, मेहंदी हसन की गाई। गज़लकार हैं मंसूर अनवर और संगीत है गुलाम कादिर खान का।

सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Karnataka, Kerala, and Mahe today. Meanwhile, the weather agency has predicted heatwave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha, and West Rajasthan. In men's cricket, India A has set a target of 278 runs against Sri Lanka A in the opening match of the Tri-Nation A series at the Rangiri Tambola International Stadium in Sri Lanka. The men in blue scored 277 runs for the loss of 6 wickets in 50 overs for India, with the Raj Gaikwad's century coupled with a 150-run partnership with Tilak Varma helped India gain control of the innings. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in afternoon trade today. The Sensex rose 267 points to 73,791, while the Nifty added 86 points to 23,209 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading 0.9% higher, while the small-cap 100 index jumped over 1% a short while ago. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government empowered youth, women and farmers in the last 12 years. India hits out at Pakistan in the United Nations, calls it factory of hate. 5-day BRICS agriculture ministers meeting begins in Indore to focus on food security and empowerment of farmers. Strategic road project Zojila Tunnel achieves final breakthrough, bringing all-weather connectivity between Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan completes 10 years. Nationwide celebrations to begin from today. IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe. Also predicts heatwave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series at Tambola, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतारिणी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित
3: सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रूपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में छह स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और

0: अंधर उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने यह उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। यह फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम

0: का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। यह मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियो वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये।

आप सभी श्रोताओं का स्वागत है जय भारती कार्यक्रम में, और हमारे फौजी भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं अपने फौजी भाइयों के लिए, जिनमें हम उनसे बातचीत भी करते हैं और उन्हें फिल्म संगीत भी सुनवाते हैं। तो श्रोताओं, जिस तरह से फौजी भाई देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर करने से भी नहीं डरते हैं, उसी तरह से कई ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। और उनमें से एक है महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें नमन करते हैं और उन सबके हौसलों की हम दाद भी देते हैं।

जल, जंगल और ज़मीन को लेकर आदिवासियों का संघर्ष सदियों पुराना रहा है और आज भी चल रहा है। और ऐसे ही विद्रोह के जनक थे बिरसा मुंडा, जिनकी आज पुण्यतिथि है। और आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा का आज ही के दिन साल 1900 में निधन हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज़ों ने कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, ज़मीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया था। हालांकि आदिवासी विद्रोह करते थे, लेकिन संख्या बल में कम होने और आधुनिक हथियारों की उपलब्धता ना होने के कारण उनके विद्रोह को कुछ ही दिनों में दबा दिया जाता था। ये सब देखकर बिरसा मुंडा विचलित हो गए और अंततः 1895 में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ दी। ये मात्र विद्रोह नहीं था, ये आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए उनका संग्राम था। पिछले सभी विद्रोह से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने पहले सभी आदिवासियों को संगठित किया और फिर छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह उलगुलान।

आदिवासी जंगलों को अपनी जननी मानते हैं और इसी वजह से जब ब्रिटिशर्स ने इन जंगलों को हथियाने की कोशिशें शुरू की तो आदिवासियों में असंतोष पनपने लगा और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदिवासी कर्ज के जाल में फंसने लगे, उनकी ज़मीनें भी उनके हाथों से जाने लगी। अंग्रेज़ों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास कर जंगलों पर कब्जा कर लिया, खेती करने के तरीकों पर भी बंदिशें लगाई और इस वजह से आदिवासियों का धैर्य जवाब देने लगा। तभी उन्हें बिरसा मुंडा के रूप में अपना नायक मिला। 1895 तक बिरसा मुंडा आदिवासियों के बीच बड़ा नाम बन गए थे, लोग उन्हें धरती बाबा नाम से पुकारने लगे। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को दमनकारी शक्तियों के खिलाफ संगठित किया। अंग्रेजों और आदिवासियों में हिंसक झड़पें भी होने लगी।

1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में बिरसा की मृत्यु है जैसे हो गई। बिरसा मुंडा मरे नहीं अपितु अमर हो गए। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में हम बात करेंगे, बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 2:55 हुए हैं। सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान की गाथा देश की हर पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करती रहेगी। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के अन्य मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जा रहा है।
2: लगभग 125 साल लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं।
1: कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगे। वे शाम 5:30 बिष्टुपुर के चैंबर भवन में 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज 10 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाना और त्वरित प्रबंधन कर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। इस कार्यक्रम ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा के निर्देश अनुसार पहले चरण में 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल फर्स्ट रेफरल यूनिट बनाया जाएगा। जामताड़ा पुलिस ने जिले के कर्माटांड़ थाना अंतर्गत तेतुल बांधा गांव के निकट 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।
3: 3 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों जो है धरवाडी थाना कर्माटा जामतारा के रहने वाले हैं। इन लोगों के द्वारा मोडस ये था कि गूगल में फर्जी आईडी बना के, कस्टमर केयर आईडी बना के जो है ये वीके फाइल डाउनलोड कराता था और उनसे जो है ठगी की कार्रवाई ये लोग कर रहे थे। इनके पास से जो है कुल 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद हुआ है।
1: झारखंड की युवा पहलवान प्रियंका महतो ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर-17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में 40 किलोग्राम बालिका वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की प्रशिक्षु प्रियंका के इस प्रदर्शन पर झारखंड राज्य कुश्ती संघ, खेल विभाग और JSSPS ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है। क्रिकेट। झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 को लेकर आज 5:00 रांची में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में लीग के आयोजन, तैयारियों, टीमों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 4:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
3: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
3: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
3: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
3: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
3: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
3: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानू यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
3: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
3: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
3: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
3: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
3: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
3: वाह यानी?
2: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
3: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई।
3: जी
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
3: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
3: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
2: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
3: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
2: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
3: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
2: जी
3: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
2: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
3: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
2: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
3: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
2: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
3: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
3: और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
2: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
4: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहाँ का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
5: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ।
6: पाए लागू बड़ी बहुरिया।
7: आ गए भैया।
6: हाँ।
7: लो, ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
6: हाँ।
5: बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी? अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
1: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
2: अरे मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
2: लो।
1: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और हाय
3: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
2: कहाँ बड़ी बहुरिया?
3: मेरी माँ के पास।
2: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
3: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
2: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है अब, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
0: अच्छा,
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुना

रहना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए, उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
0: हाँ?

0: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।

0: अच्छा अच्छा माँ जी।
1: अरे हर गोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हर गोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हर गोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
3: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
1: अरे,
3: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पैन लागू।
1: जीते रहो बेटा,
3: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
3: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
4: अच्छा
3: अच्छा, राम राम।
4: राम राम
3: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। आज बहुत सारी हस्तियों की पुण्यतिथि है और जन्म दिवस भी है, तो सत्यन बोस की भी आज पुण्यतिथि है। 9 जून 1993 में उनकी मृत्यु हुई थी। वो एक फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ बंगाली फिल्म का भी निर्देशन किया। उनकी मुख्य फिल्में थी रात और दिन, चलती का नाम गाड़ी, दोस्ती, जागृति। जागृति फिल्म ने 1956 में फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था और दोस्ती फिल्म ने भी 1964 में ये अवार्ड जीता था। तो आइए सुनते हैं दोस्ती फिल्म का ही ये गीत।
6: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

0: दुख तो अपना।
1: असद भोपाली जो कि एक मशहूर गीतकार हैं, उनका निधन भी 9 जून 1990 को ही हुआ था। और असद अपनी शायरी के चलते धीरे धीरे असद भोपाली के नाम से मशहूर हो गए। 28 साल की उम्र में वे गीतकार बनने के लिए मुंबई आए थे। तो आइए सुनते हैं असद भोपाली का लिखा हुआ गीत पारस मनी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

राज खोसला जो कि भारतीय सिनेमा जगत में एक ऐसे फिल्मकार के रूप में जिन्हें याद किया जाता है, उनके अपने उत्कृष्ट निर्देशन से लगभग 4 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। राज खोसला का निधन भी 9 जून 2017 को हुआ था। उनकी मुख्य फिल्में हैं दोस्ताना, मैं तुलसी तेरे आंगन की, दूर आस्ते, मेरा गांव मेरा देश, वे कौन थी, मेरा साया जैसी दिल को छू लेने वाली कलात्मक फिल्में आज भी सिने प्रेमियों के दिल में अमिट छाप छोड़ जाती है।

अभी आपने सुना राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म मेरा साया का ये गीत। आशा भोसले की आवाज़ में राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने संगीत दिया था। अब बात करते हैं उनकी, जिनका आज के दिन जन्म हुआ था। तो 9 जून 1912 को वसंत देसाई, जो कि भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उनका जन्म हुआ था। संगीत लहरियों से फिल्मी दुनिया को सजाने संवारने वाले महान संगीतकार वसंत देसाई के संगीतबद्ध गीतों की रोशनी फिल्म जगत की सतरंगी दुनिया को हमेशा रोशन करती रही है। फिल्म दो आंखें बारह हाथ का प्रसिद्ध गीत ए मालिक तेरे बंदे हम वसंत देसाई द्वारा ही संगीतबद्ध किया गया था। तो उनकी बहुत सारी फिल्में थी जिसमें उन्होंने संगीत दिया था, उनमें से एक फिल्म थी गूंज उठी सहनाई। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। भारत व्यास ने इस गीत को लिखा है और वसंत देसाई का संगीत है।

और 9 जून 1975 को भारतीय अभिनेत्री अमीषा पटेल का भी जन्म हुआ था। पटेल का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था और अमीषा पटेल ने 2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कहो ना प्यार है में अपनी अभिनय की शुरुआत की थी और ये फिल्म काफ़ी हिट भी हुई थी और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत।

और भारतीय अभिनेत्री सोनम कपूर का जन्म भी 9 जून 1985 को हुआ था। एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर को शुरू करने से पहले सोनम कपूर ने संजय लीला भंसाली के साथ एक सहायक के रूप में काम किया था और उसके बाद उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया। तो आपको सुनाते हैं उनकी फिल्मों में से एक फिल्म प्रेम रतन धन पायो का ये गीत। गायक कलाकार हैं हर्षदीप कौर, शबाब सबरी, विनीत सिंह, अन्वेषणा। इरशाद कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही रांची मेलोडीज अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 4 बजे हैं, सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाना बड़ी बात है। जामताड़ा पुलिस ने जिले के कर्मटांड थाना अंतर्गत तेतुलबांधा गांव के निकट 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना परिसर में आज जिला पुलिस की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने आमजनों की समस्याएं सुनी और निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 56% से बढ़ाकर 60% करने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार यह वृद्धि केंद्र सरकार के अनुरूप की गई है और इसका लाभ मूल वेतन पर ही मिलेगा। झारखंड की युवा पहलवान प्रियंका महतो ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में 40 किलोग्राम बालिका वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम किया है। और श्रीलंका के दाम्बुला में चल रहे एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रनों का लक्ष्य दिया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। रिपोर्ट संकलन एवं प्रस्तुति स्वर अमित अखौरी का है और कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभुशरण का है।

क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज चर्चा में हम सबसे पहले बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। 48 टीमें 39 दिन तक 104 मैच खेलेंगी। 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। कितनी टीमें हैं, कौन टीमें मजबूत हैं, इस पे चर्चा होगी। इसके अलावा आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए T20 टीम भारतीय टीम की घोषणा हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर्सनालिटी में हम बात करेंगे आर प्रज्ञानंदा की, और इसके अलावा फ्रेंच ओपन जीतने वाली रूस की नई खिलाड़ी एंड्रीवा की। खास खास में और भी कुछ बातें होंगी और खेल खबरें तो होंगी। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। फुटबॉल प्रशंसकों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू होगा। कुल 39 दिनों तक चलने वाले खेल की दुनिया के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट का फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 104 मैच खेले जाएंगे। इस बार दोस्तों सभी की नजरें फुटबॉल जगत के दो महानायकों लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर टिकी है। ये दोनों दिग्गज अपना रिकॉर्ड 6वां वर्ल्ड कप खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे, जहां डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के कप्तान मेसी खिताब को बरकरार रख इतिहास रचना चाहेंगे। वहीं पुर्तगाल के खिलाड़ी रोनाल्डो अपने देश को पहली बार विश्व विजेता बनाने के इरादे से उतरेंगे। खिताब की रेस में अन्य स्टार खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो 2024 की यूरो चैंपियन स्पेन अपने वंडर बॉय लामिने यमाल के दम पर ट्रॉफी जीतने का सपना देख रही हैं। वहीं पिछली बार फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले किलियन एम्बापे की फ्रांस, हैरी केन की इंग्लैंड, विनीसियस जूनियर की ब्राजील और 4 बार की चैंपियन जर्मनी को भी कम नहीं आंका जा सकता। इस बार केप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान के रूप में 4 टीमें वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रही हैं। दूसरी ओर कई देश लंबे अंतराल के बाद मेगा टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हैं। इराक 40 साल बाद इस टूर्नामेंट में लौट रहा है, जबकि स्कॉटलैंड 28 साल बाद अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा। अब कुछ खास बातें दोस्तों, कौन सी टीमें मजबूत हैं, किन का दावा मजबूत है, इस पर थोड़ी चर्चा। वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में पहली बार 3 देश एक साथ मेजबानी कर रहे हैं। मैक्सिको पहला देश है जहां तीसरी बार वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। वहां 1970 और 1986 में भी वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन हुआ था। अमेरिका को दूसरी बार मेजबानी मिली है। यहां 1994 में वर्ल्ड कप हो चुका है, जबकि कनाडा पहली बार मेजबान है। इस बार वर्ल्ड कप में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इसलिए फॉर्मेट में कुछ बदलाव किए गए हैं। सभी टीमों को 4-4 के 12 ग्रुपों में बांटा गया है। एक ग्रुप की टीमें आपस में एक एक मैच खेलेगी। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमों के साथ साथ तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 बेस्ट टीमें नॉकआउट में पहुंचेंगी। इसके बाद 32 टीमों के बीच नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मैच होंगे। सेरेमनी की अगर हम बात करें तो तीनों मेजबान देशों में अलग अलग उद्घाटन समारोह हो रहे हैं। मैक्सिको में जे बॉलबिन, एलेजांद्रो फर्नांडिस जैसे कलाकार प्रस्तुति देंगे। कनाडा में नोरा फतेही के अलावा माइकल बबले, एलेसिया कारा जैसे सितारे जलवा बिखेरेंगे। अमेरिका में केटी पेरी, फ्यूचर लिसा जैसे ग्लोबल स्टार्स परफॉर्म करेंगे। फाइनल के हाफ टाइम शो को लेकर भी काफी उत्साह है दर्शकों में। कोल्ड प्ले के दिग्गज क्रिस मार्टिन द्वारा तैयार किए गए शो में शकीरा, मैडोना और BTS समा बांधेंगे। ये जो महा आयोजन हो रहा है, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे इस बार 32 के बजाय 48 टीमें खेल रही हैं। 3 देश मिलकर मेजबानी कर रहे हैं। 8 मैच जीतने होंगे खिताब के लिए 7 की जगह पे। राउंड ऑफ 32 पहली बार होगा। मैचों के बीच खिलाड़ियों के इंटरव्यू होंगे। कॉर्नर किक में VAR का दखल होगा। फाइनल में भव्य हाफ शो का आयोजन होगा।
110 करोड़ तक पहुंची है टिकट की कीमत। सबसे महंगा टिकट 110 करोड़ रुपए का है, जबकि सबसे सस्ता टिकट 6000 का है। फाइनल के स्टैंडर्ड टिकट की कीमत करीब 22 करोड़ रुपया बताई जा रही है। गर्मी का भी असर होगा, जहां आयोजन हो रहा है वहां गर्मी का भी असर होगा। फुटबॉल के पारंपरिक रूप से 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं, जिन्हें 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक अलग करता है, लेकिन वर्ल्ड कप में मैच 4 क्वार्टर में बटा हुआ नजर आएगा। वैसन गर्मी की वजह से हर मैच में दोनों हाफ के बीच अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक दिया जाएगा, और यह ब्रेक पहले हाफ में लगभग 22वें मिनट में और दूसरे हाफ में 67वें मिनट के आसपास होगा। यह 3-3 मिनट का ब्रेक लेना अनिवार्य होगा। मैनेजर इस ब्रेक का इस्तेमाल खिलाड़ियों को फिर से संगठित करने, डिफेंसिव रणनीति में बदलाव करने और मोमेंटम बदलने के लिए कर सकते हैं। इस दौरान खिलाड़ियों को टच लाइन के पार जाने की अनुमति नहीं होगी। कोच मैदान पर ही टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेंगे। इस नए हाइड्रेशन नियम का टूर्नामेंट के कुल समय पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वर्ल्ड कप में कुल 104 मैच खेले जा रहे हैं। हर मैच में 3-3 मिनट के दो अनिवार्य ब्रेक होंगे और पूरे टूर्नामेंट में कुल 624 अतिरिक्त मिनट जुड़ेंगे। यह समय 10.4 घंटे के बराबर होगा, यानी अतिरिक्त समय में लगभग 7 पूरे फुटबॉल मैच खेले जा सकते हैं। ब्रॉडकास्टर को इस अनिवार्य रुकावट के दौरान मैदान पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दे दी गई है। विज्ञापन तभी शुरू हो सकेंगे जब रेफरी के सीटी बजाने के 20 सेकंड बीत चुके होंगे। वहीं खेल शुरू होने के कम 30 सेकंड के पहले ब्रॉडकास्टर को मैदान का लाइव एक्शन दिखाना होगा। 20 साल बाद भी वर्ल्ड कप में ये 4 सितारे जो हैं वो दिखाई देंगे। टूर्नामेंट में 1248 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से 4 ऐसे हैं जो 20 साल पहले जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। साल 2006 में हुए वर्ल्ड कप में 736 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उनमें से सिर्फ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैक्सिको के गोइलेमो ओचोवा और क्रोएशिया के लुका मॉड्रिच इस बार भी नजर आएंगे। 48 टीमों को 12 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए में मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और चेक रिपब्लिक की टीमें हैं। ग्रुप बी में कनाडा, बोस्निया हर्जेगोविना, कतर, स्विट्जरलैंड की टीमें हैं। ब्राजील, मोरक्को, हेती और स्कॉटलैंड की टीमें ग्रुप सी में हैं। अमेरिका, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की की टीम ग्रुप डी में है। ग्रुप ई में जर्मनी, कुराकाओ, आइवरी कोस्ट, इक्वाडोर है। ग्रुप एफ में नीदरलैंड, जापान, स्वीडन और ट्यूनिशिया की टीमें हैं। ग्रुप जी में बेल्जियम, मिस्र, ईरान और न्यूजीलैंड की टीम है। ग्रुप एच में स्पेन, केप वर्डे, सऊदी अरब और उरुग्वे की टीम है। ग्रुप आई में फ्रांस, सेनेगल, इराक और नॉर्वे की टीम है। इराक की टीम 40 साल बाद वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है। ग्रुप जे में अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया और जॉर्डन की टीम है। ग्रुप के में पुर्तगाल, कांगो, उज्बेकिस्तान और कोलंबिया की टीम है। ग्रुप एल में इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना और पनामा की टीमें हैं। वर्ल्ड कप के 104 मुकाबले 3 देशों के 16 स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसमें अमेरिका के 11, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में आयोजन होगा। ओपनिंग मुकाबला मैक्सिको सिटी के स्टेडियम में होगा, जबकि फाइनल न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। कनाडा के बैंकवर से अमेरिका मियामी के बीच करीब 4,500 किलोमीटर की दूरी इसे भौगोलिक रूप से सबसे फैला हुआ वर्ल्ड कप बनाती है। इसके उलट 2022 का कतर वर्ल्ड कप सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्मेट था, जहां 2 स्टेडियम के बीच सबसे ज्यादा दूरी 55 किलोमीटर की थी। इससे पहले 1994 में अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड कप दूसरा सबसे ज्यादा फैला हुआ वर्ल्ड कप माना जाता था, जहां पूर्वी और पश्चिमी तट के शहरों के बीच 4,000 किलोमीटर का फासला था। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला फुटबॉल का यह महाकुंभ 11 जून को शुरू होगा। 19 जुलाई को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा, फाइनल मैच खेला जाएगा। अब देखना है कि कौन सी टीमें किस तरह का प्रदर्शन करती हैं। हमने आपको बताया दोस्तों कि फुटबॉल की रोशनी में जगमग होंगे 3 देशों के 16 शहर, यानी अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के 16 स्टेडियमों में
फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 45 से 94,000 तक दर्शक क्षमता होगी। सभी में नेचुरल घास, मैक्सिको में ओपनिंग मुकाबला और अमेरिका में फाइनल खेला जाएगा। कुछ स्टेडियम की हम चर्चा कर लें, जैसे मेटलाइफ स्टेडियम, ये दो फीफा फाइनल का मेजबान रह चुका है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में। इस स्टेडियम की क्षमता 82,500 है और इस मैदान पर पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था और अब फिर एक बार 19 जुलाई को यहाँ फाइनल खेला जाएगा। और आम तौर पर यहाँ सिंथेटिक टर्फ होती है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के लिए इसे विशेष तकनीक से प्राकृतिक घास में बदला गया है। विसी प्लेस, 2010 में विंटर ओलंपिक का आयोजन यहाँ हो चुका है। ये कनाडा के वैंकूवर में है। 54,000 दर्शक इसमें दुनिया की सबसे बड़ी केबल सपोर्टेड रिएक्टेबल रूप में ये बना हुआ है ये स्टेडियम। यहाँ साल 2015 के महिला फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला जा चुका है और साल 2010 में विंटर ओलंपिक की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी यहीं हुई थी। मर्सिडीज बेंच स्टेडियम, यह अटलांटा में है। 71,000 दर्शकों की क्षमता है। इसकी घूमने वाली छत रोमन पैथियान से प्रेरित है। जब इसकी 8 विशाल पंखुड़ियाँ खुलती हैं और बंद होती हैं तो यह कैमरे के शटर जैसा दिखाई देता है। यहाँ टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल होगा। यहाँ खाने पीने की चीज़ों की कीमतें सामान्य बाजार जैसी होती हैं। AT&T स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इसमें समा सकता है। ये डलास अमेरिका में है। 94,000 दर्शकों की क्षमता है और इस लिहाज से यह टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसके भीतर 2.7 मिलियन स्क्वायर मीटर की जगह इतनी विशाल है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अपने बेस सहित इसकी बंद छत के अंदर समा सकता है। एरोज हेड यहाँ शोर का गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है। कंसास सिटी में है। क्षमता 76,000 दर्शक है। स्टेडियम के नाम दुनिया के सबसे शोरगुल वाले आउटडोर स्टेडियम का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है नाम। 2014 में यहाँ 142.2 डेसिबल शोर रिकॉर्ड किया गया था, जो जेट विमान के टेक ऑफ की आवाज़ के बराबर माना जाता है। यह अमेरिका में सबसे पुराना स्टेडियम है। इसे 1972 में बनाया गया था। सिएटल में एक स्टेडियम है जो घोड़े की नाल के जैसा है। वाशिंगटन स्टेट के इस स्टेडियम का आकार एक हॉर्सू यानी घोड़े की नाल के जैसा है। यहाँ की बनावट ऐसी है कि दर्शकों का शोर मैदान पर गूंजता है, जो विरोधी टीम पर दबाव बनाता है। और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि दर्शकों की आवाज वापस मैदान में गूंजती रहती है। सैन फ्रांसिस्को में एक स्टेडियम है, लेवाइस स्टेडियम। ये ग्रीन स्टेडियम का इसको दर्जा मिला हुआ है। 71,000 दर्शकों की क्षमता है। सिलिकॉन वैली के केंद्र में स्थित होने के कारण यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल और ग्रीन स्टेडियम के तर्ज पर इसे डिजाइन किया गया है। यह अमेरिका का पहला बड़ा खेल स्टेडियम है जिसने निर्माण के दौरान ही गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया। तो बहुत तरह से तैयारी की गई है। एक कुछ स्टेडियम है जहां इसके पहले भी आयोजन हो चुका है। और दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा के दूसरे पार्ट में हम बातचीत करने जा रहे हैं आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए T20 भारतीय टीम की घोषणा की गई है। T20 क्रिकेट टीम में नए युग की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का नया कप्तान बनाया गया है। वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्य कुमार को उनके गिरते फॉर्म और भविष्य की योजना के कारण टीम से ड्रॉप कर दिया गया। भारतीय टीम 2 T20 के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी और इसके बाद 1 से 11 जुलाई के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। आयरलैंड के साथ भारत का मुकाबला 26 और 28 जून को होगा। इन दौरों के लिए घोषित टीम में बिहार के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। सूर्यवंशी देश के क्रिकेट इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीम में तिलक वर्मा को नया उपकप्तान बनाया गया है।
तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को पहली बार मौका मिला है, बुमराह और हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। हालांकि बुमराह सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों में वापसी करेंगे, चोट के बाद हर्षित राणा की टीम में वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई है और आईपीएल में बतौर कप्तान 56% मैच इन्होंने जीते हैं। धोनी और रोहित शर्मा के क्लब में शुमार हो चुके हैं। 2024 में कोलकाता को इन्होंने चैंपियन बनाया था, 2025 में पंजाब को फाइनल में पहुंचाया। अब सूर्या की अगर हम बात करें तो आईपीएल 19 में 21 के औसत से 13 मैचों में इन्होंने मात्र 270 रन बनाए। अगले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए थोड़ा एज फैक्टर भी है और 2025 में 168 का स्ट्राइक रेट था जो लुढ़क कर 148 पहुंच गया। वैभव की अगर हम बात करें तो अकेले दम पर ही इन्होंने राजस्थान को प्लेऑफ में पहुंचाया और यही वजह है कि इन्हें इतना बड़ा अवार्ड मिला। आईपीएल में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए इन्होंने, ऑरेंज कैप मिला। 2028 के T20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक के लिए ये तैयारी कर रहे हैं और ये सेलेक्टर्स के नज़र में वर्ल्ड कप के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं। अब बुमराह की बात करें तो लगातार 9 टेस्ट खेलने हैं जो WTC फाइनल के लिए अहम है, इसलिए इनको आराम दिया गया है। सेलेक्टर आगरकर ने कहा कि T20 क्रिकेट बहुत होती है, उन्हें कभी भी वापस ला सकते हैं। हार्दिक पांड्या की बात करें तो वनडे क्रिकेट के लिए पूरी तरह से तैयार और फिट रखना है उनको। चयनकर्ता नीतीश रेड्डी जैसे युवाओं को मौका दे रहे हैं। ऑलराउंडर के विकल्प के रूप में शिवम दुबे को भी मौका मिला है। वाशिंगटन रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर को आजमाने के लिए उन्हें आराम दिया गया और टेस्ट वनडे और आईपीएल के लंबे सीजन को देखते हुए उनका वर्कलोड मैनेज किया गया और कुलदीप को रखा गया। T20 टीम में श्रेयस और संजू ही 30 के ऊपर हैं। टीम की औसत उम्र 26 से 27 साल के बीच है। इसका मतलब है कि युवा खिलाड़ियों को आजमाने की कोशिश की गई है, युवा टीम बनाई गई है। अब देखना है कि आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे में भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है। और दोस्तों अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पर्सनालिटी में आज हम दो खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे, एक आर प्रज्ञानंदा की और दूसरा फ्रेंच ओपन जीतने वाली खिलाड़ी एंड्रीवा की। पर्सनालिटी में दोस्तों आज सबसे पहले हम बात करेंगे 20 साल के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा की, जिन्होंने जीता है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट और ऐसा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। भारतीय चेस के युवा सितारे आर प्रज्ञानंदा ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। उन्होंने प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतकर न सिर्फ इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया बल्कि वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। इस जीत की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने दुनिया के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार और 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन मैग्नस कार्लसन को उन्हीं के घरेलू टूर्नामेंट में हराया। उन्होंने एक ही क्लासिकल टूर्नामेंट में उन्हें 2 बार मात देने का कारनामा भी कर दिखाया। 20 साल के प्रज्ञानंदा की यह उपलब्धि कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2008 के बाद से किसी भी खिलाड़ी ने कार्लसन को एक ही क्लासिकल चेस टूर्नामेंट में 2 बार नहीं हराया था। उनसे केवल 4 खिलाड़ी वेसेलिन टोपालो, विश्वनाथन आनंद, एंड्री बोलोकिटिन और डेनियल स्टेल वेगन, इन्होंने ही उपलब्धि हासिल की थी। इतना ही नहीं, 2007 में मारेलिया लिनारेस टूर्नामेंट में विश्वनाथन आनंद के बाद प्रागी ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई ऐसा क्लासिकल टूर्नामेंट जीता जिसमें खुद नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन खेल रहे हों। 10 राउंड के टूर्नामेंट में टॉप खिलाड़ी वेस्ले से 5.5 अंक पीछे थे प्राग। 10 राउंड के टूर्नामेंट में 6 राउंड तक प्रागी अंक तालिका में सबसे नीचे थे। वे टूर्नामेंट लीडर वेस्ले सो से 5.5 अंक पीछे थे और लगातार 2 क्लासिकल गेम हार चुके थे। हालात इतने चुनौतीपूर्ण थे, गेम थ्योरी विशेषज्ञ डॉक्टर मेहमत मास सेवन ने भविष्यवाणी भी कर दी कि प्रागी
के जीतने की संभावना मात्र 0.7% है, लेकिन अंतिम चार राउंड में उन्होंने अलीरेजा फिरोजा, कार्लसन, गोकेस और विंसेंट केमार के खिलाफ जीत दर्ज की और अंतिम दिन वेस्ले को पछाड़कर खिताब अपने नाम कर लिया। अगर हम टर्निंग पॉइंट की चर्चा करें तो परागे और उनके रणनीतिक सहायक वैभव सूरी ने छठे राउंड के बाद हार नहीं मानी। सूरी के अनुसार कार्लसन के खिलाफ दूसरी जीत ने टर्निंग पॉइंट का काम किया। सूरी ने कहा, आपको मैग्नस के साथ खेलने का मौका ही जल्दी नहीं मिलता, उन्हें दो बार हराना तो दूर की बात है। उस जीत ने परागे के लिए एक बड़ी प्रेरणा का काम किया। जीत का सीक्रेट क्या रहा? तो लगातार चार जीत का असली सीक्रेट था रणनीति में बदलाव और आराम। शुरुआती गेम में परागी समय की कमी में फंस रहे थे, इसे सुधारने के लिए उन्होंने अपनी चालों की गति बढ़ाई, उन्होंने अपनी नींद पूरी की और सुबह देर से उठना शुरू किया ताकि गेम से पहले कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कम से कम समय बिताएं। इसका फायदा यह हुआ कि जब खेलने उतरे तो पूरी तरह से ऊर्जा भरी हुई थी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रागी के लिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंच ओपन विजेता एंड्रीवा की। दोस्तों, कुछ जीतें सिर्फ ट्रॉफी नहीं दिलाती हैं, बल्कि यह साबित करती है कि वर्षों से की जा रही भविष्यवाणियां सही थी। फ्रेंच ओपन 2026 का महिला सिंगल्स फाइनल मीरा एंड्रीवा के लिए ऐसा ही एक पल लेकर आया, जिस खिलाड़ी को किशोर उम्र से ही महिला टेनिस का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा था, उसने आखिरकार पेरिस की लाल मिट्टी पर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर उस भरोसे को हकीकत में बदल दिया। रूस की 19 साल की एंड्रीवा ने शनिवार को फाइनल में पोलैंड की माजा ज्वालिस्का को 6-3, 6-2 से हराकर रोला गैरो का खिताब अपने नाम कर लिया। मैच केवल 82 मिनट चला, लेकिन इस जीत के मायने कहीं बड़े थे। वे 1992 में मोनिका सेलेस के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई, साथ ही वह इस सदी की तीसरी सबसे युवा ग्रैंड स्लैम विजेता भी हैं। उनसे कम उम्र में केवल मारिया शारापोवा ने 17 साल में ये खिताब जीता था। एमा राडुकानू ने 18 साल में ये खिताब जीता था। फाइनल की शुरुआत आसान नहीं थी। तेज हवाओं और ग्रैंड स्लैम फाइनल के दबाव के बीच शुरुआती गेमों में दोनों खिलाड़ी लय तलाशती हुई नजर आईं। पहले 5 गेम तक मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन इसके बाद एंड्रीवा ने जिस तरह खेल का स्तर बदला, उसने मैच की दिशा ही बदल दी। उन्होंने लगातार 9 गेम जीतकर ज्वालिन्स्का की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। 25 विनर्स और बेस लाइन से लगातार दबाव में उन्होंने पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा। मीरा एंड्रीवा कहती हैं कि मैं खुद को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुश्किल समय में भी मैंने खुद पर भरोसा जताया, हर दिन बेहतर खिलाड़ी और बेहतर इंसान बनने की कोशिश की और इन 2 हफ्तों में मैं कितनी नर्वस थी और किन मानसिक चुनौतियों से गुजरी, यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों रांची बरियातू की बेटियों के, जिन्होंने जापान में अपने राज्य का परचम लहराया और भारत को अंडर-18 एशिया कप में कांस्य पदक दिलाया। जापान के काका मिगाहारा में आयोजित अंडर-18 महिला हॉकी एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। कोरिया के खिलाफ तीसरे स्थान के मुकाबले में भारत ने 3-0 से जीत दर्ज की और इस सफलता के केंद्र में झारखंड की 3 बेटियां रहीं, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य का नाम रोशन किया। इसमें रांची की सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स बरियातू की गोलकीपर खिली, डिफेंडर सुमन सांगा और नीलम टोपनो शामिल हैं और इनके अलावा एकलव्य रांची की श्रुति तथा सिमडेगा आवासीय बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की पुष्पा मांझी और संदीपा भी भारतीय टीम का हिस्सा थी। खास बात यह है कि अधिकांश लड़कियां ग्रामीण और किसान परिवारों से आती हैं। रांची के कुंबा टोली हटिया की खिली, खुटी की सुगन और तोरपा की नीलम ने बहुत ही सीमित संसाधनों के बीच अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर यह मुकाम
हासिल किया। झारखंड की महिला हॉकी की बात हो और बरियातू स्कूल का नाम ना आए ऐसा संभव नहीं है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनने से पहले भी यह स्कूल पिछले चार दशकों से देश को महिला खिलाड़ी देता आ रहा है। वर्ष 1984 में सावित्री पूर्ति से शुरू हुई परंपरा आज निक्की प्रधान और ब्यूटी डुंगडुंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों तक ये नाम पहुंच चुका है। इस संस्थान से 60 से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आज भी यहाँ छात्राओं के लिए निक्की और ब्यूटी जैसी खिलाड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनके पद चिन्हों पर चलते हुए नई पीढ़ी भारतीय टीम तक पहुंचने का सपना देख रही है। बरियातू आवासीय बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की खिली, सुगन और नीलम का चयन पहले भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आयोजित अंडर 18 टेस्ट सीरीज के लिए हुआ था। वहां के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें एशिया कप टीम में जगह मिली। कोच करुणा पूर्ति कहती हैं कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। स्कूल के प्राचार्य दीपक कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों की इस सफलता से पूरे स्कूल में उत्साह का माहौल है। वहीं पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 में भारतीय हॉकी टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक और अनुशासित खेल दिखाने वाली टीम इंडिया ने फाइनल

शुद्ध आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम क्रीड़ा जगत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4:30 होने वाले हैं। आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 4:35 से आप सुनेंगे सांझ सरगम। 5:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार। हमारे युवा भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा युव वाणी। चर्चा होगी बचत की आदत डालें। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 कार्यक्रम श्रमिक लोक। चर्चा धरती आबा की अमर शहादत। मजबूत बुनियादी ढांचा बेहतर इलाज। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की।

शाम 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार 6:02 से आप सुनेंगे किसान वाणी, चर्चा मोटे अनाज की उपयोगिता। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की और 6:32 से आप सुनेंगे हमारी दुनिया, चर्चा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार और 7:11 से आप सुनेंगे जिले में आजकल आदिवासी अखड़ा। ये कार्यक्रम आज सुनेंगे आप खड़िया भाषा में। चर्चा होगी बच्चों को अच्छे संस्कार दें, मिशन इंद्रधनुष। प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की।

रात्रि पौने 8 बजे अंग्रेजी वार्ता, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। वार्ताकार हैं आर्यन भारद्वाज, प्रस्तुति होगी गौरव कुमार की। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। रात के 8:10 विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण, और रात के 9:15 आपको लिए चलेंगे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

रात के 10 बजे गूंजे झारखंड जल संरक्षण पर आधारित लोक गीतों का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे। वाचन स्वर होगा संध्या नीलिमा टोपनो का और प्रस्तुति है प्रदीप कुमार की। रात के 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग जय जयवंती में ध्रुपद गायन और राग शंकरा में गायन। कलाकार होंगे पंडित सियाराम तिवारी। साथियों, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। पेश है कार्यक्रम सांझ सरगम। हमारे तमाम श्रोताओं को रितेश का नमस्कार।

0: शाम की तपिश में अगर थोड़ी सी ठंड, थोड़ी सी राहत मिल जाए तो फिर क्या कहने। सभी श्रोताओं को रितेश का एक बार फिर से नमस्कार।
1: तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

फिल्म सिलसिला में आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर को, संगीतकार शिव हरि, कार्यक्रम सांझ सरगम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

बस ये ख्याल ही ऐसे शब्द पिरो देते हैं जो बयां करते हैं कभी आपके साथ बिताए वो बस कुछ छोटे मोटे पल, पहली बार दूसरी बार जब मिलते हैं मिले थे आप हमसे, ये बातें वो यादें बस सब जज्बात रह जाते हैं। कार्यक्रम सांझ सरगम आप सुन रहे हैं रितेश के साथ।

वाकई ये यादें लहरों की तरह ही हमारी जिंदगी में आती रहें, आप हमें याद करते रहें, हम आपको भी बहुत याद करते रहें, हमारा आपका प्यार यूं ही बना रहे, चलता रहे।

वाकई दोस्तों, जिंदगी की भी दास्तान बड़ी अजीब होती है। किसी को जो चाहो वो मिलता नहीं है। खैर, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ जा रहा है। रितेश आपसे चाहता है विदा, मांगता है विदा किसी अच्छे

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ सरगम, आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाना बड़ी बात है। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 56% से बढ़ाकर 60% करने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार यह वृद्धि केंद्र सरकार के अनुरूप की गई है और इसका लाभ मूल वेतन पर ही मिलेगा। जामताड़ा पुलिस ने जिले के कर्माटांड थाना अंतर्गत तेतुल बांधा गांव के निकट 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में आज जिला पुलिस की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 5:02 हुए हैं। पूजा और निश्चय स्टूडियो में हाजिर हैं कार्यक्रम युववाणी लेकर। प्रस्तुत करता है गौरव कुमार पांडे।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारे इस युववाणी के कार्यक्रम का भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त निश्चय,
1: और मैं हूं पूजा।
0: और दोस्तों, आज हम एक बेहद ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चर्चा पर बात करने जा रहे हैं जो कि हम जैसे युवाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त होना भी ज़रूरी है। और आर्थिक मजबूती की शुरुआत होती है एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आदत से, और वो है बचत की आदत।
0: तो दोस्तों, हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो कि है बचत की आदत, डार्लिंग युवा।
1: बिल्कुल, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनके सपने और उनकी ऊर्जा असीमित होती है और उनके सामने संभावनाओं का विशाल संसार होता है। लेकिन इन सपनों को साकार करने के लिए केवल उत्साह ही आवश्यक नहीं, बल्कि आर्थिक अनुशासन भी ज़रूरी होता है।
0: और आज के इस आधुनिक दौर में नई नई तकनीकें, फैशन, ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक ऑफर्स युवाओं को लगातार खर्च करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे में बचत की आदत विकसित करना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।
1: तो निश्चय, हमारे दोस्तों को ये भी पता होना ज़रूरी है कि आखिर बचत किसे कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, बचत का अर्थ होता है अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित

0: करना?
1: जिसे सरल शब्दों में कहे तो जो धन हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं पर खर्च ना करके भविष्य की जरूरतों के लिए अलग करके जो रखते हैं, वही दोस्तों बचत कहलाता है।
0: बिल्कुल, बचत केवल पैसे जमा करना नहीं होता, बल्कि यह भविष्य की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम होता है।
1: तो चलिए पूजा, अब हमारे युवा श्रोताओं को हम ये बता देते हैं कि आखिर बचत करना क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल दोस्तों, अक्सर युवाओं को लगता है कि बचत की जरूरत नौकरी या व्यवसाय में स्थापित होने के बाद पड़ती है, लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। तो दोस्तों, आपको हम यह बता दें कि बचत की आदत जितनी जल्दी शुरू की जाएगी, उसका लाभ उतना ही अधिक मिलता है।
1: जी हाँ दोस्तों, और बचत के कुछ प्रमुख लाभ आइए मैं बता देता हूँ, जो कि है भविष्य की आर्थिक सुरक्षा, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता, उच्च शिक्षा या व्यवसाय के लिए धन की उपलब्धता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और तमाम मुक्त और व्यवस्थित जीवन।
0: कई लोग सोचते हैं कि बचत केवल तब संभव है जब आय अधिक हो, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि बचत की शुरुआत छोटी राशि से भी की जा सकती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, यदि कोई युवा प्रतिदिन केवल 50 रुपए भी बचाता है तो एक महीने में यह लगभग 1500 रुपए और एक वर्ष में 18000 रुपए बचा सकता है, और यही छोटी छोटी बचत समय के साथ बड़ी पूंजी का रूप ले लेती है।
0: बिल्कुल निश्चय। तो दोस्तों, बचत करने के कुछ आसान उपाय हैं जिसे हम अपना सकते हैं। हर महीने एक निश्चित राशि बचत के लिए अलग रखें, अपनी आय और खर्चों का लेखा जोखा रखें, अनावश्यक खर्चों से बचें, ऑनलाइन शॉपिंग और दिखावे की आदत को नियंत्रित करें, बचत के लिए बैंक खाते, आवर्ती जमा या अन्य सुरक्षित योजनाओं का उपयोग करें।
1: और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि बचत कभी अधिक प्रभावी होता है, तभी अधिक प्रभावी होता है जब उसके पीछे कोई लक्ष्य हो, जैसे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना, नया व्यवसाय शुरू करना, या घर खरीदना, वाहन लेना, या आपातकालीन स्थिति में काम आना।
0: बिल्कुल निश्चय। तो दोस्तों, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो बचत करना आसान और प्रेरणादायक हो जाता है। आज के ज़माने में डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स ने बचत को पहले से कहीं अधिक सरल बना दिया है,
1: और युवा अपने मोबाइल के माध्यम से बचत खाते संचालित कर सकते हैं, खर्चों का रिकॉर्ड रख सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और साथ ही साथ वित्तीय योजनाएं भी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, धनवान बनने का रहस्य केवल अधिक कमाने में नहीं, बल्कि समझदारी से बचत करने में भी छिपा है। आज की छोटी बचत कल आपके बड़े सपनों को पूरा कर सकती है।
1: तो आइए दोस्तों, हम आज ही ये संकल्प लें कि अपनी आय का कुछ हिस्सा नियमित रूप से बचाएंगे और आर्थिक रूप से सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
0: बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों, बातें तो आपसे और भी होंगी, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, चर्चा के इस कड़ी में हम अब आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं
1: कि
0: यूथ के
1: यूथ के
0: लिए
1: लिए हाँ
0: आवश्यक फाइनेंशियल लिटरेसी अर्थात वित्तीय साक्षरता।
1: दोस्तों, आज का युवा तकनीकी शिक्षा और करियर के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या केवल अच्छी पढ़ाई और अच्छी नौकरी ही आर्थिक सफलता की गारंटी है? इसका उत्तर है नहीं दोस्तों।
0: अगर हम अपनी कमाई, बचत, निवेश और खर्चों का सही मैनेजमेंट नहीं जानते हैं तो अच्छी आय होने के बावजूद आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि वित्तीय साक्षरता आज के युवाओं के लिए एक अनिवार्य जीवन शैली बन गई है।
1: तो पूजा, हम लोग बात कर रहे हैं कि वित्तीय साक्षरता की, और ऐसे में हमारे प्यारे युवा श्रोताओं को भी यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वित्तीय साक्षरता है क्या।
0: बिल्कुल।
1: तो आपको बता दें दोस्तों कि वित्तीय साक्षरता का अर्थ है धन से जुड़े निर्णयों की समझदारी से लेने की जो क्षमता है दोस्तों, कि आप अपने धन को कैसे समझदारी से लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं वित्तीय साक्षरता।
0: बिल्कुल। इसमें यह जानना शामिल है कि आय और व्यय का प्रबंधन कैसे करें, बचत क्यों जरूरी है, निवेश कहाँ और कैसे करें, लोन और क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से प्रयोग कैसे करें।
1: बिल्कुल दोस्तों, और भविष्य के लिए वित्तीय योजनाएं कैसे बनाएं, ये भी है।
0: बिल्कुल।
1: और सरल शब्दों में कहें तो वित्तीय साक्षरता हमें अपने पैसे को बेहतर तरीके से संभालना सिखाती है।
0: बिल्कुल निश्चय। तो निश्चय, युवाओं के लिए वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है, इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमारे युवा श्रोताओं को?
1: हाँ बिल्कुल, बता सकता हूँ कि आज के समय में युवाओं के सामने अनेक वित्तीय चुनौतियाँ हैं, जो कि है ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल भुगतान, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और सोशल मीडिया से प्रभावित होने के कारण कई युवा बिना सोचे समझे ही खर्च कर देते हैं, है ना? और यदि कम उम्र में ही पैसे की सही मैनेजमेंट सीख ली जाए तो भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना काफ़ी आसान हो जाता है हम युवाओं के लिए।
0: बिल्कुल निश्चय। वित्तीय साक्षरता युवाओं को अनावश्यक लोन से बचाती है, बचत की आदत विकसित करती है, निवेश के अवसरों को समझने में मदद करती है और आर्थिक संकट के समय सुरक्षा प्रदान करती है।
1: और वित्तीय साक्षरता केवल पैसे कमाने की कला नहीं है दोस्तों, बल्कि पैसे का सही ढंग से प्रबंधित करने की समझ है। यदि युवा अवस्था में ही बजट करना या बचत करना का निवेश करना और वित्तीय सुरक्षित के नियम सीख लिए जाएं, तो एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए ये काफ़ी बेहतर हो सकता है दोस्तों।
0: बिल्कुल। याद रखिए दोस्तों, आज का सही वित्तीय निर्णय आपके कल को सुरक्षित रख सकता है।
1: दोस्तों, अब आगे चर्चा को बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं रोचक तथ्य पे।
0: बिल्कुल दोस्तों, पेड़ों के बीच भी बातचीत होती है। पेड़ अपनी जड़ों और जमीन के नीचे मौजूद फंगस के जाल के जरिए एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं। अगर किसी पेड़ पर कीड़े हमला कर दे तो आसपास के पेड़ों को भी सावधान कर सकता है।
1: और दोस्तों, धरती पर बिजली हर सेकंड लगभग 100 बार गिरती है, यानी कि आप जब अभी ये सुन रहे हैं तब तक दुनिया में कई 100 बार बिजली ऑलरेडी गिर चुकी होगी।
0: बिल्कुल निश्चय। दोस्तों, कुछ कछुए नाक से ही नहीं सांस लेते बल्कि अपने इंटेस्टाइन
1: से भी ब्रीथ करता है, मैंने भी ये सुना है।
0: बिल्कुल। कुछ विशेष प्रजातियों के कछुए हैं जो सर्दियों में पानी के नीचे लंबे समय तक रहने के लिए ऐसा कर पाते हैं।
1: अच्छा। और दोस्तों, चंद्रमा हर साल पृथ्वी से थोड़ा दूर जा रहा है, लगभग 3.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से, यानी लाखों वर्षों बाद पृथ्वी से उसका दृश्य थोड़ा अलग होगा।
0: एक बादल का वजन लाखों किलो तक हो सकता है। हमें बादल हल्के और रुई जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें मौजूद पानी का कुल वजन बेहद ज़्यादा हो सकता है।
1: और साथ ही साथ समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा एवरेस्ट से भी गहरा है दोस्तों। आपने सही सुना, यदि एवरेस्ट पर्वत का को प्रशांत महासागर के सबसे गहरे भाग में रख दिया जाए तब भी उसकी चोटी पानी से नीचे रहेगी। और दोस्तों इस जगह का नाम है चैलेंजर डीप और ये मेरियाना ट्रेंच में है।
0: दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ी जीव कोई वेल नहीं है। अमेरिका के जंगलों में फैला एक विशाल भूमिगत फंगस हजारों एकड़ में फैला हुआ है और उसे दुनिया के सबसे

0: बड़े जीवों में गिना जाता है।
1: अब दोस्तों अब बारी है सामसामयिकी की। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने जून की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है और भारत का चालू खाता जो कि है अधिशेष में जनवरी मार्च तिमाही में भारत ने 7.1 अरब डॉलर का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है, जिसका मुख्य कारण सेवा निर्यात और विदेश में आने वाले धनराशि रहेंगे।
0: दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दी। भारत में मानसून का आगमन हो चुका है दोस्तों और कई क्षेत्रों में भारी वर्षा दर्ज की गई है।
1: दोस्तों भारत सहित एशिया के कई देशों में मानसून शुरू हो गई है, जिसका कृषि और अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब आगे की चर्चा पर बढ़ने से पहले आइए दोस्तों हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: तो दोस्तों, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद अब हम बात करते हैं हमारे समापन कंपेयरिंग की। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आज के कार्यक्रम के समापन का, लेकिन जाते जाते आज हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाहेंगे जो आज के समय में हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल निश्चय, आज हम बात करेंगे आर्थिक धोखाधड़ी यानी फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में। आज हमारी जिंदगी कितनी डिजिटल हो गई है, उतना ही ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें।
0: दोस्तों, पहले के ज़माने में आज के जैसे टेक्निकल इक्विपमेंट्स नहीं थे और इसलिए पहले के ज़माने में धोखाधड़ी करना काफ़ी मुश्किल था, मगर होता था। लेकिन दोस्तों, आज जब मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट है तो इसके ज़रिए ठगी काफ़ी बढ़ गई है और लोग आज के ज़माने में इसके ज़्यादा अधिक शिकार होते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति को फ़ोन आया और कहा गया कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है या आपका KYC पूरा नहीं हुआ है, फिर उनसे जानकारी मांगी जाती है।
0: और दोस्तों, ऐसे समय हमें काफ़ी सतर्क रहना चाहिए और यहीं हमें सावधान भी रहना है। बैंक कभी आपसे फ़ोन पर आपका OTP, ATM पिन या फिर UPI पिन या पासवर्ड कभी नहीं मांगता। अगर कोई ऐसी जानकारी मांगे

साथियों आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, निश्चय और पूजा के साथ प्रस्तुत करता थे गौरव पांडे। आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 5:30 हुआ चाहते हैं। आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक मीनाक्षी और जया के साथ।

0: आज श्रद्धा से करते हैं हम, धरती आबा तुम्हें नमन, युगों युगों तक ऋणी रहेगा मातृभूमि का पावन गण।
1: जल जंगल जमीन और आदिवासी हक के अमर क्रांतिकारी शहीद बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर पावन नमन है हमारा।
0: धरती आबा यानी धरती के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का उलगुलान हमेशा हमें अपने अधिकारों के आवाज उठाने को प्रेरित करता है।
1: जी हाँ श्रमिक साथियों, खुट्टी के उलिहातू गांव में एक ऐसे वीर योद्धा की आवाज पहाड़ों और जंगलों से टकराती है और हजारों आदिवासियों को जगाती है जिन पर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था।
0: बिल्कुल,
1: ब्रिटानी हुकूमत अपनी ताकत के बल पर आदिवासी मूलवासी का शोषण कर रही थी। मुंडा समुदाय से अंग्रेजों द्वारा लगान वसूला जाने लगा और उनकी जमीन छीनी जाने लगी थी।
0: ऐसे में डोंबारी बुरु का एक युवा आदिवासी तीर धनुष के साथ अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ महाविद्रोह का नेतृत्व करता है। हजारों उसके अनुयायी और समर्थक हो जाते हैं और ऊल गुलान की एक आवाज अंग्रेजों की ताकतवर सेना के लिए ललकार बन जाती है।
1: लगान का विरोध करने वाली बिरसा मुंडा की सेना अब अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करने को तैयार थी। जन क्रांति की मशाल जल उठी थी।
0: बिल्कुल,
1: बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के गलत नीतियों और शोषण के खिलाफ लोगों को एकजुट किया और उल गुलाल का आह्वान किया।
0: लेकिन श्रमिक साथियों, आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना ने बिरसा मुंडा और उनके साथियों पर अत्याचार की हदें पार कर दी। उन्हें जेल में ठूसा गया और कहते हैं रांची स्थित पुराने जेल में ही उन्हें जहर देकर मार दिया गया।
1: मीनाक्षी जी, बिरसा मुंडा की शहादत ने क्रांति का वो बीज बोया जिससे अंग्रेजों की नींव हिल गई।
0: बिल्कुल,
1: धरती आबा 9 जून 1900 को इस दुनिया से विदा हुई।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उनका उल गुलाल एक हक और अधिकारों के लिए चलता रहा और चलता रहेगा।
0: बिल्कुल जया, आज के इस कार्यक्रम में हम बिरसा मुंडा के इस उल गुलान पर वार्ता सुनेंगे, लेकिन एक बार पुनः इस अमर सेनानी को हम सभी शत शत नमन करते हैं,
1: ये कहते हुए कि धरती आभा की अमर गाथा युग युग तक गाई जाएगी, उनकी वीरता की हर कहानी हर पीढ़ी दोहराएगी।
0: बिल्कुल, धरती आबा बिरसा मुंडा जैसे शहीदों को समर्पित एक गीत के माध्यम से आइए हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।

0: सचमुच ऐसे तमाम क्रांतिकारियों को, अमर शहीदों को बार बार और हर बार नमन है हमारा।
1: और मीनाक्षी जी, अब हम अपने कार्यक्रम के डगर पर आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, ये बताओ जया, गीत सुनते सुनते तुम्हारे मन में क्या चल रहा था भाई? किस विषय पर अब तुम बात करने को तैयार हो गई अचानक?
1: मीनाक्षी जी, मुझे लगता है ना कि सभी इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षा सबके लिए बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि हमें सही गलत का अंतर सिखाती है।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा हमारी सोच को बड़ा करती है, शिक्षा हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताती है, और शिक्षा सबके लिए विकास के रास्ते खोलती है।
0: वाह, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ और सब लोग सहमत होंगे ऐसा मुझे भरोसा है। शिक्षा है तो विकास है, और विकास का आनंद आसमान है। और जो विशेषकर जो हमारी कामकाजी भाई बहन है ना, उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी लगता है मुझे।
1: बहुत सही बात आप कह रही हैं। और श्रमिक साथियों, अगर आप शिक्षित होंगे तभी तो अपने अधिकारों को समझ पाएंगे, तभी आप समझ सकेंगे कि आपके लिए सरकार की योजनाएं क्या है, श्रम कानून क्या कहते हैं, अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप कहाँ शिकायत करें।
0: बिल्कुल श्रमिक साथियों, कई बार ऐसा होता है कि बिचौलिया आपको बहला फुसला कर किसी काम पर या अन्य राज्यों में ले जाते हैं। ऐसे में अगर आप शिक्षित हैं तो आप बाहर काम पर जाने से पहले सभी शर्तों को, आपको दिए जाने वाले पारिश्रमिक को, काम के वातावरण को, हर चीज के बारे में आप स्पष्ट इकरारनामा करके ही जाएंगे और बिचौलिए आपका शोषण नहीं कर सकेंगे।
1: इसके साथ ही आप अपने नियोक्ता के साथ भी कार्य की शर्तों पर सीधे बात कर सकेंगे।
0: बिल्कुल,
1: कहने का मतलब है मीनाक्षी जी कि शिक्षा आप में आत्मविश्वास भी लाती है।
0: इसलिए श्रमिक साथियों, जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, अपने शिक्षा के स्तर को, अपने ज्ञान के स्तर को थोड़ा बढ़ाइए, ताकि आप अपने अधिकारों की रक्षा तो करेंगे ही, साथ ही साथ अपने बच्चों का भविष्य भी आप संवार सकेंगे।
1: और मीनाक्षी जी, इस बातचीत के बाद चलिए एक बार हम धरती आभा के संघर्ष उल गुलाल उनके विचारों को याद करते हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है।
0: बिल्कुल, वर्तमान समय में बिरसा मुंडा के विचारों की प्रासंगिकता पर अपने विचारों के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अनिल वीरेंद्र कुल्लू। आइए सुनते हैं उनकी ही वार्ता।
2: आज हम भारत के एक ऐसे महान जननायक, समाज सुधारक और आदिवासी चेतना के प्रतीक व्यक्तित्व के विचारों पर चर्चा करेंगे, जिनकी स्मृति आज भी जनमानस में उतनी ही जीवंत है जितनी एक सदी पूर्व थी। वह व्यक्तित्व है धरती आबा बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातु गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। उनका जीवन केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष की कथा नहीं है, बल्कि सामाजिक जागरण, सांस्कृतिक स्वाभिमान, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और समुदाय आधारित जीवन दर्शन का भी प्रेरक उदाहरण है। मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका जीवन समाप्त हो गया, किंतु उनके विचार आज भी भारतीय लोकतंत्र, आदिवासी अधिकारों और पर्यावरणीय न्याय के विमर्श में प्रासंगिक बने हुए हैं। आज जब हम आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक न्याय जैसे प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं, तब बिरसा मुंडा के चिंतन को समझना और भी आवश्यक हो जाता है। बिरसा मुंडा के विचारों को समझने के लिए उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है जिसमें उनका उदय हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में छोटानागपुर क्षेत्र का आदिवासी समाज गहरे सामाजिक और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। मुंडा समाज की पारंपरिक खुदकटी व्यवस्था, सामुदायिक भूमि स्वामित्व और साझा उत्तरदायित्व पर आधारित थी। यह केवल भूमि प्रबंधन की प्रणाली नहीं थी, बल्कि सामाजिक संगठन और सामुदायिक जीवन का आधार भी था। ब्रिटिश शासन की भूमि और वन नीतियों ने इस व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। भूमि पर बाहरी नियंत्रण बढ़ा, लगान की व्यवस्था कठोर हुई, महाजनी शोषण का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक जीवन व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा से वंचित होने लगा। यही परिस्थितियां आगे चलकर व्यापक असंतोष का कारण बनी। इसी पृष्ठभूमि में बिरसा मुंडा एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने अपने समाज को केवल संघर्ष का मार्ग नहीं दिखाया बल्कि एक वैकल्पिक जीवन दर्शन भी प्रदान की। बिरसा मुंडा के चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण आधार था स्वाभिमान और स्वशासन। उनका प्रसिद्ध उद्घोष था अबुआ दिसुम अबुआ राज, अर्थात हमारा देश हमारा शासन। इस नारे को केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे

स्थानीय समुदाय की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, पारंपरिक अधिकारों की रक्षा और आत्मनिर्णय की भावना निहित थी। बिरसा मुंडा का विश्वास था कि कोई भी समाज तभी सशक्त बन सकता है जब वह अपनी क्षमता, अपने ज्ञान और अपनी सामुदायिक शक्ति पर विश्वास करे। वे आत्मनिर्भरता को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानते थे। आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को आगे बढ़ा रहा है, तब बिरसा मुंडा के विचार हमें यह स्मरण कराते हैं कि आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि स्थानीय संसाधनों, स्थानीय ज्ञान और सामुदायिक सहभागिता को सम्मान देना भी है। बिरसा मुंडा के विचारों का दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है जल, जंगल और जमीन के प्रति उनका दृष्टिकोण। आदिवासी जीवन दर्शन में प्रकृति केवल संसाधन नहीं होती, वह जीवन की सहचरी होती है। जंगल भोजन देता है, जल जीवन देता है, भूमि अस्तित्व प्रदान करती है। बिरसा मुंडा इसी जीवन दृष्टि के प्रतिनिधि थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि जब आदिवासी समुदायों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से अलग किया जाता है, तब केवल उनकी अर्थव्यवस्था ही नहीं, उनकी संस्कृति और पहचान भी संकट में पड़ जाती है। इसलिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण तथा उन पर समुदायों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा पर बल दिया। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के क्षरण और पर्यावरणीय संकटों से जूझ रहा है। ऐसे समय में बिरसा मुंडा का प्रकृति केंद्रित चिंतन हमें विकास के ऐसे मॉडल पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है जिसमें पर्यावरण और मानव जीवन के बीच संतुलन बना रहे। बिरसा मुंडा केवल राजनीतिक संघर्ष के नेता नहीं थे, वे एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने समाज में फैली अनेक कुरीतियों और अंधविश्वासों को आलोचित करते हुए नैतिक और अनुशासित जीवन जीने पर बल दिया। बिरसा मुंडा ने धार्मिक चेतना को भी सामाजिक जागरण से जोड़ा। उनके नेतृत्व में एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन विकसित हुआ जिसे आगे चलकर वीरशाइत परंपरा के रूप में जाना गया। इस आंदोलन का उद्देश्य केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था बल्कि आत्मसम्मान, सामाजिक सुधार और सामुदायिक संगठन को मजबूत करना भी था। उनकी दृष्टि में सामाजिक जागरण और राजनीतिक चेतना एक दूसरे के पूरक थे। वे जानते थे कि समाज के भीतर परिवर्तन लाए बिना स्थायी मुक्ति संभव नहीं है। यदि हम बिरसा मुंडा के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की चर्चा करें तो वह है उलगुलान। उलगुलान का अर्थ है महाविद्रोह या महान आंदोलन। 1899 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला यह आंदोलन औपनिवेशिक शासन, शोषणकारी भूमि व्यवस्था और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध व्यापक जन प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। यह आंदोलन केवल राजनीतिक विद्रोह नहीं था, इसमें सांस्कृतिक अस्मिता, सामुदायिक अधिकार और सामाजिक न्याय की आकांक्षाएं भी शामिल थीं। बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित किया, उनमें आत्मविश्वास जगाया और यह विश्वास पैदा किया कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना उनका अधिकार है। ब्रिटिश शासन ने इस आंदोलन को कठोरता से दबाने का प्रयास किया। अंत बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची कारागार में उनका निधन हो गया। यद्यपि उनका जीवन अल्पकालीन था, परंतु उनके विचार और संघर्ष की चेतना समाज में जीवित रही। अब यह प्रश्न है कि 21वीं सदी में बिरसा मुंडा के विचारों की प्रासंगिकता क्या है। वास्तव में आज का भारत अनेक ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा है जिनका संबंध विकास, पर्यावरण, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक विविधता से है। इन सभी प्रश्नों पर बिरसा मुंडा का चिंतन हमें नई दृष्टि प्रदान करता है। पहली बात,

0: वे हमें बताते हैं कि विकास केवल आर्थिक वृद्धि का नाम नहीं है। विकास तब सार्थक होता है जब उसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी हो और उनकी गरिमा सुरक्षित रहे। दूसरी बात, उनका जीवन पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा को मजबूत करता है। आज जब प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पर्यावरणीय असंतुलन पर चिंताएं बढ़ रही हैं, तब उनका प्रकृति सम्मत दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। तीसरी बात, उन्होंने सांस्कृतिक अस्मिता और पहचान के महत्व को रेखांकित किया। वैश्वीकरण के इस दौर में स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक विविधताओं का संरक्षण एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। बिरसा मुंडा हमें सिखाते हैं कि आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। चौथी बात, उनका जीवन सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सहभागिता का संदेश देता है। उन्होंने समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को संगठित कर यह दिखाया कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ केवल शासन व्यवस्था नहीं बल्कि लोगों की सक्रिय भागीदारी भी है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि बिरसा मुंडा का योगदान केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, वे राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वाभिमान के बिना स्वतंत्रता अधूरी है, न्याय के बिना विकास अधूरा है और प्रकृति के बिना मानव सभ्यता अधूरी है। अंत में धरती आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आइए हम उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जो न्यायपूर्ण, समतामूलक, पर्यावरण सम्मत और मानवीय मूल्यों से समृद्ध हो।
1: सचमुच बिरसा मुंडा अपने विचारों के साथ हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। जब किसी महान व्यक्ति के विचार जितनी गहराई से हमारे हृदय तक पहुंचते हैं ना, ठीक उसी तरह किसी गीतकार के गीत और उनकी गजलें भी कई बार बेहद गहरा असर छोड़ती हैं और अचानक हम गीतों को या गजलों को गुनगुनाने लगते हैं। क्यों?
2: जी हाँ, आज हम ऐसे ही गीतकार को याद कर रहे हैं जिनके गीतों में मोहब्बत की नजाकत और इसका बेहद मधुर इजहार होता था।
1: वाह,
2: याद कीजिए मीनाक्षी असद भोपाली को, जिनके गीत आज भी बेहद प्यारे लगते हैं ना।
1: जी हाँ श्रमिक साथियों, ये गीत तो आपने सुना ही होगा, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, या फिर ये गीत तो आपने जरूर ही सुना होगा, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगती हो, या फिर दर्द भरा गीत हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के।
2: तो क्यों ना मीनाक्षी जी, एक ऐसा ही प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ।
2: चलिए

0: बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुरीला गीत था। लेकिन जया अब विदा होने का वक्त है, तो चलते चलते हम अपने श्रमिक साथियों से यही कहना चाहेंगे, जान है तो जहान है,
1: यानी इस गर्मी में अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमसे हमेशा मिलते रहिए।
0: तो फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। दीजिए आज अपने दोस्त मीनाक्षी
1: अजया को
0: इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत करता थे प्रशांत गौरव आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाना बड़ी बात है। हजारीबाग में झाड़ फूंक और तंत्र साधना की आड़ में महिलाओं से गहना ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग सदर SDPO रूपक कुमार ने बताया कि पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए ठगी के गहने बरामद कर लिए हैं। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 56% से बढ़ाकर 60% करने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार यह वृद्धि केंद्र सरकार के अनुरूप की गई है और इसका लाभ मूल वेतन पर ही मिलेगा। जामताड़ा पुलिस ने जिले के कर्माटांड़ थाना अंतर्गत तेतुलबांधा गांव के निकट 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में आज जिला पुलिस की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने आमजनों की समस्याएं सुनी और निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। प्रस्तुत करता है संजीव कुमार लाल।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवैया सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णुकर जोहार।
0: ई कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो आज हमरे ई कार्यक्रम में का जानकारी करब सके बताए देव थे।
1: हाँ हाँ,
0: सबसे पहले मौसम कर जानकारी करब। आज की बात में जैव कीटनाशक द्वारा सब्जी फसल कर कीट प्रबंधन कैसे करल जाए सकर बारे में हमरे डॉक्टर प्रीति प्रिया से जानकारी करब। कृषि विकास गीत सुनब सुभाष कोयरी और संगी मनकर गावल। और नई उम्र की नई फसल में एगो किसान परनु उराव से रौनन के भेंट भी करवाब। ये बतावें मुर्गी पोसे कर बारे में।
1: एकदम। तो सबसे पहले और करीला मौसम कर हाल खबर से। तो आज कर मौसम विभाग वर से भेटार सूचना कर मुताबिक आज कर मौसम कर तापमान जे रही उ ई तरी रह कर अनुमान लगाल गलक है, जेकर में झारखंड राज्य कर राजधानी रांची कर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और रामगढ़ कर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और लोहरदगा कर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और नेतरहाट कर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और सिमडेगा कर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहकर अनुमान लगाल गलक है।
0: तो भाई तो रहे
1: मौसम कर हाल खबर। और का कहब कि आज कल जैसे कि अखन मड़ुआ हो गलक कर बाद गहूम हो गलक मकई हो गलक इस सब का रेट तो एकदम बड़ा जोर से चढ़ गया।
0: बड़ा जोर से इले बढ़ा थे नहीं कि देखो पहले कर जमाना में हमरे कर बाप दादा मने मड़ुआ मन का प्रयोग बहुत अधिक करत रहे। तो बीच में जो है मड़ुआ जो है से मड़ुआ होलक गोड़ा होलक और ये सब जे गोंदली उंदली आजकल तो गोंदली देख के कर भी नहीं मिला थे है कि नहीं। तो ये सब कर खेती हो लेकिन ये सब जो है ना गरीबे गुरबा मन खात रहे।
1: अच्छा अच्छा।
0: और हालचाल भी का कर मड़ुआ रोटी साग सत्तू मन खाए के ही लेकिन यही मड़ुआ साग सत्तू एखन जो है से अमीर मन कर खाना हो जाए।
1: एकदम।
0: काल के पहले जो है से इकर पौष्टिकता कर बारे में जानकारी नहीं रहे और एखन जो है कितना पौष्टिक है इकर बारे में वैज्ञानिक मने जो है से शोध घेर के निकला है कि सबसे पौष्टिक कारक यह मड़ुआ है।
1: अब तो
0: मोटा अनाज।
1: हाँ, हाँ, मोटा अनाज में जैसे जे मड़ुआ है उकर में तो सरकार पुरस्कार भी देवेला जे एक एकड़ लगाना मड़ुआ उमन के प्रोत्साहन राशि देवल जाएला।
0: तो इकर में देखो विटामिन प्रोटीन से भरपूर ही चीज है और इके खाल से बहुत बीमारी मन भी ठीक होएला है ना, बड़ा बड़ा बीमारी भी ठीक होएला। तो इके जे से उपयोग करे के चाहिए इकर पैदावार भी करे के चाहिए और पैदावार करे के लिए हमरे कर सरकार भी किसान मन के जो है से प्रोत्साहित करे लायक है किसान मन भी पैदावार करे लायक है।
1: तो बड़ा तो अब हमारे मन जानकारी कर ले वेला जैव कीटनाशक द्वारा सब्जी और फल मनकर कीट प्रबंधन कैसे करल जाए और इके बताते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति प्रिया और इनकर से हमारे कर संगीत गोठियाँ हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: किसान साथियों नमस्कार। लगातार अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से कई समस्याएं सामने आ रही हैं। कीटों में प्रतिरोधकता विकसित हो रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, मित्र कीट नष्ट हो रहे हैं तथा फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेष भी पाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता है ऐसे विकल्पों की जो प्रभावी होने के साथ साथ सुरक्षित सस्ते और पर्यावरण के भी अनुकूल हों। प्राकृतिक रूप से तैयार जैव कीटनाशक इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प है। जैसे नीम है, करंज है, धुथरा है, गोमूत्र तथा अन्य स्थानीय संसाधनों से तैयार कीटनाशक न केवल कीटों का प्रभावी प्रबंधन करते हैं बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम इसी प्राकृतिक रूप से तैयार जैव कीटनाशकों के द्वारा सब्जी एवं फल फसलों में कीट प्रबंधन किस प्रकार की जाए इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति प्रिया, सहायक प्राध्यापक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची। डॉक्टर प्रीति, आपको नमस्कार है।
3: जी नमस्कार।
2: आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जैव कीटनाशक क्या है।
3: जी सबसे पहले सभी किसान भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो जैव कीटनाशक होते हैं वो जीवित सूक्ष्म जीव, पौधों या प्राकृतिक पदार्थों से बनाए जाते हैं।
2: जी।
3: ये हानिकारक कीट को नियंत्रित करते हैं, लेकिन जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनको और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, फल एवं सब्जी फसलों किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इन फसलों में विभिन्न प्रकार के कीट जैसे माहू, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, फल मक्खी तथा फल एवं तना छेदक कीट किसानों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन कीटों के नियंत्रण के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे कि कीटों में प्रतिरोधकता विकसित हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं, हमारे मित्र कीट नष्ट हो रहे हैं तथा फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेष भी पाए जा रहे हैं।
2: जी, तो इन कीटों की समस्या क्यों बढ़ रही है?
3: देखिए, कीटों की समस्या बढ़ने के कोई एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे बहुत अधिक रासायनिक खेती करना, एक ही फसल को बार बार उगाना जिसे कि हम मोनोक्रॉपिंग भी कहते हैं, प्राकृतिक जो शत्रु कीट हैं उनकी कमी होना, मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है तो इसका एक रीजन यह भी है। इन सभी रीजन से क्या होते हैं कि कीट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और उससे दवाओं का असर भी कम।

0: हो जाता है।
1: जी डॉक्टर प्रीति, आपने जैव कीटनाशकों के महत्व के बारे में तो बताया, हमारे किसान श्रोता यह जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले प्रमुख जैव कीटनाशक कौन कौन से हैं तथा किसान उन्हें अपने घर या खेत पर किस प्रकार तैयार कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, देखिए प्राकृतिक रूप से तैयार जो जैविक कीटनाशक होते हैं उनमें बीजामृत जिसे कि सीड ट्रीटमेंट सॉल्यूशन कहते हैं,
1: जी
0: जीवामृत जिसे कि लिक्विड माइक्रोबियल बूस्टर भी कहते हैं, इसके अलावा घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, दसपर्णी अर्क तथा नीम आधारित उत्पाद जैसे नीमामृत प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों पर आधारित जैव कीटनाशकों में बैसिलस थुरिंजेंसिस जिसे बीटी कहते हैं, ब्यूवेरिया बेसियाना, मेटारिजियम एनिसोपोल तथा वर्टिसिलियम लेकानी जैसे जैव एजेंट भी महत्वपूर्ण हैं। और ये जो जीवामृत और बीजामृत की मैंने जो बात की तो ये पौधे को मजबूत भी बनाते हैं, कीटों को तो नियंत्रित करते ही हैं और साथ ही पौधों को भी मजबूत बनाते हैं।
1: जी, तो अभी आपने बीजामृत की चर्चा की, तो यह बीजामृत कैसे बनता है वे हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: देखिए किसान भाइयों और बहनों, बीजामृत को आप बीज का पहला टीका या सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं।
1: जी
0: जैसे हम देखते हैं ना कि माता पिता अपने बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए क्या करते हैं, समय पर टीका लगवाते हैं, तो वैसे ही बीज को खेत में बोने से पहले बीजामृत से उपचार किया जाता है। तो इससे भी क्या होता है कि बीज को शुरुआती रोग कीट जो होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे बचाव मिलता है और अंकुरण भी अच्छा होता है। तो मैं आपको इसे बनाने का तरीका बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना है कि 5 किलोग्राम गाय का ताज़ा गोबर लेना है, साथ ही 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम चूना और 1 मुट्ठी खेत की मिट्टी ले लें, फिर साथ ही 20 लीटर पानी भी ले लें। सबसे पहले पानी को किसी प्लास्टिक के ड्रम या बाल्टी में लें। अब उसमें गोबर को अच्छी तरह घोल दें ताकि गुठली ना रहे। इसके बाद गौमूत्र मिलाएं और साथ ही उसमें थोड़ा चूना भी डालें। अंत में खेत की मिट्टी डालकर पूरे घोल को लकड़ी की डंडी से अच्छी तरह से मिला लें। फिर इसे छाया में 24 घंटे ढक कर रख दें और बुआई से पहले बीज को इस घोल में 10 मिनट तक डुबो कर रखें। इसकी मात्रा है 5 से 10 लीटर प्रति क्विंटल बीज, इसी हिसाब से आप सीड को ट्रीट करें। फिर बीज को छाया में सुखा कर उसके बाद इसकी बुआई करें और इससे आपको बहुत तरह के फायदे मिलेंगे। जैसे सब्जी फसलों में जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी और गोभी की बुआई या नर्सरी तैयार करते समय बीजामृत से आप बीज उपचार करें, इससे आपको अंकुरण अच्छा मिलेगा और शुरुआती जो फफूंद रोग होते हैं, कीट लगते हैं, वो भी कम होते हैं। साथ ही पौधे मजबूत बनते हैं और आगे चलकर कीट रोग का प्रकोप भी कम दिखाई देगा। फलदार फसलों में जब नर्सरी के पौधे तैयार किए जाते हैं या पौधरोपण किया जाता है तब बीजामृत या उसके घोल से जड़ों का उपचार करने पर पौधे जल्दी स्थापित होते हैं और जड़ सड़न जैसी समस्याएं कम होती है।
1: जी, तो अभी आपने बीजामृत के बारे में बताया, अब आगे हमारे किसान भाइयों को जीवामृत के बारे में बताएं कि वे कैसे बनता है।
0: जी किसान भाइयों और बहनों, देखिए जीवामृत को लिक्विड माइक्रोबियल बूस्टर भी कहते हैं और आप जीवामृत को मिट्टी का पौष्टिक सूप या टॉनिक कह सकते हैं। जैसे हम ताकत बढ़ाने के लिए पौष्टिक भोजन खाते हैं, वैसे ही मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव जीवामृत से सक्रिय होकर पौधों को पोषण उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। इसके लिए आप 10 किलोग्राम गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम गुड़, 2 किलोग्राम बेसन या दाल का आटा, साथ ही 1 मुट्ठी खेत की मिट्टी, 200 लीटर पानी, ड्रम में पानी लें और उसमें गोबर अच्छी तरह से घोल दें। अब गौमूत्र मिलाएं, इसके बाद गुड़ और बेसन डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि सब अच्छी तरह घुल जाएं। अंत में मिट्टी डालें और लकड़ी से घोलें। ड्रम को ढककर छाया में 48 घंटे तक रखें तथा दिन में 2 से 3 बार लकड़ी की डंडी से अच्छी तरह हिलाएं। इसकी प्रयोग की मैं मात्रा बता देती हूँ, 10 से 20 लीटर जीवामृत को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ प्रयोग करें। इसे सिंचाई के पानी के साथ दिया जा सकता है अथवा पौधों की जड़ों के पास ड्रेंचिंग के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रयोग प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर करने पर इसका लाभ आपको अवश्य दिखाई देगा। सब्जी फसलों में नियमित रूप से जीवामृत के उपयोग से मिट्टी में जो लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी सक्रियता बढ़ती है, जिससे पौधों की वृद्धि तेज होती है, फूल एवं फल अधिक बनते हैं तथा पौधों की कीट एवं रोग सहन करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। फलदार वृक्षों जैसे आम, अमरूद एवं नींबू में जीवामृत को सिंचाई के साथ जड़ों के पास देने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, नई जड़ों का विकास बेहतर होता है तथा फल धारण में भी सुधार होता है।
1: जी, तो अभी आपने बात की जीवामृत कैसे बनता है इसके बारे में, अब हमारे किसान भाइयों को बताएं कि नीमामृत क्या है और ये कैसे बनता है।
0: जी देखिए, जो मैंने अभी चर्चा की बीजामृत और जीवामृत की, तो ये पौधों को मजबूत बनाने में ज़्यादा सहायक होते हैं
1: जी।
0: और अगर पौधे हमारे मजबूत होंगे तो स्वाभाविक है कि कीट की समस्या कम आएगी। और ये जो नीमामृत है और इसके अलावा ब्रह्मास्त्र है, नीमामृत, ब्रह्मास्त्र, दसपर्णी अर्क, ये सभी खासकर कीट की समस्या को कम करते हैं, ये कीटों पे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नीमामृत को हम कैसे बनाएं। तो इसके लिए 5 किलोग्राम नीम की पत्ती या बीज, 5 लीटर गौमूत्र, 50 लीटर पानी तथा नीम की पत्तियों को कूटकर पानी में डालें। अब गौमूत्र मिलाएं और 24 से 48 घंटे छाया में सड़ने दें, फिर कपड़े से छान लें। पानी में मिलाकर 7 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। सब्जी फसलों में माहू, जिसे हम लोग एफिड बोलते हैं, सफ़ेद मक्की, थ्रिप्स और इल्ली जैसे कीट बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नीमामृत का नियमित छिड़काव इन कीटों की संख्या कम करता है और अंडा देने की क्षमता भी घटाता है, पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फलदार फसलों में भी नीमामृत का उपयोग चूसक कीटों और कुछ रोगों को कम करने में सहायक होता है, जिससे फल स्वस्थ रहते हैं और रासायनिक दवाओं की ज़रूरत भी घटती है।
1: जी, तो अभी आपने नीमामृत के साथ साथ ब्रह्मास्त्र की भी चर्चा की, तो ये ब्रह्मास्त्र कैसे बनता है?
0: ब्रह्मास्त्र को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे नीम, धतूरा, करंज, अरंडी, आक आदि की पत्तियाँ, सब मिलाकर आप 5 किलोग्राम का कर लें। उसके बाद आप 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर पानी ले लें, सभी पत्तियों को पीस लें, इन्हें गौमूत्र और पानी में डालकर उबालें, ठंडा होने पर छानकर बोतल में भर लें, पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। जब सब्जी फसलों में फल छेदक या तना छेदक जैसे कीट अधिक बढ़ जाते हैं, तब ब्रह्मास्त्र का छिड़काव प्रभावी नियंत्रण देता है। यह एक मजबूत देसी कीटनाशक है जो विभिन्न प्रकार की इल्ली और चूसक कीटों पर असर करता है। फलदार फसलों में भी गंभीर कीट प्रकोप होने पर इसका उपयोग सुरक्षित विकल्प के रूप में किया जा सकता है। किसान भाइयों और बहनों, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सभी बहुत ही कारगर होते हैं।
1: तो अभी आपने ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया, अब थोड़ा सा किसान भाइयों को दसपर्णी अर्क कैसे बनता है इसके बारे में बता दें।
0: जी देखिए, नाम से ही है दसपर्णी अर्क, मतलब कि यहाँ पे हम 10 प्रकार की पत्तियों को लेते हैं।
1: जी।
0: 10 प्रकार की पत्तियों में आप नीम, करंज, अरंडी, धतूरा, आक, पपीता, अमरूद आदि की पत्तियाँ आप ले लें, 10 प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। और इसके साथ ही आप गौमूत्र और पानी ले लें, सभी पत्तियाँ को काटकर ड्रम में डाला जाता है, गौमूत्र और पानी मिलाकर 15 से 20 दिन तक सड़ने दिया जाता है, फिर छान कर उपयोग करें। सब्जी फसलों में नियमित रूप से दसपर्णी अर्क का छिड़काव करने से कीट दूर रहते हैं और रोगों का प्रकोप भी कम होता है, यह रोकथाम के लिए बहुत अच्छा घोल माना जाता है। फलदार फसलों में इसका छिड़काव पौधों की समग्र सुरक्षा बढ़ाता है और पर्यावरण के अनुकूल संरक्षण देता है। पौधों को मजबूत बनाने वाले में से जीवामृत, बीजामृत तथा कीट भगाने वाले नीमामृत, ब्रह्मास्त्र और दसपर्णी अर्क हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया।
1: जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीति प्रिया, आपने हमारे किसान भाइयों को प्राकृतिक रूप से तैयार जैव कीटनाशकों द्वारा सब्जी एवं फल फसलों में कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
2: तो एखन हमरे मन सुनत रही जैव कीटनाशकों द्वारा सब्जी एवं फसलों में कीट प्रबंधन कर बारे में, और इनके बतात रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति प्रिया, और इनकर से हमरे कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक गोठियात रहे।
1: तो आओ अब सुनत है एगो गीत सुभाष कोइरी और संगी मनकर गावल है,
2: तो चलो सुनी ला।

0: बहुत बढ़िया गीत रहे, सुभाष खोरी और संगी मनकर गावल।
1: अब हमारे मन नई उम्र कर नई फसल में एगो किसान मुर्गी पालक से करल बात के सुनीला, और किसान हैं परनू राव और इनकर से गोठियाए हैं संजीव कुमार लाल।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों, खेती के साथ साथ यदि हम अन्य कार्य करते हैं, जैसे मुर्गी पालन, पशु पालन इत्यादि कार्य करते हैं, तो हमें अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है। मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। यदि किसान साथी इस पर अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं तो बढ़िया मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, नई तकनीक को अपना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही कृषक साथी हैं जो बड़े पैमाने पर मुर्गी पालते हैं, अंडे के लिए या फिर मटन के लिए, और अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने इस क्षेत्र में। वह है कांके बुकरू ग्राम चामा के श्री परनू राव जी। परनू जी, स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: परनू जी, ये कार्य आप मुर्गी पालन बड़े तौर पर आप कर रहे हैं, काफ़ी बड़े क्षेत्र में आपने ये व्यवसाय शुरू किया हुआ है, तो क्या मन में आया कि आपने मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया?
3: देखिए, आजकल के डेट में ऐसे धीरे धीरे ऐसे कृषि कार्य के तहत ऐसे खेती जो है जमीन धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, या फिर कहें को कम होता जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा रुझान कृषि के साथ साथ पशुपालन की ओर गया। तो शुरुआत में हम ऐसे सुकर का पालन करते थे, लेकिन सुकर पालन छोड़ के अभी हम कुछ हद तक बकरी रखे हुए हैं, और ज़्यादातर ऐसे हमारे यहाँ अंडा उत्पादन के तौर पर और मीट पर्पस पर मुर्गी का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें आपको लेयर मुर्गी जो अंडा उत्पादन के तौर पे है वो सोनाली प्रभेद का है और देसी नस्ल की है, और कुछ हद तक ऐसे ब्रॉयलर का भी हम चूजा हमारे यहाँ से उत्पादन होता है।
2: जी, तो खास तौर पर आप अंडे के लिए ही कार्य कर रहे हैं?
3: ज़्यादातर हम लोग अंडा बेसिस पर ही काम करते हैं।
2: जी, तो कितना आपने मुर्गी पाल रखा है?
3: लगभग किसानों को हम लोग सब पालने के बेसिस पर दिए हुए हैं, तो किसान का अपना मेहनत होता है, बाकी बात पूंजी हम लोग का होता है। तो इस तरह का हम लोग का लगभग है सो लगभग 10-12-15 हज़ार के आसपास है सो मुर्गी उपलब्ध है आज के डेट में।
2: जी, और कितना अंडा का उत्पादन आप ले लेते हैं?
3: इसमें लगभग ऐसा 60% अंडा का उत्पादन हो जाता है।
2: अच्छा,
3: 60-65% उत्पादन हो जाता है।
2: यदि गिनती की बात करें तो कितना सैकड़ों में हो जाता है?
3: लगभग ऐसा 10-12 हज़ार जैसे कि आपको अभी जैसे कि दिया हुआ है। तो ठंडा में क्या होता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ठंड के दिनों में मेंटेनेंस को लेके, तो उसमें थोड़ा सा उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। तो अभी हम लोग का लगभग ऐसा 8-10 हज़ार जैसे कि हम बताएं, तो इसके एवरेज में भी प्रतिदिन के बाद बता रहे हैं, ये प्रतिदिन है को 8-10 हज़ार ऐसा अंडा का उत्पादन है सो हो जाता था, लेकिन अभी थोड़ा कम है ठंड के मौसम होने की वजह से। अभी लगभग ऐसा 7-8 हज़ार तक अंडा का उत्पादन अभी पर डे हो जा रहा है।
2: जी, और पन्नू राव जी, अंडा से भी आप चूजा पैदा करते हैं?
3: जी।
2: तो किस तरह करते हैं? परंपरागत रूप से तो है कि जो मुर्गी है वो अंडे को सेती है, उसमें वक्त लगता है।
3: जी जी।
2: लेकिन वैज्ञानिक तरीके से कैसे आप अंडे से चूजे को पैदा करते हैं?
3: चूंकि हमारे पास मिस्त्री वगैरह भी है जो हैचरी मशीन का उत्पादन बनाते हैं, ऑर्डर पर बनाते हैं, और खुद का भी मशीन है। तो अभी हमारे यहाँ से चूजा का उत्पादन लगभग प्रत्येक सप्ताह 2-3 लाख चूजा का उत्पादन हो जा रहा है। अब ये चूजा का उत्पादन जैसे ऑर्डर आता है उसी ऑर्डर के आधार पर हम लोग फिर सेल के लिए देते हैं। वो आउट ऑफ स्टेट भी जाता है और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी है सो आपका सेल के लिए चला जाता है।
2: अच्छा, ये मशीन का निर्माण भी आप खुद करते हैं?
3: हाँ, मशीन का निर्माण हमारे पास मिस्त्री उपलब्ध हैं। हाँ, तो जो किसान हमारे यहाँ से मशीन लेना चाहता है, कितना कैपेसिटी के चाहिए उसको मशीन, 250 से लेकर आपका है सो 10-20 हज़ार अंडा उत्पादन का कैपेसिटी का मशीन उपलब्ध है हमारे पास।
2: अच्छा, तो कैसे इसमें आप तैयार करते हैं इस चूजे को?
3: तो इस चूजे को जैसे कि गांव देहात में क्या होता है कि मुर्गी है सो सिकाई करती है, 21 दिन के बाद है सो चूजा है सो बाहर आता है अंडे की सिकाई करने के बाद। तो इसी तरह हम लोग है सो मशीन से जब सिकाई करते हैं, तो मशीन से सिकाई करने से ये हम लोग को फ़ायदा होता है कि अंडा जो देने की क्षमता होता है मुर्गियों में बढ़ जाता है, पहला। दूसरा फायदा होता है कि आपको है सो अंडा जो ज़्यादा मात्रा में हम लोग को चूजा प्राप्त होता है। है, क्योंकि अंडा जो सिकती है मुर्गी वो है सो टेम्परेचर कम या बेसी कभी होते रहता है, जिसकी वजह से पूरे अंडों से चूजा को है सो सृजन नहीं हो पाता है। लेकिन मशीन से अगर सिकाई करते हैं तो इसमें है सो करीब आपको 96 से लेकर 98% तक है सो अंडा से चूजा का उत्पादन हो जाता है आज के डेट में।
2: कितने समय में?
3: ये बस सेम टाइम लगता है।
2: अच्छा।
3: आपका जो नेचुरल केसेस है 21 दिन में चूजा का उत्पादन होता है, सेम केस यहाँ भी आता है। हम लोग 18 से 20 दिन तक है सो अंडा को मशीन में रखते हैं, उसके बाद 2 दिन पहले है सो अंडा को निकाल देते हैं, मशीन में रखते हैं, उसी के बाद है सो अंडा से चूजा अपने आप स्वतः बाहर आ जाता है।
2: जी, तो आप अंडे को भी मार्केट में सप्लाई करते हैं?
3: जी जी जी,
2: चूजा की भी बिक्री?
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अंडा का जैसे कहीं से ऑर्डर आता है तो हमारे जो क्षमता है मशीन का वो क्षमता में अपना रखते हैं, उसके बाद जो शेष बच जाता है तो उसको हम लोग बाहर ऑर्डर पर है सो सप्लाई करते हैं, बिक्री कर देते हैं।
2: जी, इस मुर्गी पालन के व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी चुनौतियां भी आती है, कठिनाइयां भी आती है, मुर्गियां बीमार भी हो जाती है, और एक मुर्गी बीमार पड़ती है तो फिर सैकड़ों मुर्गी बीमार हो जाती है, नुकसान भी हो जाता है, तो कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने आ जाती है, कठिनाइयां क्या क्या आपने सामना किया?
3: विशेषकर इसमें मेंटेनेंस को लेकर विशेष दिक्कत होता है दो मौसम में आपका, एक मौसम हुआ आपका गर्मी में जिसमें अधिक टेम्परेचर होने के चलते दिक्कत होता है मेंटेनेंस को लेकर, और दूसरा है मौसम अभी का मौसम जिसे ठंड का मौसम है, तो विशेषकर दिसंबर जनवरी ये दो माह हमें विशेष दिक्कत होता है, कठिनाई होता है, क्योंकि लिमिट टेम्परेचर में उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो ये दो महीना इधर ठंडा में और गर्मी में आपका है सो दो महीना, ये चार महीना विशेष रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। अब इस दौरान है सो किसान लोग कभी कभी मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं और होपलेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोल्ट्री में फेल्योर होना पड़ता है किसानों को, ये दो चार महीना जो है विशेष देखभाल की जरूरत पड़ता है, और रूम को विशेष रूप से टेम्परेचर को मेंटेन करके चलने की जरूरत पड़ती है। विशेषकर अभी जैसे मुर्गी में ज़्यादातर है स्वाइन फीवर का बीमारी जैसे होता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ वैसा विशेष बीमारी का ऐसा उत्पादन नहीं, मतलब कि ज़्यादातर है सो नहीं प्रकोप नहीं हो पाता है, तो हमारे यहाँ है सो बाहर का जो भी ज़्यादा मात्रा में लोग करते हैं और साफ सफाई मेंटेन नहीं करते हैं, वहाँ इस तरह का

0: बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के अंडे का उत्पादन आपके यहाँ होता है?
1: जी हमारे यहाँ है सो देखिए, दवा के का प्रयोग तो होता है, एकदम से नहीं होता है सो बात नहीं है, लेकिन नेचुरल हम लोग घास वगैरह सब, जो साग वगैरह सब होता है उसका भी हम लोग सेवन कराते हैं। जैसे कि आपका मकई को है सो हम लोग बीजोपचार करते हैं, जैसे उस अंकुरित हो जाता है तो उसको खाना में देते हैं खाने के तौर पर, उसके बाद गेहूँ को देते हैं, उसके बाद है से आपका रागी होता है वो रागी को देते हैं, तो इस सब का हम लोग चारा का रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पालक साग हुआ जिसे हम खाते हैं, आपका मूली का साग हुआ, हाँ प्याज हुआ, लहसुन का पत्ता हुआ, ये सबको देते हैं। तो इस तरह कहेंगे कि प्राकृतिक रूप से जो सेवन कर पाती है मुर्गियाँ अपने स्तर से, उसको है सो हम लोग चारा के रूप में प्रयोग करते हैं। और अंडा उत्पादन बेसिस पर ऐसे दो चीज़ के विशेष कमी होता है, एक आयरन की कमी, दूसरा है सो कैल्शियम की कमी। तो इसकी पूर्ति के लिए हम लोग है सो इस तरह का है सो चारा का व्यवस्था करते हैं, जिससे कि हमारा मुर्गी है सो ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ती है और हर मौसम में लगभग इसका उत्पादन क्षमता बने रहता है।
0: जी पन्नू राव जी, कोई नया साथी ये मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और औसतन वो प्रति माह कितना इससे आय ले सकता है?
2: तो एखन हमारे मन सुनत रही पन्नू राव किसान और इनकर से गोठियात रहे संजीव कुमार लाल
3: और इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरासी रहलक। एक कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
2: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।

श्रोतो आप सुन रहे थे किसान वाणी, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की थी। हम बोल रहे आकाशवाणी के रांची केंद्र से और अब सुनते हैं हमारी दुनिया, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की है।

0: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनो या सो भाई बहन मन के एक बार फिर से कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णु कर जोहार। और कहो का हाल समाचार है।
0: हाल समाचार देखो बढ़िया है। और देखो मौसम भी उतार चढ़ाव हुए लगे, कभी जैसे ठंडा कर देवत है, कभी गर्मी कर देवत है, कभी लू चलत है, तो कभी जैसे बदरी गरजत है।
1: एकदम नगद कहली से ले हमरे के ध्यान रखे के। और गांव घर में एखन युवा मन का तरी जीवन के यापन जिए लायक हैं, और भी जे भी हैं तो उमन के कौशल विकास योजना उनका लाभ लेवे के चाहिए।
0: तो कौशल विकास योजना कर बारे में तनिको ना
1: बता देवे ला
0: भाई बहन के बता देवे के।
1: देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जे है वो नौजवान मन के सिखा के लिए एक ठो प्रशिक्षण देवेला, वो एकदम फ्री में होवेला ट्रेनिंग, और 15 से 35 बरिस कर युवा मन के ये सब के देवल जाएला, और इकर में एगो सरकारी प्रमाण पत्र मिलेला।
0: ये माने सीखल के बाद ट्रेनिंग करल के बाद और इकर में 8000 रुपया भी मिलेला।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: और देखो स्कॉलरशिप भी मिलेला
1: एकदम। और देखो कहीं कहीं काम होएला टेक्निकल जे कंप्यूटर हो गलक, चाहे महिला मन सिला सीख गए, तो यह तरी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कर ट्रेनिंग ले के उमन ने अपन क्षेत्र में काम कर सके ना।
0: और कौशल विकास कर यह मतलब अपन कुशलता के मतलब कि निखारे खाए। आप जैसे मान लो कि केखो

0: जे से अपने आप बढ़ईगिरी में है, क्योंकि खुद चित्र बनावे के में है, केकरो अपने आप मने सिलाई कढ़ाई में मन चल जाए
1: एकदम,
0: तो जहाँ रहो मन जात है वह हिसाब से रहो काम करो और वह अपन कुशलता के निखारो और वह है कौशल विकास योजना
1: एकदम नगद बातें
0: में सरकार बहुत ध्यान दिले।
1: तो हमरे के कौशल विकास योजना कर लाभ लेवे के चाहिए, और जितने भी सुनोया भाई बहन मन है तो उन्होंने जखन भी ब्लॉक बट से अगर सूचना मिलत है तो इसकर लाभ ले सकेला,
0: और जगह जगह ट्रेनिंग मन कर भी सुविधा है। तो भाई आज ये देखो मंगल कर दिन है के और सुनवाया भाई बहन मने मने आसरा देखत हुए कि कौन कौन गीत कर जुगाड़ इमन लाइन है। तो आज हमारे आओ सबसे पहले नागपुरी लोकगीत सुना थे सरिता देवी और संगीमन कर गावल,
1: तो चलो देरी नहीं करीला और सुनीला।

0: दी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर

0: करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: तो आज मंगर कर दिन आ गए और पसंद कर लोग गीत हमरे मन सुने लाएगी और सुनोइया भाई मन के भी सुना थी।
5: तो आओ अब सुना थी कुरमाली में लोग गीत अजीत कुमार महतो और संगी मनकर गावल।
4: तो चलो सुनी ला।
6: मैंने सोचा अब तो लगवाना ही।

0: तो एखन हमारे मन सुनत रही कुरुमाली में अजीत कुमार महतो और संगी मणिकर गावल।
1: तो अब आओ नागपुरी में लोकगीत सुना थी देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल।
0: तो चलो सुनीला।

0: तो एखन नागपुरी में देवदास विश्वकर्मा और संगीत कर गावल गीत के सुनत रही।
1: अब आओ एगो खोरठा में गीत सुनत ही, प्रेमचंद कालिंदी और संगीमन कर गावल।

0: तो यह गीत कर संगे हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिरालक
1: और ई कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।
0: तो सुनमैया भाई बहन मने आप रावरिन का संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णु के देवविदा
0: जोहार।

तो आप सुन रहे थे हमारी दुनिया। हम बोल रहे आकाशवाणी के रांची केंद्र से शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, उससे पहले कुछ संदेश।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें, PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: श्रोतो, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 7 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। राज्यभर में आयोजित कार्यक्रमों में किया गया उन्हें नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की। जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और राज्य के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दिया निर्देश। रांची के मोरहाबादी मैदान में 16 जून से लगेगा कृषि व्यापार मेला। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, एक मंच पर होंगे किसान, व्यापारी और कृषि वैज्ञानिक। राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 2% की हुई वृद्धि। और खूंटी में जिला प्रशासन और हॉकी ओलंपिक संघ ने अंडर 18 एशिया कप के गोल्ड और कांस्य पदक विजेता बालक बालिका टीम को किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान की गाथा देश की हर पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करती रहेगी। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के अन्य मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने भी रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल पर पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
2: भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से देश भर में, देश के बाहर भी लोग याद करते हैं, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय है कि वास्तव में इनका इतिहास पढ़ने समझ में आता है कि इनका संघर्ष कैसा रहा और किस प्रकार से हमारे देश को आजादी दिलाने में इस राज्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम सबकी समझ में आता है। उन लोगों को नतमस्तक करते हुए अपनी पूरी सद्भावना इनके प्रति अर्पित करता।
1: वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाना बड़ी बात है।
3: लगभग 125 साल एक लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और राज्य के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने पेयजल संकट वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी, जलापूर्ति योजनाओं के नियमित मॉनिटरिंग तथा जल सहियाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनकी भूमिका सशक्त बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने तथा अनुपयोगी चापाकलों को रिचार्ज पिट के रूप में उपयोग करने के निर्देश भी दिए। झारखंड में पहली बार 16 से 18 जून तक कृषि व्यापार मेला का आयोजन राजधानी के मोरहाबादी मैदान में होने जा रहा है। राज्य की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह मेला इसलिए खास है क्योंकि इस मेले के जरिए किसानों, कृषि उत्पादों के व्यापारियों और देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों को एक ही मंच पर लाने की कोशिश हो रही है।
4: ये कार्यक्रम इसीलिए भी हमारे राज्य के किसानों के लिए विशेष है क्योंकि इस कार्यक्रम में केवल किसान नहीं, मगर किसान के साथ साथ व्यापारी, साथ ही साथ वैज्ञानिक गण, इसके साथ ही उद्यमी गण, तमाम लोगों को एक ही मंच में लाने का प्रयास विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
1: झारखंड हाईकोर्ट में आज वर्ष 2018 से लापता गुमला की 6 वर्षीय बच्ची से जुड़े मामले में दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें गुमला के एसपी और एसडीपीओ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले की आरोपी महिला के नार्को टेस्ट के लिए आवेदन दिया गया है और सक्षम अदालत से अनुमति मांगी जा रही है। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को अनुसंधान जल्द पूरा करने का निर्देश देते हुए मामले की प्रगति पर गंभीरता जताई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। झारखंड सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते डीए में 2% की वृद्धि की है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को अब 58% के बजाय 60% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। राज्यसभा चुनाव मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में पार्टी किसी भी तरह के हॉर्स ट्रेडिंग पर विश्वास नहीं करती। उन्होंने कांग्रेस पर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया।
5: कांग्रेस पार्टी सारी मर्यादाओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी पर वो बोलती है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो जो खुद हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम कर रहा है, 16 विधायक रहते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के 21 विधायक रहते हुए, क्योंकि हमारे साथ संख्या बल नहीं है, हम जोर तोर की राजनीति नहीं करते, खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते हैं।
1: पूर्वी सिंहभूम जिले में उत्पादित रसीले आम अब देश की सीमाएं पार कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से जिले के करीब 1.5 टन आमों की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप आज उपायुक्त राजीव रंजन ने लंदन के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
6: जमशेदपुर को एक नया बाजार मिल रहा है जो कि विदेश यूके में अवस्थित है, और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा और भारतीय आम का स्वाद जो है वो विदेशों में पहुंचेगा। 1.5 टन जा रहा है फर्स्ट लॉट में, दूसरे देशों में भी भेजने का प्रयास चल रहा है, जैसे दुबई वगैरह भी भेजने का ऐसा चल रहा है।
1: खूंटी में जिला प्रशासन और हॉकी ओलंपिक संघ की ओर से अंडर-18 एशिया कप के गोल्ड और कांस्य पदक विजेता बालक बालिका टीम को सम्मानित किया गया। मौके पर उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।
7: खूंटी जिले के कुछ बच्चे और बच्चियां हैं, एट द सेम टाइम हमारे राज्य के भी बहुत बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने मेंस में हमारा गोल्ड और वुमेन्स में हमारे ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, तो मेरी पूर्ण उम्मीद है कि ऐसे बच्चे भविष्य में भी हमारे राज्य, हमारे देश का नाम रोशन करें। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां तक हॉकी से संबंधित है, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम वगैरह की, तो काफी अच्छी फैसिलिटीज है। आने वाले टाइम में और भी कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप होगा, उसको फुलफिल करके उनको बेहतरीन माहौल और सुविधा प्रोवाइड की जाएगी।
1: और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। राज्यभर में आयोजित कार्यक्रमों में किया गया उन्हें नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की, जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और राज्य के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दिया निर्देश। रांची के मोराबादी मैदान में 16 जून से लगेगा कृषि व्यापार मेला। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, एक मंच पर होंगे किसान, व्यापारी और कृषि वैज्ञानिक। राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 2% की हुई वृद्धि। और खूंटी में जिला प्रशासन और हॉकी ओलंपिक संघ ने अंडर 18 एशिया कप के गोल्ड और कांस्य पदक विजेता बालक बालिका टीम को किया सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: श्रोताओं, वही सुनते हैं जिले में आजकल।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोकारो जिला प्रशासन द्वारा ग्रीन बोकारो क्लीन बोकारो अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया है, इस अभियान के तहत अगले एक माह में 10 से 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है।
2: यहाँ की जो संस्कृति है, संस्कार है, उसमें ही पर्यावरण है, इसलिए हम अगर कभी पर्यावरण से विमुख होंगे तो ये स्थिति झारखंड की चेतना से अलग होना हो। जैसे हम पौधारोपण करते हैं, मेरा ये मानना है कि हम एक पौधा लगाते हैं और पौधारोपण एक कार्यक्रम हो सकता है, जैसे अभी चल रहा है ग्रीन बोकारो क्लीन बोकारो और ग्रीन झारखंड के कांसेप्ट मूल मंत्र पे हम सब काम करें और आने वाले एक महीने डेढ़ महीने के अंदर हम सब कम से कम 10 से 15 लाख पेड़ पूरे बोकारो में लगाएंगे, ये हम सब संकल्प लें और काम करें।
1: पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने बताया है, एक सप्ताह के अंदर जिले के सभी थानों और पुलिस कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर लिया जाएगा।
3: आज पुलिस लाइन बोकारो में एक संयुक्त प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण सांकेतिक रूप से किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने समय जितने भी पुलिस के इंस्टीट्यूशन है, जैसे पुलिस केंद्र है, एसपी ऑफिस है और जितने पुलिस थाने हैं, जो पिकेट्स है, सीआरपीएफ कैंप्स है, सभी में हम लोगों ने जगह चिन्हित की है ताकि आने वाली बारिश में सारे पेड़ हम लोगों के लग जाए।
1: उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बेहतर पुलिसिंग का निर्देश दिया है।
4: बोकारो का ही मैटर था जिसमें पुलिस अधीक्षक से लेके हमारे डीजीपी मान तक को हाई कोर्ट में जाना पड़ा, तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो ऐसी गलतियां हमारे स्तर पे नहीं हो या थाना के स्तर पर नहीं हो, प्रयास किया जा रहा है और उस दिशा में भी उस बिंदु पे सारे पदाधिकारियों के साथ बात की है कि हाईकोर्ट के जो मामले होते हैं उनको हम कैसे त्वरित कार्रवाई करके दूर कर सकते हैं या उनका कंप्लेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी सारे पदाधिकारियों को जानकारी दी है। जस्ट मेरे आने से पहले लोगों को बता रहे थे, तो ये एक अच्छा पहल है कि जो छोटी छोटी गलतियां हमारे पार्ट पे होती हैं उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसे हम लोग ना दोहराएं।
1: उपायुक्त अजय नाथ झा ने आग से सुरक्षा के मद्देनजर संबंधित विभाग को जिले के सभी होटल, हॉस्पिटल और ऊंची बिल्डिंग की जांच का निर्देश दिया है।
5: पहला तो ये है कि उनका परमिशन चेक किया जाएगा, दूसरा ये देखा जाएगा कि वहाँ फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, किस तरह की व्यवस्था है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीढ़ियों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें रख दी गई हैं जिससे जाम हो गया है, इमरजेंसी एग्जिट पे ही बहुत सारे लोग बहुत सामान रख देते हैं। फायर सेफ्टी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी इस जांच टीम में रहेंगे, तो इनको कहा है 15 दिनों का समय दिया है, 15 दिन के बाद एक एग्जॉस्टिव बैठक हो। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा हमने हॉस्पिटल्स और सबके जांच के लिए आदेश किया था कि फायर की स्थिति का जांच करें, वो रिपोर्ट अभी मेरे पास अभी आया नहीं है, इस पर को भी लेकर 15 दिन के अंदर हम इस पर बैठक करने जा रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो भी लोग चला रहे हैं अगर फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट नहीं है या परमिशन के बियॉन्ड चला रहे हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से चला रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: तापमान के उतार चढ़ाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिलेवासियों को मानसून की बेसब्री से इंतजार है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
0: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओ, हम बोल रहे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 7:15 होने वाले हैं, आइए सुनते हैं आदिवासी अखड़ा खड़िया भाषा में।

0: आम्पेझाड़ी आदिवासी आखड़ा खड़िया लांग ओंडोर किते सरोज क्रिकेटरो
1: ग्लोरिया बाया जोहार
0: मुसा मांग तो है के

0: ania khadi alang bung kaim ondor na baruneda no onta bolo la ai pe ondor tening dolarson ayo apa kulam ro kulam dai ki muska mud kayum heke no yoga karaina se swasth avna ai matlab yoga karaina se ई फायदा या ई हिंजे आनी मुसा कायम नानी को बहुत है योग चाहे को गामिंग योगा मोइन प्राचीन भारतीय पद्धति है के आकर नो नीरी मोन ओडो आत्मा ते संतुलित उन्ते नो अहंत है रोज दिनो योगा करेना से नीरी पाड़ो मावता मोन शांत आवता ओडो जीवम ते पाड़ुंगर बायते उबो
1: हाँ बायते
0: योगा या ई फायदा या ई नो उजे कोंगे निंग निरिते नरम बायते पाड़ुंगर बायते तनाव रो चिंता ते कम करायते इयम असंचार ते नियमित उन्ते एक मन एकाग्रता रो यही शक्ति ते जो बढ़ाए थे वो बहुत है
1: हाँ
0: ला मुगमती बताए बार से बोलो
1: अच्छा ला आनिंग ते योगा करना से ये फायदा या ये हो जाए कि कौन ते निंग ने
0: हाँ बहुत की कौन ते निंग बहुत की हो सके ता उतना जो है उम्निंग जो कौन ना पालते
1: ला आनिंग ते रोज देनु योगा करना ये में या और तो इडिप इडिप
0: अच्छा
1: ला ये बार वो आउता याने कि इयाम या संचार चोना देना या अच्छा होता और दो नीरी कहता कि बारु बो आउता ला आनिंग या जियम और दो नीरी स्वास्थ्य या आउता और दो आनिंग या इगामिंग आनिंग या नीरी अच्छा बो काम कराए थे कोसुरंगा बंग दिशा उन्ते और दो चेहरा जो योना बंग मुस्कुरे लो नाम हो गए योतानी योगा करेना से
0: हाँ हाँ कटी मतलब होड़म गानी अस्वस्थ प्रभावित हुई होता हाँ,
1: ला योगा करेना येरे कटा इकुड बारु लाता और दो मुलाया माउता मतलब नस की अच्छा या होता ला रोज करेना आई जी योगा आनिंग थे रोध्यान तेरना या ई नो ई करेना से आनिंग अन्येरे कटा इघायाव ना ला योगा रोज दिनु करेना या ई रोज स्वस्थ याव ना या ई है नी दे ला ओडो मैं मुर्सगा दिनु ते कायम उत्तन या ई
0: हाँ हाँ
1: होजे ई कायम आई दी होजे उत्तने बा
0: अच्छा इन बताते दी मुझे नो तमगा नेडाते अनिंग इकुड जुग है उचीस ते योते इनिंग उ बोनते
1: हाँ,
0: समाज हिनते ओ दुराते खोड़ी पोदाते गोटागा नसा ई है के उबो
1: हाँ
0: नसा ई है के उकड़ा बचाओ आनिंग ते इघे करेना यही नसा गामना से जैसन नो गोलंग अर्खी गुटका बीड़ी सीक्रेट ड्रग्स ओडो जो आई रकम रकम आ नसा आई मुदा तमगा नेडा ते गामना चाहिए नसा या ई जो कमी उमोड़ी रकम आ नसा डेलते तमा उबो होते चाहे को लेबू बाईते इनिंग जो ओ सो भी सेवन करायना से लेबू की नीरी रो दिमाग ते प्रभावित करायती नसा या आदत धीरम धीरम लेबू ते नीरी मानसिक सामाजिक ओडो आर्थिक रूपबुंग इकुट जुग है कमजोर बाइगोटे हिंकड़ा चलते गा अन्य समाज जो अन्य परिवार नो राइज सुख गा प्रभावित जो आई ला मुगम ते बताए से गुलो नो इघा या निंगते उकड़ा सुधार इघा करेना चाहिए
1: अच्छा ला नशा बंग होइना वाला हानि ते कोंगे निंग येरे कमजोर होइ गोटा ओडो फेफड़ा गोरजिम ओडो लिवर ते नुकसान होइता ला आनिंग ते कोंगना या ई मानसिक तनाव बढ़ाए ते परिवार रो समाज हिंते सम्मान याने कि इज्जत तुम कोइता माइनु माइ कराए ते ओडो उसी तके हिंके ते उमाई गम ते न उकार इघाय ई इघाय ते हेप न जुघाय उठ गोट सी होगाय गम ते माइनी ला इज्जत तुम कोइता रो आर्थिक समस्या जुघाय गा होई गोटा और परिवार हिंते तांगी होई गोटा उठना न्यो ना मतलब नशा कराए न से

0: Roh bu ji jumai bu ji ta ketena saman kita i karena i umbo ba arungkup kita ok seng urte ki ko pro ya to
1: Konsen
0: kulam
1: do
0: ki
1: kijo.
0: ha la ho je ki sonche samje ke karena chahi bu ji na chahi no i karena se hani hoi na o mu na se hani hoi na ho je ki kong na chahi la aning te na sa karena i ro i karena i melai na thong हो जाए कि कोंगना चाहिए
1: कोंगना चाहिए लेकिन नशा ते उखोते उगह जो आई नो अगर अनिंग नशा जो करे ते इनिंग अगर नशा या सेवन करे ना अनिंग सोचते इनिंग सीमा से बेसीमा उमनिंग होते हिसाब से उड़ते इनिंग ला नशा डोड़ना कोई खराबी चीज होने जुग है ना लगे लेकिन अनिंग इतना जुग है नशा ते डूबे ना लेखे हुई गोटता निंग ला उजे है कि खराबी ला उकड़ा थोंगा अनिंग ओडो मुगम योइनिंग नसा बुं अनिंग ते इघे बांचे ना आई नसा या हाइन या बारे लेबु किते जागरूक करायना है कि नसा करायना वाला लेबु किया कि बुं आउना उम्बो मतलब हो जेसन जेसन मतवार लिखे आई हो लेबु ला हो काड़ बुं अबु सांगो ला अनम गाम ते निंग अनिंग है नहीं ला संगति बुं लेबु हो गएगा ढले गोड़ता कि मतलब संगति होई गोड़ता होकर आते जो गलत संगति होई गोड़ता हिन अथवा निंग हो जे मना कराए ते निंग खेल कूद योगा ओडो तमगा अनेडाते काइनोट हो रचनात्मक गतिविधि ते जो भाग डोड़ना पालते निंग रो बेस कामु कराए कौन जो अनिंग नसाबुं डिसा आवना पालते निंग नो होता है तनाव होइना से परिवार आ याने नो ओ या गार्जियन जे आई बाबा हे कहे गार्जियन हो कि या तो लुंग ते जो प्रभाव पड़े था समाज ते हो कि ते समाज अलेबू की ते जहाँ सांगो की ते मास्टर टीचर की बुंग जो हो कि ते कायम ना चाही नो इग है इं नसा बुंग अपन परिवार अलेबू ते छोड़ा इं इग है कराए कि इं यू करते नसा ते डिप्सा नपालिंग उघायानिंग सुझाव डोट नपालते निंग नो अंत है तमाकू गोलंग आरखी या ओडो नसीला जिनिस ते गामना थोंग मतलब जैसे आनिंग जहाँ बोते तेरते निंग है नहीं तेरते निंग ला होकरते ओडो हेन गाम के आनिंग ते जोर जबरदस्ती करेना चाहिए हिसाब से आनिंग तेर तेर लेबु अगर आनिंग बुझी ता इनिंग ला आनिंग ते हिसाब से होकी ते तेरना लुंगना चाहिए जबरदस्ती ओबुटना चाहिए उकड़ बुंग जो अनिंग बहुत किते नसा बुंग कटी डिप्साना पालते निंग ला मुगमते ई पताए से
0: अच्छा ला अनिंग ते नीरे मतलब बीमार होई गोता या तो कमजोर होई गोता ला अनिंग ते आवश्यकता पड़े ता नो डॉक्टर बुंग सुझाव नाई खे नो इंग ई करेंग इघाय करें ला इन्या निरे ठीक होई ना सुधरे ना हो गए सुझाव नाई खे ओडो नशा लेबुते मतलब परिवार ओडो समाज या थोंग हानि आई स्वास्थ्य ओडो सफल जीवन ते आनिंग ते नशा बों कितना हानि होई ता हिंज आनिंग कोंग ते निंज नशा करे नाई खे रो ओडो किते जो करे ना थोंग जागरूक करे नाई खे ओडो जरूरत आई नो परिवार या तो समाज ते नशा करे नया सुझाव तेर नाई खे रो लेबु किते देशा आओ नया सुझाव तेर नाई खे ओडो ई करे ना से नशा करे नया ई हो जे की बारो बताए नाई खे ला आनिंग बारो जिंदगी बरल नानिंग ओडो समाज जो बारो बो
1: आओ ना रो आनिंग ते परिवार ओडो समाज ते नशा मुक्त वातावरण बायना आई तोपगा आनिंग नशा ते डिसा आउना पालेनिंग रो तोपलुंग बेरोना पालेनिंग उम्बो हंते ला आम्पेते आलोंग जो ओंडोरमोन लाते होई कायम को उम्बोंगना ला आई पे आलोंग ओंडोरे पे वो आलोंग ते आलोंग सी कियार इग्नासियस क्रिकेटारो सांगोडोम की

muda lebu sewa matlab bung sewa sunung terem la ponomosor am bung khus hoita ro amte barakaite ro punya terte sewa ighay terna chahi hado lebu ki ragum ragum खीस खीस रो इन्याम इन्याम सेवा तेरते की हादो लेबू की लेरेसन अपन खाइस बुंग लाडा लाडा सेवा तेरते मैं एनएम इच्छाया रो एनएम दुलार बुंग सेवा तेरते जम ला होकड़ा ई जो मोल उमोड़ी इहनो आम होजे एनएम मतलब रो एनएम गोर्जिंग बुंग तेरते जम अगर सेवा तेने तेरगा आई ला आम प्यार भरे गोर्जिंग बुंग सेवा तेरेम ला पनमोसर बराकाइत रो पुनिया कुइना लेबुते लेबु सेवा तेरना चाहि इघानो पनमोसर लेबुते सब तोबलुंग बायसे रो सब जियोमा रे रो मालिक बायसे लेबु मनवाया माइन महाम होइता ओरे डांगेर किया माइन महाम होइता लेबुते लेबुगा माइन महाम तेरना पालते किनेर जियम रो ओरे डांगेर की माइन महाम तेरना माय पालते ओरे डांगेर रो लेबु सेवा तेरते रो होकिया सेवा सुनुंग बुंगा आनिंग लेबु मनवा की बोरल तानी ओरे कोंगतांग की लेबुते सेवा जो तेरते मैं रो गोजता की भेरे आनिंग आडिया कोमांग जो न्योतनी जे बारु बुझाएता ओरे डांगेर रो पोस्ते आदर माइन तेरना थोंगा आनी खड़िया की ओरे कोंगतांग या कोमांग उनी न्योते ऊ घटना ते आनी झेड़ी झाड़ी लेबुतेगा कोंगना चाहे परिवार सेवा सुनुंग सुबह ते महा सेवा सुनुंग हेके आयो आपा की परिवार तेगा कुंडू हकोनते जन्म तेरते की ओम्यो उबुट कौन बुईते की सेवा ते की रो मामा ते की शिक्षा दीक्षा जो तेरते की रो जिंदगी ते गोझुंग संगना बुद्धि जो बताएते की आयो आपाया हुकुम माने ना ला बारु नेवान धोना बारु गो जंग संगो ना शिक्षा तेरते मैं सुखो दुखो कास कोसु रांगा सो भेरेगा सेवा सुसर रो जतनदारी करते मैं कुंडो हकोन की जो महाता की तय आयो आपाया हुकुम माने कौन कामों की ते संग्रो तेरते की रो बारु नेवान धो कौन आयो आपाते खुश करते मैं पढ़े लिखे कौन नौकरी धोते मैं केरसों करते मैं ओ दुराते परिवार बसाते मैं हिंगड़ा लोडो आयो आबाया सेवा सुसाइर करायते मैं कोसु रांगा भेरे योते कोंगते मैं गणाय बो रो बूढ़ा गोटता की ला योते कोंगते की रो गोजना बोता है डा पे लुतुई रो ओ तेरते मैं कुंडु हकोन की जो कामू कार्बन कोसु रांगा मारन हेजन सो भेरेगा एक दूसरे मदैत रो सेवा सुसाइर करायते मैं सहिया गोहियारो यार दोस्त या अबुंग जो एक दूसरे मदैत रो सेवा सुसैर करायते मैं खड़िया परंपरा रो दस्तूर अनुसार खड़िया की सहिया गोहिया जोरायते मैं सहिया गोहिया की गा सोप तय बारू मित्र रो दोस्त भोने ताकि बारू जियो म सहिया की सोप भेरेगा सोरी सोरी ढोको तोंगन ताकि पौरव त्यौहार जन्म मरम बिहा शादी छठियारी भुंजिम लोटा डा डणा ओंजेंग सोप भेरेगा ढोको तोंगन ताकि रो कोल संग्रह ताकि ना लाडा कायम भेरे जो सोरी ताकि कोसु रांगा गोजना सिटना भेरे जो सोरी संग्रह तेरते की परिवार रो गोतारा लेबो की हिसगा गा ना की ला मुदा सहिया सहिया की सो भेरेगा सहा संग्रह रो मदाय तेरते मैं शिक्षा या रूप बुंग जो अनि लेबु सेवा तेरना पालते नी साधन रूप बुंग अनि अपन जानमाल कुंडु हकोन ते शिक्षित करायना कोर्निस करायते नी परिवार कुंडु हकोन की ते शिक्षित करायना कोर्निस करायते नी मुदा अनि होडोम ओगा कुंडु हकोन की हे कहें गरीब रो टूरा टपर की हे कहें रो हो की पढ़े ना लिखे ना उमाय पालते हो की ते अनि शिक्षित करायना पालते नी ये लेबू की दयालु रो उदार गोरजी मा लेबू मनवा की हे कहें हो की बेतोर जलंग लेबू की ते तोबलुंग बेपरोना कोर्निस करायते मैं उजेगा सोप तय महा सेवा सुनुंग या कायम हेके उकी तेगा पोनमसोर बारा कायत्रो पुण्य तेरते अपन कुंडु ते शिक्षित करायते नी उजे अनिया कर्तव्य हेके होडोमा कुंडु ते शिक्षित करायते नी उजेगा धारामा कामू सेवाया कामू रो पुण्य कामू हेके अनि अपन ओ दुराते धांगर उनते नी आडी ते पे लुतुई रो आवना अथों ओ तेरते नी मोज मेमनताय छाव डाली बा रो उबर खड़ा लुतुई यानी मोज पेछावरी रो मोज खोदिया तेरते नी रांगा घीड़िंग डा सो भेरेगा होकर ओ ताय बाहरेगा कठिन कामू कराए थे खाली न्योना रो गीता ना

0: आलों उंडोर कोन को इकुट लेरे लाकी लेकिन मुस्का आम्पा आदिवासी अखड़ा खड़िया लांगबुंग कायम उंडोर ना अनेडा बोंगडेल की ला डेना मांग तो ऊ नेडा देगा नानिंग ला इंजार ते मुस्का अथुंग बिदाओ लेपे
1: जोहार
0: बारोई टिप।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे अंग्रेजी वार्ता, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। वार्ताकार थे आर्यन कुमार। आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, रात के 8 बजे हैं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। रितेश का नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

श्रोतो, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:10 होने वाले हैं। विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा के दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह

0: से नीतियों ने इसमें मदद की।
1: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से less than 50% है, कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
0: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है, क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर दें?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन्स का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन्स में से करीब करीब 250 स्टेशन्स कंप्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, माने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कंप्लीट किया।
0: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपुल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी

0: के फॉर्मूले में बदल दिया है।
1: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
0: पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
1: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो। बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस, जो आपने कहा, प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है। और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
0: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है, उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
1: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी। इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज है जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
0: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
1: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 इयर्स। जो कमर्शियली प्रोड्यूस चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
0: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
1: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
0: जी,
1: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, जो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर दी सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
0: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
1: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना है।
0: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पे रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पे अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
1: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चला है उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुसाइड होता था गेमिंग के कारण, वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, तो अब परिवार हमारा खुश है। लेकिन इस तरह के कई एग्जांपल्स।
0: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
1: ये बात ठीक है आपकी,
0: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
1: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
0: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
1: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजंस के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
0: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
1: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है।

0: सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें एआई लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में एआई का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि एआई बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, एआई के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में नैसकॉम के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको एआईसीटी के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने के कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है, नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
3: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब एक रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
4: आज तो

0: जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के पॉलिसी पैरालिसिस होकर के और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गाँव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं, राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते, तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था, सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन पूरा परिवर्तन हो गया है, बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे, जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो चाहे मिजोरम हो अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले आज वहां चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है, गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं, फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी, राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से मिल रहे हैं,
0: गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मैं

0: उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुपके कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हमारा आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है। लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इजराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़।

0: गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिये 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

श्रोतो, आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की

0: रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेक राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रूपये मिलेंगे।
3: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयाँ बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रह रहा हूँ।
3: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में

0: आज हो सकेगा।
1: द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर एट एवरी नेबरहुड। द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ऑल्सो प्रोवाइडिंग क्वालिटी एश्योर्ड जेनरिक मेडिसिन एट सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइसेज देन मार्केट प्राइसेज। टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, दिलीप कुमार, ए रेसिडेंट ऑफ बिहार, सेड दैट द मेडिसिन एट जन औषधि केंद्र आर अवेलेबल एट वेरी लो प्राइसेज।
2: If the medicines were not from the Jan Aushadhi Kendra, there would have been a lot of trouble in my life. Because here, medicines are very cheap. A 100 rupee medicine is available for just 10 rupees. I'm getting immense relief. The medicine is working well too. And my money is not being wasted either.
1: The government has expanded medical education to meet rising demand for health professionals. The number of AIIMS has gone up to 23, while the number of medical colleges increased from 387 to 818. Ministry of AYUSH, formed in November 2014, established traditional medicine as an active part of India's health system. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
3: In men's cricket, India A defeated host Sri Lanka A by 8 runs in the opening fixture of the Tri-Nation A series at the Rangiri Dambola International Stadium today. IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and Karnataka for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the next 2 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India expresses grave concern over killing of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jaishankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। भारत दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। अब खबरें तफसील से। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ نئی

0: रात को दरपेश कुछ अहम तरीन चैलेंजों पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसके पास इस साल ब्रिक्स की सदारत भी है। 13 जून तक चलने वाली ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस के दौरान खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई तिजारत, माहौल दोस्त ज़रई तरीक़ेकार और ज़रात के शोबे में जिद्दत तराजी जैसे मौजूद पर वसीतर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस माह की 21 तारीख को नीट के दोबारा इम्तहान मुनाकिद कराने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में NTA हेडक्वार्टर के बाहर नामा निगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सवालिया पर्चों की तैयारी से लेकर इम्तहान के बाद के तमाम मराहिल तक मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते हुए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जनाब प्रधान ने कहा कि इसमें ये यकीनी बनाना भी शामिल है कि इम्तहान के मवाद दुरुस्त तरीके से बर वक्त इम्तहान के मराकज तक पहुँचें। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 बरसों में हुकूमत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए हमल के दौरान ख्वातीन के लिए सेहत की देखभाल के निज़ाम को लगातार मुस्तहकम कर रही है। जनाब नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर पैमाने पर तकरीबात का आगाज करते हुए ये बात कही। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल और कर्नाटक के बाज़ हिस्सों में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी रियासतों के बकिया हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून ने मज़ीद पेश कदमी कर ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने आज रंगेरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सहफरीकी सीरीज के इफ्तिताही मुकाबले में मेज़बान श्रीलंका को 8 रन से शिकस्त दी। भारत की जानिब से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार सेंचुरी ने टीम को मुकर्रा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 277 रन स्कोर करने में अहम रोल अदा किया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। और वजारत दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। मनी टॉक।
1: This is Akashwani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on understanding RBI's monetary policy, supporting growth amid inflation risks. The participants are Dr. S.P. Sharma, economic analyst, and Rajesh Lake, anchor.
2: Good evening and welcome to Money Talk. Today's episode couldn't be more timely. The Reserve Bank of India finds itself navigating one of the most delicate balancing acts in recent memory, keeping the engine of growth running while keeping the fires of inflation from spreading. Interest rates, liquidity, currency pressures, global headwinds, all of it converging at once. To help us make sense of this complex landscape, we have with us Dr. S.P. Sharma, a seasoned economist. A warm welcome, Dr. Sharma.
3: Thank you.
2: Dr. Sharma, before we get into these specifics, could you give our listeners a broad picture? Where does RBI's monetary policy stand today Is the central bank in a tight

0: Mann kann.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की आज से शुरुआत हुई है। आज हम कार्यक्रम में इस राष्ट्रव्यापी अभियान और देश भर में जो आज से जागरूकता और अन्य गतिविधियां इस अभियान के तहत चल रही हैं, उन पर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने देश में जन स्वास्थ्य में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है, इस बारे में भी आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक। बहुत बहुत स्वागत है मैम आकाशवाणी में आपका।
3: नमस्कार।
2: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो आज से एक देश भर में विशेष आउटरीच अभियान शुरू किया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है?
3: आज से जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ को आज हम मुख्य रूप से उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये 9 जून 2016 से प्रारंभ किया गया और इस अभियान में प्रत्येक माह के 9 तारीख को जो भी गर्भवती माताएं हमारी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेषज्ञ

0: सेवाएं दी जाती है, जो हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस वो इस दौरान होती है, और साथ ही साथ जो उनका प्रसव पूर्व जांच किया जाता है वो निःशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ विशेषज्ञ संपूर्ण रूप से उनकी जांच करते हैं ताकि स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, ताकि
1: जी
0: गर्भावस्था के दौरान उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो।
1: जी तो जैसा कि आपने बताया कि 10 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो गतिविधियां या जागरूकता के कार्यक्रम हैं जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान के तहत जो संचालित किए जाएंगे, उस बारे में भी हमें बताएं।
0: सभी हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग 1,80,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहां पर डॉक्टर्स और हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वो प्रसव पूर्व जांच करते हैं, और उसके साथ साथ जितने हमारे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स हैं, वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट के प्रेजेंस में उनका प्रसव पूर्व जांच होता है। इसके साथ साथ इसी दौरान हम लोग हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे महिलाएं जिनको शारीरिक कोई ना कोई कठिनाई है जिसके कारण उनको हम एक हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं, तो वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उनका स्पेशल फोकस रहता है इस 9 तारीख को, और उनका स्क्रीनिंग और उनका फॉलोअप, और इसको लेकर एक हम लोग अभियान भी चालू किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो हमारी जो आशा बहनें हैं वो गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को जागरूक कर रही हैं कि आप अपना प्रसव पूर्व जांच के लिए नियमित रूप से प्रत्येक माह के 9 तारीख को जरूर अपना जांच कराने के लिए जाएं। उसके
1: जी
0: अलावा हमारी जन आरोग्य समिति है, जितने हमारे VHSND विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटीज हैं, वहां पर हम लोग फिर माताओं की
1: जी
0: हम लोग बैठकें आयोजित करते हैं, तो उन सभी में जितनी पंचायती राज हमारी संस्थाएं हैं इन सभी को, जितने भी सामुदायिक ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स है, कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स,
1: जी
0: वहां पर हम अवेयरनेस की एक्टिविटीज करते हैं।
1: बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो ये एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें एक और विशेष पहलू है कि 9 ऐसी निशुल्क सेवाएं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाई जाएंगी। कौन सी वो 9 सेवाएं हैं और किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं या परिवार हैं इन निशुल्क सेवाओं का फायदा ले सकते हैं?
0: स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन तो एक विशेषज्ञ वहां पर रहेंगे जो
1: जी
0: गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो इनकी जांच करेंगे, दूसरा है अल्ट्रासाउंड की सुविधा रहेगी तो सोनोग्राफी उनकी हो सकती है, तीसरा हमारा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डिटेक्शन और मैनेजमेंट तो उनको चिन्हित करना, चौथा है हर एक इंडिविजुअल को ट्रैक करना और उसको फॉलोअप करना, पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव तो उनको आने जाने के लिए जो PMSMA सेशन के लिए वो आते हैं उसके लिए जो उनको सुविधा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की वो हम उसमें देंगे, छठा है उनको हम नियरेस्ट हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है जहां पर डिलीवरी हो सकती है उससे हम टैग कर देंगे, फिर सातवा है जो उनकी मुख्य जांचें होती है जैसे खून की जांच यूरिन की जांच वो सारा है, फिर आठवा है आयरन फॉलिक एसिड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और TD वैक्सीनेशन जो उनका होता है वो कराना, और नौवा है काउंसलिंग करना उनको न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग, तो पूरे
1: जी
0: प्रसव के दौरान उनको क्योंकि अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है क्या क्या उनको खाना है कैसे पौष्टिक आहार
1: जी
0: लेना है, और फिर साथ ही साथ परिवार नियोजन कि
1: जी
0: अगला बच्चा फिर कैसे प्लान कर सकते हैं
1: जी
0: उस पर, तो ये 9 प्रकार की सेवाएं हम मुफ्त में सभी गर्भवती माताओं को देते हैं।
1: बिल्कुल। तो इस अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2016 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब किस तरह से इन 10 सालों में इस अभियान से जो देश भर की करोड़ों गर्भवती महिलाएं उनको लाभ हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण नतीजे और इस अभियान का फायदा हमें इन 10 सालों में देखने को मिला है?
0: इन 10 सालों में मैंने बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी 7.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ये जो प्रत्येक माह के 9 तारीख में आती हैं उनको प्रसव पूर्व उनका जांच किया गया है, तो उनको एंटीनेटल केयर चेकअप मिला है, और हम लोगों ने लगभग 1.2 करोड़ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई किया और उनका मैनेजमेंट करके उनका इंश्योर कराया कि सेफ डिलीवरी हो, तो ये एक काफी बड़ी
1: बिल्कुल
0: उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी 9 तारीख तो एक फिक्स्ड डे है जहां पर हम सर्विसेज देते हैं, वैसे हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं और ANM बहनें हैं और आशा बहनें प्रेग्नेंट वुमेन को लाती हैं वो प्रतिदिन उनको ये सेवा मिल सकती है कि वो ANC चेकअप के लिए आ सकते हैं जब भी उनको आवश्यकता हो,
1: बिल्कुल
0: और 9 तारीख को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन वो एक मेजर एड ऑन हम लोगों ने किया है।
1: बिल्कुल। एक जो विशेष इस अभियान ने भूमिका निभाई है कि जो प्रसव से पूर्व की जांच होती है, जो

0: प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस जांच की पूरी एक व्यवस्था इस अभियान के तहत स्थापित हुई है। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारत का एक पूरा स्वास्थ्य ढांचा है वो कैसे अब बदला है, कैसे लोगों में, महिलाओं में खासतौर पर, प्रसव पूर्व जांच को लेकर इस खास अभियान से एक जागरूकता आई है, तो कैसे इस मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है।
1: पहले हम लोग जो ये कार्यक्रम चलता रहा है, हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के लिए 4 ANCs, मतलब 4 बार महिला को, गर्भवती माता को अपने 9 महीने के दौरान कम से कम 4 बार उनको आके अपना जांच कराना था। ये मैं 2016 के पहले की बात कर रही हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, इसमें हम लोग सभी गर्भवती माताओं के लिए सुविधा रखी कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को आप एक अतिरिक्त, मतलब फिफ्थ ANC,
0: बिल्कुल
1: पांचवा अपना चेकअप कराने के लिए आप एक विशेषज्ञ की सेवा ले सकते हैं, वो उनकी सेवा मुफ्त में आपको उपलब्ध है। और उसके बाद जब इसमें हम लोग को सफलता हासिल हुई, तो हम लोगों ने 2022 में यही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को एक्सटेंडेड PMSMA करके
0: जी
1: लॉन्च
0: जी
1: किया, जिसमें जो ये गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए 3 अतिरिक्त चेकअप्स, तो मतलब टोटल 8 हो गया। तो एक नॉर्मल महिला के लिए जो हाई रिस्क नहीं है, नॉर्मल उसका डिलीवरी होना है, 4 ANC प्लस एक विशेषज्ञ की सेवा, तो
0: जी
1: 5 हुआ। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये 5 प्लस 3 और, मतलब 8 टोटल ANC चेकअप होगा। तो
0: बिल्कुल
1: ये एक मेन बदलाव हुआ। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है कि क्योंकि अब हम हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन चिन्हित कर पा रहे हैं और चिन्हित करके उनका फॉलो अप कर पा रहे हैं, उनका हम लाइनअप करें कहाँ डिलीवरी होना है और उनको आने जाने के लिए, उनको बाकी सारे जांच के लिए मुफ्त सारा। हाई रिस्क फैक्टर्स करीब हमारे 25 कैटेगरीज हैं, जैसे सीवियरली वो एनीमिक, डायबिटिक है, तो इस तरह कई प्रकार के हैं हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स, और हम समय पर उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमन को, तो उनको वो विशेष सेवाएं जो उनको विशेषज्ञ की आवश्यकता है, उनको बेहतर सेवा देने की आवश्यकता है, वो हम पहले से कर पा रहे हैं। तो
0: बिल्कुल,
1: इससे हमारे मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है।
0: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को बताई। इस पर ही मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो अभी हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हाल ही में पहले की तुलना में हमारे पास जो मातृ मृत्यु दर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक सफल अभियान रहा है, कैसे प्रसव पूर्व जांच या जो पूरी सुविधाएं इस अभियान के तहत दी गई हैं उसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में एक बड़ी कमी लाने में मदद की है, इस बारे में भी आप थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहें तो।
1: अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मातृत्व मृत्यु दर 2014-16 का अगर हम डाटा लें, जो SRS का है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है,
0: जी
1: उसमें 130 था, और आज वो 2022-24 का अभी हाल ही में SRS डाटा आया है, वो 87 हो गया है, तो 87 हो गया है। और अभी 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस के मेटर्नल मोर्टेलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप है, UNMMEIG, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा इंडिया का डिक्लाइन करीब 86% हुआ है 1990 से लेकर अब तक, जबकि ग्लोबल एवरेज है पूरे विश्व में ये मात्र 48% डिक्लाइन हुआ है MMR में, और इंडिया में वो डिक्लाइन मैंने ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं, 86% डिक्लाइन हुआ है पिछले 2 दशकों में। उसी तरह अगर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की, जो नवजात शिशु में मृत्यु दर होता है, वो हमारा 26 प्रति 1,000 लाइव बर्थ्स था 2014 में, वो घट के अभी 18 प्रति 1,000 लाइव बर्थ 2024 का जो लेटेस्ट SRS आया है उसमें आया है। उसमें भी जो UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन 2025 का उनका रिपोर्ट है, UNIGME रिपोर्ट हम कहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: उसमें इंडिया का डिक्लाइन 70%, मतलब 70% डिक्लाइन हुआ है नवजात शिशु मृत्यु दर में, और ग्लोबल डिक्लाइन है 54%। तो इसमें भी हम लोग की उपलब्धि विश्व के सापेक्ष बहुत बेहतरीन हुआ।
0: जी निश्चित तौर पर, और क्योंकि ये ऐसी योजना रही है जिसने धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में स्वास्थ्य में मदद की है, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो धरातल पर दूर दराज गांवों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशाएं हैं, ANM हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी किस तरह से भूमिका को सुनिश्चित किया गया है, कैसे वो इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं।
1: आशा वर्कर्स हैं, ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। आशा बहनों को पता है कि उनके गांव में कितनी गर्भवती माताएं हैं, तो
0: जी
1: वो एक एक के घर जाके उनसे संपर्क करके फिर उनको लेकर आती हैं, हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां पर उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद उनका फॉलोअप करना, बार बार उनके से संपर्क में रहना, कि डिलीवरी को प्लान करना, मतलब कहाँ पर वो प्रसव के लिए जाएंगी, जब जब वो चेकअप के लिए आती हैं, जब जब अपने प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हैं, आशा बहन उनको साथ में लेकर आती है,
0: जी
1: प्रसव के दौरान भी वो उनके साथ में रहती है। तो आशा बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के साथ साथ हमारे जो ANM दीदी हैं, मुख्य रूप से उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसमें
0: जी
1: हम ये पूरा ट्रैक करते हैं। हाल ही में एक जननी पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 30 अप्रैल को, जिसमें हम एक-एक गर्भवती माता का ट्रैकिंग करते हैं। और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका जब नेक्स्ट उनका ड्यू रहता है, आशा बहन के साथ साथ यहाँ से एक मैसेज भी जाता है, डिजिटल से एक मैसेज उनको जाता है कि आज आपका ड्यू डेट है चेकअप के लिए, तो आप जरूर आए। उसी तरह 9 तारीख के लिए उनको फिर मैसेज जाता है कि आप 9 तारीख को अपने जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में जरूर आए। तो ये सारा फॉलोअप करना और सभी सुविधाएं पहुंचे, जागरूकता लाना, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकती है, खान पान में क्या उनको विशेष ध्यान देना, ये सभी हमारी आशा बहने और ANM दीदी वो करती है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं, आंगनवाड़ी में हम लोग का विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे
0: जी
1: मनता है,
0: जी
1: हर महीने मनाया जाता है, एक दिन होता है, वो एक आउटरीच कैंप के रूप में होता है। तो उसमें आंगनवाड़ी में भी यही सेवा जो हम स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन देते हैं, ANC चेकअप और उनका टीकाकरण, उनके खाना पीने के पर क्या ध्यान देना, ये सारी चीजें भी VHND में, जो आंगनवाड़ी केंद्र में, महीने में एक दिन वो भी होता है। तो वहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जो मेटरनल हेल्थ है, मातृ स्वास्थ्य है, उसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, और उसके बहुत सारे नतीजे हमें इन वर्षों में देखने को भी मिले हैं, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दी और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। रात्रि के 10 बजे हैं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज सुनेंगे जल संरक्षण पर आधारित लोक गीतों का कार्यक्रम। वाचन स्वर है संध्या नीलिमा टोपनो का और प्रस्तुति है प्रदीप कुमार की।

जल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। ये हम सभी के जीवन के लिए आवश्यक है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जानवर हों या पेड़ पौधे, हम सभी को अपने दैनिक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। हम भोजन के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। पौधे भी पानी के बिना सूख जाते हैं। श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज सुनिए जल संरक्षण पर आधारित कुछ लोकगीत।

जल के तीन मुख्य स्रोत हैं, बारिश का पानी, कुआं और झरना भूमिगत जल स्रोत हैं। सतही जल स्रोत में जलाशय, नदियां, धाराएं, तालाब और झील आते हैं। हम सभी को दैनिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता होती ही है। इसके अलावा हम पानी इसलिए भी पीते हैं जिससे हम हाइड्रेटेड रहें और हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। धरती के जीव जंतु, पशु पक्षी, फसल, पेड़ पौधे आदि सभी के लिए जल अनिवार्य है। बिना जल इन सभी का रह पाना संभव नहीं है। जल से ही संसार में जीवंतता दिखाई देती है। चारों ओर फैली हरियाली, फल फूल आदि सभी जल के कारण ही हैं। मानव तो बिना जल के रह ही नहीं सकता है। जल का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि कार्य जल के बिना संभव नहीं हो सकता। कृषि का आधार जल ही है।

घरों में खाना बनाने, कपड़े बर्तन धोने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। उद्योगों में भी जल का उपयोग होता है। जल का सर्वाधिक उपयोग पेयजल के रूप में होता है। जल ही जीवन है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। जल की कमी आज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जल से नदियाँ, तालाब और समुद्र बनते हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के स्रोत हैं। जल संरक्षण का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जल के संसाधन सीमित हैं। आज प्रदूषण के कारण जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जल की कमी से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, सूखा, फसल खराब होना आदि। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। वर्षा जल संचयन, जल का पुनः उपयोग, जल प्रदूषण रोकने के उपायों को अपनाकर हम जल संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं।

वर्षा के पानी को इकट्ठा करके भूजल को रिचार्ज करना, ब्रश करते समय नल बंद रखना, शावर की जगह बाल्टी से नहाना और टपकते नलों को तुरंत ठीक कराना, खेती में ड्रिप सिंचाई और फव्वारा सिंचाई जैसी तकनीक का उपयोग करना, सब्जी धोने या आरओ के बेकार पानी का उपयोग पौधों में करना जल संरक्षण के उपाय है जिसे हम सभी को अपनाना चाहिए। पानी का मूल्य हम सभी को जानना है ताकि हम उसे बचाकर आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। जल ही जीवन है और हम सबको जीने के लिए इसकी अति आवश्यकता है, इसलिए इसका संरक्षण करना हम सभी को आना चाहिए। जल संरक्षण के बिना जीवन की निरंतरता संभव नहीं है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, नदी तालाब और झीलों को प्रदूषित न करें, इनकी सुंदरता बनाए रखें। यदि हम आज जल संग्रहण और जल संरक्षण के उपाय नहीं अपनाएंगे तो भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें जल की प्रत्येक बूंद का महत्व समझना चाहिए और जल संरक्षण को अपनी आदत बनाना चाहिए।

जल संरक्षण का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इससे सूखे और जल की कमी वाले क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। वर्षा के जल को जमीन में पहुंचाने से भूजल स्तर बढ़ता है। संग्रहित जल का उपयोग सिंचाई में किया जा सकता है, जिससे खेती को लाभ मिलता है। जल संरक्षण से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। हम सभी मिलकर जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान दे सकते हैं। सरकार भी जल संरक्षण और जल संग्रहण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नए जलाशयों का निर्माण, नदियों का संरक्षण तथा जल बचाओ अभियान चलाकर सरकार जल संकट को कम करने का प्रयास कर रही है। हमें जल की प्रत्येक बूंद का महत्व समझना चाहिए और जल संरक्षण को अपनी आदत बनाना चाहिए, तभी हम अपने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकेंगे।

श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज आपने सुना जल संरक्षण पर आधारित कुछ लोकगीत। कलाकार थे पंच परगनिया में सुभाष कोयरी और साथी, मुंडारी में सोमरा लोहरा और साथी, उरांव में सोमरा तिरकी और साथी, नागपुरी में रुना देवी और साथी, यशोदा देवी और साथी। वाचन स्वर था संध्या नीलिमा तोपनो का और प्रस्तुति थी प्रदीप कुमार की।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे गूंजे झारखंड कार्यक्रम। जल संरक्षण पर आधारित यह कार्यक्रम था। वाचन स्वर संध्या नीलिमा टोपनो का और प्रस्तुति प्रदीप कुमार की थी। आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। साथियों, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग जयवंती में ध्रुपद गायन और राग शंकरा में गायन। कलाकार हैं पंडित सियाराम तिवारी। तो साथियों, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे पंडित सियाराम तिवारी से राग जय जयवंती में ध्रुपद गायन और राग शंकरा में गायन। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है साथियों। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। रात के 11 बजने वाले हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड